0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम

0: पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। हमने, अगर आपको याद हो, पिछली कड़ी में बात की थी कि सिचुएशंस हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी हो जाती हैं और नो डाउट वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लगती हैं। और जिस तरह से हमने देखा था कि आने वाला वक्त ये भी कह रहा है कि सिचुएशंस तो आती ही जाएंगी, और वो अगर हम एक चीज जिसे हमने धारण करने को कहा था, जिसे कहा था कि अपने जीवन में जरूर इम्प्लीमेंट करें, वो ये कि उन्हें सिचुएशन फील कैसे किया, वो मैंने क्रिएट किया।
1: तो यहाँ दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस होल लाइन इज वेरी इम्पोर्टेंट, वो मैंने क्रिएट किया। आई जस्ट हैव टू रिमेम्बर ओनली दिस। अभी तक ये हो रहा था कि हाँ, दर्द क्रिएट हुआ, टेंशन क्रिएट हुई या गुस्सा क्रिएट हुआ, लेकिन वो परिस्थिति ने क्रिएट किया।
0: सिचुएशन ऐसी थी,
1: आई अंडरस्टूड दैट द पेन इज गेटिंग क्रिएटेड। वो तो मुझे, क्योंकि वो मेरे अंदर क्रिएट होता है, तो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है कि वो पेन क्रिएट हो रहा है क्योंकि आई एम गोइंग थ्रू द पेन। लेकिन क्रिएटर कौन था उसका? सो समवेयर व्हाई आई वाज फोकसिंग आउटसाइड, क्योंकि मेरे को लगा क्रिएटर बाहर बैठा है, यू नो दैट्स व्हाई यू सेड पेन हिट्स अस, बिकॉज क्रिएटर वाज आउटसाइड। लेकिन जो आपने अभी कहा, मैंने क्रिएट किया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ आ गई? सारी मेरे ऊपर आ गई। तो जो हमने, कई बार हम ऐसी थॉट्स क्रिएट करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि वो नेगेटिव है, लेकिन वो नेगेटिव थॉट फिर वो मेरे सारे दर्द का कारण बन जाती है उस सिचुएशन को फेस करने में। तो अगर हमें अपने आप को उस सिचुएशन से क्रॉस करना है और बहुत स्टेबिलिटी से क्रॉस करना है, तो कुछ एक बातें जो हमें बहुत मदद करते हैं वो है पॉजिटिव थिंकिंग। आई नो इट्स अ वेरी क्लिशेड वर्ड, आई नो इट्स अ वेरी क्लिशेड वर्ड, वेरी रेड, वेरी हर्ड, बट स्टिल नॉट प्रैक्टिस्ड। व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर? Let's start now. Let's not wait for the pain to
0: come in,
1: go out of control. Kyunki wo jo emotional pain hai, fir wo sirf emotional pain na rehkar mere par physical effect bhi le leta hai, meri relationships pe effect karta, koi na koi ailment sharir mein bimari ho jati hai, fir doctor kehta hai tension nahi lena hoga, it won't happen at that time. To jabki ab मालूम है सिचुएशंस बाहर है, बट स्टिल इट्स नॉट दैट बैड, इट्स स्टिल नॉट बैड, आई कैन स्टिल टेक आउट सम टाइम टू वर्क ऑन माय सेल्फ, प्रोवाइडेड आई रिमूव दिस वन थॉट कि मेरे पास टाइम नहीं है। सी, आई एम नॉट रेडी टू टेक आउट दैट लिटिल बिट ऑफ टाइम। हाउ मच टाइम? 10 मिनट्स, 15 मिनट अपने लिए निकालना, 15 मिनट जिससे आपके पूरे दिन की, आपके पूरे जीवन की नींव खड़ी हो सकती है। अगर हम 15 मिनट निकालकर सिर्फ साइलेंस में बैठकर अपने आप को देखें, अपनी थॉट्स को देखें, फिर आगे मेडिटेशन जब करते हैं तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़े, अगर ये 15 मिनट में मेरा इतना क्लीनिंग और चार्जिंग प्रोसेस हो सकता है जिससे मैं बड़ी से बड़ी सिचुएशन को फेस कर सकती हूँ, हाउ मच इज 15 मिनट्स ना?
0: लेकिन ऑलरेडी जब सिचुएशन है, जैसा आपने कहा कि अब सिचुएशन आ गई है, और
1: लेकिन अभी भी उतनी बड़ी नहीं है, अभी भी उतनी बड़ी नहीं है कि मैं अपने ऊपर काम करना नहीं शुरू कर सकती, क्योंकि अभी भी मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्टेज तो यही देखनी है कि आई एम क्रिएटिंग द रिस्पॉन्स। लेकिन अगर मैं अपने लिए समय निकाल कर थोड़ी देर साइलेंस में बैठकर उस पे कॉन्टेम्पलेट नहीं करूं, मनन नहीं करूं, तो मुझे तो ये फैक्ट भी नहीं पता चलता कि आई एम क्रिएटिंग द रिस्पॉन्स। मुझे तो ये रियलाइजेशन भी नहीं है कि आई एम क्रिएटिंग द पेन। क्यों रियलाइजेशन नहीं? आई एम गोइंग वेरी फास्ट, ये इसलिए द फर्स्ट स्टेप हैज टू बिगिन विद टेकिंग आउट सम टाइम फॉर माई सेल्फ। बैठे भले वो परिस्थिति ही है, लेकिन बैठकर अपने बारे में जब सोचें कि व्हाट डू आई हैव अ चॉइस टू फेस दिस सिचुएशन, दिस कुड बी कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन, नो प्रॉब्लम। परमात्मा से कनेक्शन अभी नहीं जुड़ रहा है, नो प्रॉब्लम, अपने से तो जोड़ना शुरू करें। अपने से जुड़ेगा, हीलिंग होगी, तो परमात्मा से तो जुड़ना ही है, बिकॉज ही इज फाइनली द वन who's going to, you know, give me the power to change. लेकिन टाइम तो निकालना पड़ेगा, इलाज करवाना है तो डॉक्टर के पास जाना तो पड़ेगा ना इलाज करने के लिए, उसके साथ कनेक्शन जोड़ना तो पड़ेगा। कहें डॉक्टर के पास जाने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं बीमार हूँ, ना who's responsible for this? Who's responsible? आप खुद ही अपने आप को कहते हैं कि मेरे पास अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए टाइम नहीं है, और फिर कह रहे हैं हाय मैं क्या करूं, मेरी किस्मत, मेरा भाग्य, अगेन द ब्लेम विल गो एवरीवेयर आउटसाइड। तो मेडिटेशन इज डेफिनेटली दैट कनेक्शन जिससे मैं अपने आप को देखना शुरू करती हूँ, अपनी हीलिंग, क्योंकि मेडिटेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड हीलिंग, अपने आप को हील करना शुरू करती हूँ, अपने थॉट्स को देखना शुरू करती हूँ कि हाँ देखेंगे ही नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो तो पता ही नहीं चलेगा। बाहर सिर्फ अपने एक्शंस को देख सकते हैं, थॉट्स को नहीं देख पाते हैं। तो थोड़ा सा समय अगर हम अपने लिए रोज निकालें, भले अभी भी कितनी भी बड़ी सिचुएशन है, बहुत बड़ी नहीं है, अभी भी उतना समय निकल सकता है, और अभी भी समय निकालेंगे तो उस सिचुएशन को राइट पर्सपेक्टिव में देख पाएंगे। समय नहीं निकालते।
0: एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, अभी जो हम बात ही कर रहे हैं ना सचिवानी की, जब सिचुएशन आती है तो हमारा कोई थॉट क्रिएट होता है, लेकिन अगर अवेयरनेस के साथ देखूं, मैं भी अगर देखूं, हमने जो हम कई दिनों से काम कर रहे हैं, हमारे सारे दर्शक और मैं शामिल होकर, समटाइम्स व्हेन द सिचुएशन, कई बार तो हम हैंडल करते हैं अपने आप को देखते हुए, कई बार देखते हैं कि वो फीलिंग पहले जनरेट होती है, थॉट की जहां फीलिंग ने हिट किया, चाहे वो हर्ट का था, चाहे वो एंगर का था, चाहे वो पेन का था, या चाहे वो रिजेक्शन का था, कोई भी एक फीलिंग ने हिट किया, उसके बाद थॉट आया कि
1: फीलिंग बिना थॉट के नहीं आएगी,
0: नहीं आ सकती।
1: हर्ट पेन, जितने भी आपने फीलिंग्स बताई, हर्ट पेन एंगर रिजेक्शन, उसने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हर्ट, उसे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, एंगर, वन थॉट हैज टू गेट क्रिएटेड फर्स्ट,
0: लेकिन वो थॉट हमें दिख नहीं पाता,
1: पर फास्ट प्रोसेस है ना।
0: हाँ।
1: क्योंकि मेरा एक स्पीड, इतनी फिफ्थ गियर में आपकी गाड़ी अगर सारा दिन चल रही है तो आपको कितना क्लैरिटी से दिखाई देगा सब कुछ। कभी तो स्लो डाउन करेंगे थोड़ा सा तो दिखाई देगा कि क्या प्रोसेस है अंदर जो चलता है। देखो इतना फास्ट होता कि ये भी नहीं रियलाइज होता कि पहले थॉट या पहले फीलिंग, ये भी नहीं रियलाइज होता अंदर से आ रहा है या बाहर से आ रहा है। यू नो लाइक यू सेड, द फीलिंग हिट्स, अगेन फीलिंग डजंट हिट, आई क्रिएट, लेकिन बाय प्रोडक्ट ऑफ माय थॉट। इसलिए जहां मेहनत करने वाली बात है वो उस सीड पर है, उस बीज पर है। थॉट एक बार राइट क्रिएट हो गया, फीलिंग अपने आप राइट क्रिएट होगी, एक्शन अपने आप उसके बाद राइट होगा, लेकिन वो थॉट स्टेज तो हम इतनी फास्ट फॉरवर्ड में चले जाते हैं, पता नहीं चलता। तो अगर हम थोड़ा सा समय रोज बैठकर अपने थॉट्स को देखें तो हमें पता चलने लगेगा कि वी आर क्रिएटिंग द थॉट। तो इसलिए थिंकिंग को परिवर्तन करने के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग में लाने के लिए मेडिटेशन इज द सॉल्यूशन। Because meditation means first thing self introspection, अपने आप को देखना। जब तक हम वो नहीं करेंगे तो उसको तो फिर हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसको कैसा करना है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब भी परिस्थिति आती है, माय फर्स्ट रिस्पॉन्स विच हैज बिकम वेरी कॉमन, हियर इज अ चेंज, वट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, वट इज इट? रेजिस्टेंस। यहां से सिचुएशन आई, मैंने रेजिस्ट किया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई डर है। फियर एक बहुत डीप रूटेड,
0: क्या होगा,
1: डीप रूटेड। अब जो आपने कहा क्या होगा, अब हम नॉर्मली समझते कि जब भी परिवर्तन होता है कुछ ना कुछ तो हमें डर लगता है, फियर इज वेरी डीप रूटेड। लेकिन डर ये लगता है हमें कि अब क्या होगा। एक्चुअली अगर आप और उसको गहराई से अपने आप को कभी भी देखना, नेक्स्ट टाइम जब डर लगेगा, फियर, इट्स नॉट फियर ऑफ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, इट इज फियर ऑफ व्हाट विल आई लूज आउट ऑफ व्हाट आई हैव नाउ।
0: यस, लूजिंग इज वेरी,
1: बिकॉज वी ऑलवेज थॉट दैट चेंज मींस फियर ऑफ अननोन, यू नो कि आई डोंट नो कि इस चेंज से क्या होने वाला है। लाइक आई रिमेम्बर कि जब कंप्यूटराइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, यू नो, into the offices, into the school system and everything, oh it was fear everywhere,
0: there was so much of resistance,
1: yeah, so much of resistance ke jis tarah se chal raha hai theek chal raha hai na, ye kis liye ab ye kyun
0: kar, human ko replace kar denge, machine jo hai, machine will take over, kitni unki films bani thi, kitna kuch bana tha,
1: to ye fear kis baat ka tha? Fear is baat ka nahi tha ki ye kya hoga isse, fear is baat se tha ki meri jo vartaman samay position hai, meri jo authority hai, meri jo power hai, कहीं वो तो नहीं
0: लूज
1: कम हो जाएगी। तो वो फियर की वजह से मैं उस चेंज को रेजिस्ट करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं जैसे हूँ वैसे ठीक हूँ। सो फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, एंड नॉर्मली हम किस चीजों को खोने का डर रहता है हमें, पीपल, फियर ऑफ लूजिंग पीपल, पावर, यू नो, एनी रिलेशनशिप, एनी ऑफिस, एनी वेयर चेंज इज इंट्रोड्यूस्ड, फियर ऑफ लूजिंग पावर।
0: पोजीशन,
1: पोजीशन, यस, प्रेस्टीज, माय पर्सनालिटी, पीपल, मनी, पे, ऑल दीज वी कॉल देम द पीस, पावर, पोजीशन, प्रेस्टीज, पीपल, पेनीज, डर. और ये डर मुझे उस चेंज को रेजिस्ट करने के लिए करता है. और जैसे ही मैंने रेजिस्ट किया तो कौन सी एनर्जी फ्लो होने वाली है?
0: नेगेटिव. ऑफ कोर्स
1: नेगेटिव. सो इफ आई रेजिस्ट चेंज, देयर इज नो वे आई विल बी एबल टू थिंक पॉजिटिव नाउ. तो मैंने रेजिस्ट किया क्योंकि मुझे अंदर कोई ना कोई डर है कि मेरी ये सारी जो है पोजिशन, पावर, लोग जो है, इनमें से कोई मेरे से खो ना जाए. तो वो डर हमें रोकता है. तो अगर हमें इस सिचुएशन को बहुत आसानी से क्रॉस करना है, फर्स्ट स्टेप कम्स टू एक्सेप्टेंस.
0: एक्सेप्टेंस ऑफ सिचुएशन,
1: एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना कि ये होना है. जैसे ये सारी बातें हमने की, अब ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है ना. ऑल दीज थिंग्स, पीपल, money, position, whatever, it's a part of my life. This is also all energy, like it's flowing in my life. ये एक river की तरह है जो flow करता रहता है. हम उस river को क्या करने की कोशिश करते हैं? रुक जाए, ये यहाँ रुक जाए. और वो river को रोकने की कोशिश जो हम ये जीवन में हमारा जो बहता, ये सारी चीजें बहती हैं. That's why it's change, because a river flowing, not even a single, you know, moment, it's going to be two moments the same. Flowing river means हर पल
0: अलग
1: अलग, हर पल परिवर्तन. तो ये जीवन में ये जो सारी बातें हैं, ये परिवर्तन है. 10 साल पहले मेरे जीवन में जो लोग थे, आज परिवर्तन है. 10 साल पहले जो मेरी पोजिशन थी, आज परिवर्तन है. वी आर नॉट क्वेश्चनिंग गुड और बैड. क्वेश्चन इज, हैज इट रिमेन्ड कॉन्स्टेंट? नो. तो हम उसको क्यों रोकने की कोशिश करते हैं?
0: यहाँ आपने कहा एक्सेप्टेंस. प्रॉब्लम ये आती है, जैसे ही एक्सेप्टेंस कहते हूँ, मेरे जो सारे फियर्स थे मैं उसको एक्सेप्ट करने लग जाती हूँ. कि अच्छा ठीक है, फिर मेरी अपनी पोजीशन तो जाएगी जाएगी, कोई आ गया, मेरे पैसा तो जा ही रहा है. ये जो फियर, ये जो एक्सेप्टेंस है, ये एक्चुअली एक्सेप्टेंस ना लाइक रहकर कई बार, मतलब जैसे एक्सेप्टेंस आप कहो कि सिचुएशन की एक्सेप्टेंस, तो उसके साथ के फियर के साथ जो लूज को, चीजों को लूज करने वाला फियर था, उसको एक्सेप्टेंस की बात सोच
1: लेते हैं. तो फिर हमने फियर को एक्सेप्ट किया, सिचुएशन को थोड़ी एक्सेप्ट किया. सिचुएशन को नहीं एक्सेप्ट किया, मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इस सिचुएशन में डर लगना तो नेचुरल है. हम अपने रिस्पॉन्स को भी नहीं कहेंगे, रिएक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगेन बाय सेइंग कि ये सिचुएशन में ये तो नेचुरल ही है ना. सो वी एक्सेप्ट,
0: ऐसा तो होगा ही, ये होगा. अब चलो मैं एक्सेप्ट, उसको रेजिस्ट नहीं करता हूँ. ठीक है, अब हो गया है ये तो, ठीक है, मेरी नौकरी भी जाएगी, मेरी पोजिशन चली जाएगी.
1: दिस इज अ होल सीरीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स व्हिच हैज स्टार्टेड. तो ये जो रिवर जो फ्लो कर रहा है, If I try to stop it, it's like एक डैम बिल्ड कर देना, you know, ये यहीं रुक जाए, पानी जैसा आगे नहीं फ्लो करे, यहीं कहीं रुक जाए. अब जैसे ही हम उस पर एक डैम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो डैम के दूसरी तरफ क्या क्रिएट होगा? प्रेशर. और ये प्रेशर जो है, दिस आई एम क्रिएटिंग, दैट इज वाई वी से सेल्फ क्रिएटेड. अपना प्रेशर खुद ही क्रिएट किया हुआ है इन्होंने. क्यों क्रिएट किया हुआ है? क्योंकि ये बहती हुई चीजों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. अब बह रही हैं चीजें, व्हाट कैन आई डू, हाउ डू आई एक्सेप्ट, एंड व्हाई शुड आई एक्सेप्ट. मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एक्सेप्ट करना, लेकिन क्यों एक्सेप्ट करना? अगर मुझे पसंद नहीं आ रही है सिचुएशन, तो क्यों एक्सेप्ट करना? हैव यू सीन अ रेस्लिंग मैच? हाँ, तो वो जूडो या सुमो या जो भी वो रेस्लर्स होते हैं, आप कभी भी देखना उनकी जो मैच होता है वो कैसे स्टार्ट होता है. दैट इज चेंज फिलोसफी. दो लोग सामने से आते हैं. First they bow down, right? This is a sign of respect. Then they embrace each other. Kabhi bhi dekhna. Always the match will start like that. Pehle aap bow down karte hain, phir aap embrace karte hain, phir aapka aage shuru hota hai, jo game aapne karni hai. This is basic change philosophy. Ki jab bhi aapke samne wo parivartan aaye, wo situation aaye, pehle aap usko embrace karte hain. दिस जूडो और रेस्लिंग, व्हाट डू दे डू? आप पहले एम्ब्रेस करते हो, और एम्ब्रेस करने से आप कैच कर लेते हो कि इसका मोमेंटम क्या है,
0: इसकी ताकत कितनी है,
1: और फिर उस ताकत को मैं कैसे फेस करने वाला हूँ. अगर ये यहां से करेंगे ना इसको, I wouldn't know how to handle
0: fear
1: this.
0: Fear of unknown remains.
1: Fear of that. So normally the change philosophy goes, ki first you embrace, right? Then you catch the momentum. Ki iske andar kya hai? Lekin agar aap usko resist karenge, तो आपको उसका मोमेंटम तो पता ही नहीं चलेगा कि वो किस फ्लो से आ रहा है. और जब तक हम उसके मोमेंटम को कैच नहीं करेंगे तब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि अब इसको मैंने किस तरह से
0: अपने शत्रु से पहले हाथ मिलाओ, उसके बाद उसका जांचो कि कितना

0: है उसमें पोटेंशियल
1: एंड देन सी व्हाट आई कैन डू बिकॉज फाइनली लाइफ इज व्हाट इट्स लाइक दिस ओनली ना. ये जो सिचुएशंस हम बोल रहे हैं ये क्या है, हमारा मैच ही तो चल रहा है ना सारा दिन इनके अंदर, लेकिन जब हम वो सिचुएशन को ही
0: बड़ा
1: इतना बड़ा मान लेते हैं और अपने आप को एकदम छोटा कर लेते हैं, दैट मीन्स वन साइड हैज सेड सॉरी मैं आपके साथ नहीं मैच खेल सकता, आई हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड डिफीट, मेरे जीवन में तो यही लिखा है. तो मतलब क्या किया मैंने, तो उसके साथ ट्राई भी नहीं किया,
0: गिव अप कर,
1: ट्राई ही नहीं किया. सो ऑलवेज एक्सेप्टेंस, एंड एक्सेप्टेंस मीन्स ये है, दिस इज इट, नाउ व्हाट. आवर प्रॉब्लम इज ऐसा क्यों, ऐसा कैसे. अभी हमारे बोलने से या हमारे उस तरह से सोचने से क्या हो जाता है, जैसे ही वो क्यों क्या कैसे इसमें चले जाते हैं, परमात्मा शिव बाबा हमेशा हमें बताते कि ये जो क क क हर टाइम खड़ा करते हो ना, इसको पहले फुल स्टॉप करो. क्यों क्या कैसे कब कहाँ, तो पूरा माइंड कहाँ किस तरफ चला गया, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस. एंड देन बाबा ऑलवेज सेज क्वेश्चन मार्क बहुत क्रुकेड मात्रा है, बहुत टेढ़ी है, फुल स्टॉप ऐसा है. नाउ व्हाट, नाउ व्हाट. लेट्स से आप मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे, छोटी सी सिचुएशन है, आई नो सिचुएशंस आर वेरी बिग, बट लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल सिचुएशन. आप मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहे, आप मुझे अब्यूज भी कर सकते हैं, आप बुरा भला कह रहे हैं, शायद 10 लोग आसपास सुन रहे हैं, आप इंसल्ट कर रहे हैं. नाउ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, इनको यही बात कहनी थी अलग से कह देते, ये कोई बोलने का तरीका है क्या, इस तरह से बात की जाती है. सो हु एम आई ट्राइंग टू कंट्रोल, I'm trying to control you. And I'm going into क्यों क्या कैसा. The next acceptance means हाँ जी ये इस तरह से मेरे से बात कर रहे हैं, अब मेरा रिस्पॉन्स क्या. आपसे बुद्धि हटाऊंगी तब तो बुद्धि को अपने ऊपर लेकर आऊंगी कि हाँ how am I supposed to face this. लेकिन जब तो मेरा मन आपके अंदर ही अटका हुआ है कि आप ऐसे क्यों, आप ऐसे कैसे, आप
0: और आपने मेरी इंसल्ट कर दी, इतने सारे लोगों के सामने कर दी, आपने मुझे ये कह दिया, आपने मुझे ये कह दिया, मुझे ये समझ लिया, मुझे ये समझ, यू नो किसने समझा,
1: आपने किया, आपने किया, जो सही है या गलत है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, बिकॉज बाय गोइंग इनटू दैट देयर इज नो रिजल्ट. अगर मैं समझू के ओके यू आई फील आई शुड टेल यू, आई विल टेल यू कि आई डोंट थिंक जो आपने मेरे साथ किया वो ठीक, लेकिन वो मैसेज भी आप तक कन्वे करने के लिए पहले मेरी स्टेट ऑफ माइंड कैसे होनी चाहिए. लेकिन अगर मैंने आपको रेजिस्ट किया तो मेरे अंदर आपके प्रति इतनी कहें घृणा भर जाती है, इतनी नफरत भर जाती है कि बैठकर क्लैरिटी से फिर उसको वो रहती ही नहीं पाता. तो इसलिए अगेन आई विल हैव टू कम बैक टू माई सेल्फ. लेकिन आपसे हटकर मतलब सिचुएशन से हटकर अपने तक आने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ तब होता है कि मैं पहला वो फुल स्टॉप जो आपने कहा ना फुल स्टॉप लगाना, फुल स्टॉप इज एक्सेप्टेंस. तो जो वो रिवर फ्लो कर रहा है आई ओनली हैव अ फ्यू ऑप्शंस फॉर दैट. एक तो उसको रोकने की कोशिश करें, प्लीज मत जाओ, यू नो आई ट्राई टू स्टॉप यू, या प्लीज बदल

0: Yeah. I would have said otherwise, ki flow with the river.
1: No, flow with the river is then that means always you getting influenced. Are. Flow with the river matlab fir mere identity kuch bhi nahi hui na. मेरे पास फिर भी कोई कंट्रोल नहीं हुआ. सामने रिवर जो जो लेकर आता गया मैं उसके साथ ही बहती गई. आज रिवर इस तरफ जा रहा है, कल उस तरफ जा रहा है, परसों उस तरफ जा रहा है, तो मैं भी उसके साथ.
0: और मैं बेचारी अपने आप को कहती गई, मजबूर, कॉम्प्रोमाइज, सब कुछ करती गई मैं. ओह, तो आई स्टैंड वेयर एवर आई वाज स्टैंडिंग
1: एंड आई लेट द रिवर फ्लो.
0: ओह यस.
1: नीदर स्टॉप द रिवर क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं है. नीदर फ्लो विद द रिवर बिकॉज दैट्स नॉट गुड फॉर मी. I will just, I don't know where I will
0: and
1: reach.
0: That's not what I wanted.
1: That's not what I want.
0: You know, it's very important. If I wanted to flow with the river, this was the right direction I was feeling, I should go. Otherwise, I should stay where.
1: So, if I can look at that river flowing, na lekin.
0: हाँ.
1: मुझे ये दिखाई देना चाहिए ना अपने जीवन के अंदर, चाहे वो परिस्थिति है, वो परिस्थिति चाहे लोग हैं, चाहे कुछ भी है, मुझे ये दिखाई देना पड़ेगा कि ये है स्थिति, ये है परिस्थिति. परिस्थिति के साथ मुझे स्थिति को बह नहीं जाना है. मुझे परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी क्योंकि वो भी मेरे हाथ में नहीं है. मुझे अपनी स्थिति को परिस्थिति के प्रभाव से न्यारा रखना पड़ेगा. और वो तभी समझ में आएगा, तभी कर पाएंगे जब पहले फंडामेंटल ये रियलाइजेशन बैठ जाएगी कि ये है परिस्थिति, ये है मेरी स्थिति. ये परिस्थिति अलग, मेरी स्थिति मैं क्रिएट करता हूँ. परिस्थिति स्थिति नहीं क्रिएट करती. स्थिति आई एम द क्रिएटर. इवन दिस वन थॉट इफ आई कीप टेलिंग माई सेल्फ एवरी टाइम डे इन एंड डे आउट, एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग टेल माई सेल्फ एवरी थॉट, आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर एंड आई हैव अ चॉइस. हर संकल्प मेरी रचना है, तो मेरे पास चॉइस है कैसे संकल्प क्रिएट करने हैं. क्योंकि जो संकल्प मैं क्रिएट करूंगा उसके बाद
0: फीलिंग, बिल्कुल
1: फीलिंग हमने पहले भी देखा था, बट आई थिंक इट्स गुड टू ऑलवेज गो ओवर इट ऑल ओवर अगेन. कि जैसे ही हम एक संकल्प क्रिएट करेंगे, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ थॉट. लेकिन जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऑटोमेटिक, जो आपने कहा ऑटोमेटिक हो जाता है, दैट इज अ फीलिंग. कि संकल्प क्रिएट हुआ और मुझे उसका फीलिंग या उसका अनुभव होना शुरू हो जाता है. और जो फीलिंग्स मेरी आपके प्रति, परिस्थिति के प्रति या पूरी दुनिया के प्रति जो फीलिंग्स मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट करती आई हूँ, दैट डेवलप्स माई एटीट्यूड. सो एटीट्यूड या कहें वृत्ति जो मेरी है कि दुनिया ऐसी ही है, ये तो ऐसे ही है, ये एटीट्यूड कैसे बना? क्योंकि कई बार मैंने वो थॉट क्रिएट किया, बार बार मुझे वो फीलिंग आई आपसे मिलने के बाद या आपके कोई व्यवहार से, तो मेरा एटीट्यूड क्रिएट हुआ, ये तो ऐसे ही है, मुझे पसंद नहीं है. तो थॉट, फीलिंग और एटीट्यूड. और ये जो एटीट्यूड मेरा क्रिएट हो गया, उसके बाद आई कम इनटू एक्शन. अब हम सिर्फ एक्शन वाली स्टेज को देखते हैं कि मैंने ऐसा बोला या मैंने ऐसा व्यवहार किया. हम ये थ्री स्टेजेस को, जो इनर प्रोसेस है, ये स्किप कर जाते हैं कि ये एक्शन बना कैसे. इट वॉज बेस्ड ऑन थॉट, फीलिंग एंड एटीट्यूड. और फिर जो एक्शन हम बार बार रिपीट करते हैं, एक पर्टिकुलर बात करने का तरीका, यू नो, जैसे कई लोगों को आदत है ऊंची आवाज में जोर से बोल दिया या जोर से किसी को ऐसे डांट दिया, उनको अगर कभी आप कहो के the same thing could have been said in a probably a different way, they will say, oh, it's my nature. Because they don't even realize now whether this is useful for me or it is damaging for me. It's my nature. And nature matlab, main aisa hoon. Ab mujhe change hone ke liye nahi kehna. To ye nature kaise bani? Bachpan se thodi aise the. Lekin kai baar gusse se bola, phir gusse se bola, phir unchi awaaz mein bola, thode din ke baad वो मेरी हैबिट. तो जो एक्शन हम बार बार रिपीट करते हैं, वो मेरी हैबिट. नाउ ऑल योर हैबिट्स पुट टुगेदर इज योर
0: पर्सनालिटी. आई रिमेम्बर दैट.
1: ऑफ कोर्स दिस इज अ डीप प्रोसेस विच शुड ऑलवेज बी देयर ऑन द स्क्रीन ऑफ द माइंड. कि ये जो मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी है, दिस इज बिगिनिंग विद माय थॉट. मेरा पूरा जो आज व्यक्तित्व है, वो मेरी सोच से स्टार्ट होता है. और ये व्यक्तित्व, ये पर्सनालिटी संबंधों में आता, कर्म क्षेत्र पर आता, व्यवहार में आता, संबंध संपर्क में आता. एट एवरी स्टेप आई एम क्रिएटिंग माई डेस्टिनी. वाई माई डेस्टिनी? बिकॉज जो मेरा व्यक्तित्व होगा, वैसे मेरा कर्म होगा, वैसे मेरा आपसे बात करने का तरीका होगा. और जैसा कर्म

0: मैं करूंगी
1: रिस्पॉन्स
0: उसी का रिजल्ट मुझे मिलेगा. नाउ वी नो दिस, आई मीन वी डोंट नीड टू लर्न इट फॉर द न्यू टाइम. बचपन से मुझे सिखाया गया कि जैसा कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट हमें मिलेगा, और हमारा कर्म किस आधार पर बेस्ड है? सोच पर. हमें किसी ने ये तो बता दिया कि जैसा कर्म आप करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये नहीं किसी ने बताया कि आपका कर्म आपके सोच से स्टार्ट होता है. और फिर किसी ने यही नहीं सिखाया कि राइट तरीका सोचने का क्या है. And I was talking to someone and they said, why didn't they teach us how to think?
1: How to think, yes.
0: How to think? And then we were just discussing and we said, as a child, we are taught how to talk, how to drink, how to eat, how to walk, not taught how to think. No one taught us. तो वो अपने आप ही डेवलप होता गया. एंड फिर आज जब हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है ओह ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेट हो गया. बट इट्स नॉट ट्रू. आज भी हम स्टार्ट करें तो इट विल चेंज.
1: तो हमारा एक थॉट कि हम थिंकिंग को शुरू करें हमारी
0: ये भी हमारी डेस्टिनी को चेंज कर देगा.
1: बिल्कुल. और जिस तरह से हमने आज सिचुएशन को देखते हुए किया कि बिंदी लगाने वाली बात थी कि फुल स्टॉप. थैंक यू सो मच. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: वंडरफुल. सो लेट्स ट्राई टू एक्सपीरियंस इन द रियल सेंस व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव थिंकिंग. पॉजिटिव थिंकिंग सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं जैसा कि कह रही है शिवानी, लेकिन इम्प्लीमेंट और अनुभव नहीं कर रहे थे. लेट्स ट्राई टू डू दैट. अगर कोई समस्या आती है, कोई सवाल है आपके पास, आपके जीवन में कोई सिचुएशन है जिसका हल आप तलाश रहे हैं, साथ मिलकर भी कर सकते हैं. आपका स्वागत करते हैं. आप हमें फोन पर संपर्क करें या फिर ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अब एक निमित्त ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन अभी हमें वो एम्पावरमेंट का सोर्स से जुड़ने का तरीका एक बार फिर जानना है. हमें देखना है कि जो भी सिचुएशन है उसमें जैसे हम हैंडल करेंगे उसके लिए हमें ताकत कहाँ से चाहिए. और इसके लिए आपके साथ हम अगली कड़ी में जरूर होंगे. फिलहाल आपसे विदा ले रहे हैं. ओम शांति.

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में, तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है। क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा, ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे, तो देन आई फील के नथिंग इज इन माय कंट्रोल, सो दैट इटसेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा, कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलतं।
3: अश्विनी
2: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
4: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे,
2: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत। या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
5: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।

0: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। नमस्कार। जिंदगी में कभी हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन चलते चलते अनजाने ही कुछ ऐसी आदतों से हम घिर जाते हैं जो फिर हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है, और कई मोड ऐसे आते हैं कि जब वो मजबूरी बन जाती है। अगर हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा तो हो सकता है कहीं हमारे किसी अपने के साथ ऐसा हो रहा हो, या फिर हमारे घर परिवार में कोई हो जो इस परेशानी से जूझ रहे हो, उसके सोल्यूशंस हमें मिल सकते हैं। कई तरह के व्यसन जिसे हम आज जिंदगी का हिस्सा मानकर उन्हें इग्नोर करते जाते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तो आज जब हम अपनी पहचान कर रहे हैं तो फिर ये बात समझ में आती है कि इन सिचुएशंस को हम इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि इन सिचुएशंस को बदलने का प्रयास करेंगे और किया भी जा सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए कि किस तरह से ये आदतें हमारी जिंदगी में शामिल हो जाती हैं और कैसे हम इन्हें दूर कर सकते हैं, हमारा सौभाग्य है हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, और हमारे साथ हर बार की तरह है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का हार्दिक स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, अभी तक हम कई सारे व्यसनों के बारे में भी जाना और कई आस्पेक्ट भी नजर आ रहे हैं। हमने डिटेल में बात की कि अगर ड्रग एडिक्शन की बात की जाए तब भी वो कहाँ तक लेके जा सकती है, और उसके अलावा एक जो आपने बहुत बड़ा रीएश्योरेंस हमें दिया हमारे सभी दर्शकों को भी कि किसी भी प्रकार का व्यसन या किसी भी प्रकार की जो मजबूरी बन जाती है आदत, उसे दूर किया जा सकता है। दिस इज द आई थिंक द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर वी कैन एक्चुअली गो अहेड। और जैसा आपने कहा कि आपने पहले भी बात की थी कि मेडिटेशन एक ऐसा आस्पेक्ट है, हम बात कर चुके हैं हीलिंग है, लेकिन हीलिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे विल पावर को इतना स्ट्रांग करता है, सेल्फ एस्टीम इतनी बढ़ जाती है। डॉक्टर पटेल, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं, एडिक्शन के ऊपर आते हैं, जो आज के इस दौर में एडिक्शन मानी ही नहीं जा रही, और वो इतनी कॉमन, घर घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर नजर आता है, जरूर मिल जाता है जो इसका इससे घिरा हुआ है, इसका शिकार है, और इसे एक आम आदत के रूप में मान लिया जाता है, और वो है स्मोकिंग। सबसे पहले हमें ये बताइए कि सिगरेट, जो एक सिगरेट पी जाती है, उसके अंदर क्या होता है, कौन से ऐसे केमिकल्स हैं, क्या चीज होती है जो हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल भी करते हैं?
2: बहुत अच्छा। सबसे कॉमनेस्ट चीज की जो आज सभी जानते हैं वास्तव में, वह है सिगरेट में निकोटीन। जो हैबिट फॉर्मिंग चीज है वह है निकोटीन। निकोटीन की बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होती है, साथ साथ में देखा गया है कि ऐसे और भी बहुत सारे केमिकल्स है, और एक डेंजरस केमिकल है वह कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड की जो एफिनिटी है वह हीमोग्लोबिन के साथ बहुत पावरफुल होती है, कई गुना ज्यादा, और इसके कारण उसके काफी हार्मफुल इफेक्ट होती है। ऐसे कोल टार है, कुछ साइनाइड्स भी इसमें है, कुल मिलाकर तो देखा है कि भी 4000 केमिकल्स साइंटिस्ट बताते हैं, पर कम मात्रा में है, परंतु फिर भी हम उसे काउंट कर सकते हैं कि 4000 केमिकल्स है, और उसमें से करीब 48 है कि जो कैंसर पैदा करने वाले हैं। और स्मोकिंग की इन सभी केमिकल्स के साथ साथ जो हीट जनरेट होती है उसकी भी हमारे लिप्स, टंग्स, म्यूकोसा आदि पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है।
0: और कहीं ना कहीं इतने शौक से, इतनी शान से, हम में से हर कोई जो इसका आदी है वो कहता है कि मैं 20 सिगरेट पीता हूँ, मैं पूरा पैकेट दिन में खत्म कर देता हूँ। एक्चुअली ये जो पूरा एटीट्यूड है शिवानी, इस पे आते हैं कि व्हाई टू बी सो प्राउड ऑफ इट। हम फ्लॉन्ट करते हैं कि हाँ मैं स्मोक करता हूँ या करती हूँ, ये क्या है? ये भी कहीं एक सोशल,
3: कहीं ना कहीं उसको भी स्टेटस सिंबल या उसको भी स्ट्रेंथ मान लिया कि मैं इतनी सिगरेट पी सकता हूँ या मैं इतना अल्कोहल कंज्यूम कर सकता हूँ, ये भी मेरी जैसे ताकत है, यू नो, ये फिजिकल स्ट्रेंथ कहे या जो भी, इसको अपना स्ट्रेंथ को यू नो मैग्निफाई करने के लिए या उसको स्टेटस सिंबल बनाने के लिए भी सो प्राउड ऑफ। जैसे हम कहते हैं मुझे इतना स्ट्रेस है, दूसरा कहता है आपको बस इतना ही है, मुझे तो इतना है, यू नो, सो सिमिलर। इवन दो वी रियलाइज कि हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो हानिकारक है, लेकिन फिर भी उसको ग्लोरीफाई कर देते हैं कि मुझे उससे ज्यादा है, आपसे ज्यादा है, तो आई एम मोर पावरफुल देन यू। तो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम अगेन।
2: एक्चुअली देयर इज नो डाउट नाउ, जो हार्मफुल इफेक्ट्स का है कि स्मोकिंग के बारे में हर साइंटिस्ट एक्सेप्ट करेगा, और अब तो अलग अलग एरियाज में भी रिसर्च होने लगी कि कौन सी हार्मफुल इफेक्ट्स है स्मोकिंग के कारण।
0: अगर हम डिटेल में जाने की कोशिश करें कि सचमुच फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली कहाँ तक हमें इफेक्ट करता है, उस पे आते हैं, लेकिन फिजिकली क्या एग्जैक्टली क्या कुछ होता है हमारे बॉडी में?
2: एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई ये रिसर्च होती है, ये कोई एक एक व्यक्ति का अनुभव नहीं है, जब भी सभी जानते हैं कि सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है, लेकिन अधिकतर लोग ये कहते हैं कि मेरा पड़ोसी है वो तो 50 सिगरेट पी रहा है, उसको लंग कैंसर नहीं हुआ। दूसरा एक व्यक्ति, उसको मैं जानता हूँ, उसने कभी सिगरेट को छुआ तक नहीं, लेकिन वो लंग कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई।
0: ओ, ये तो इतना बड़ा प्ली होता है जितने भी स्मोकर्स हैं, तो ऐसा क्यों? तो
2: हाँ, ये क्यों है कि भी लंग कैंसर होने के और भी कारण है, बल सबसे महत्वपूर्ण कहते करीब 85% जो रीजन है वह है स्मोकिंग। और भी छोटे छोटे रीजन है कि जो शायद 15% उसको कंट्रीब्यूट करते होंगे। यह जो फाइनल डिसीशन हुआ है वह कैसे हुआ कि बहुत बड़ी रिसर्च की गई, कि जैसे 2 लाख स्मोकर्स को स्टडी किया गया और 2 लाख नॉन स्मोकर्स को स्टडी किया, और फिर देखा कि उनमें भी सब जो 10,000 को कैंसर हुआ और वहां पर सिर्फ 10 लोगों को ही कैंसर हुआ, तो फिर यह निर्णय किया गया कि कितना गुना ज्यादा पॉसिबिलिटी है।
0: स्मोकिंग किल्स, हम में से हर कोई शायद इस स्लोगन से गुजरता है, स्मोकिंग किल्स, लेकिन जब भी हम सिगरेट उठाने लगते हैं ये स्लोगन तब हमें क्यों नहीं याद आता? जब हम बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या जा रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी तो काफी स्ट्रांगली हमारे दिमाग में इम्बाइब्ड है, सो क्यों नहीं तब वो सामने आ जाती है?
3: क्योंकि तब तक वो ऑलरेडी शुरू में, जैसे किरीश भाई ने भी कहा, पहले हमने जो डिस्कस किया, फर्स्ट वी ट्राइड इट आउट फॉर द थ्रिल, ठीक है, तब वो इन्फॉर्मेशन इसलिए मायने नहीं रखती थी कि एक या दो लेने से इट इज नॉट गोइंग टू किल, एंड बाय द टाइम इट बिकम्स अ हैबिट, तब इवन इफ आई अंडरस्टैंड कि स्मोकिंग किल्स, मेरे पास वो विल पावर नहीं है उसको गिव अप करने के लिए, क्योंकि अवेयरनेस न होने के कारण हमें पता ही नहीं चला कि कब हम इस दौर से, जो सिर्फ एक ट्रायल के लिए या एक प्लेजर के लिए था, हम एडिक्शन तक पहुंच गए जिसको हम छोड़ नहीं पा रहे। अब हमारे लिए वो इन्फॉर्मेशन काम की है कि स्मोकिंग किल्स, अब हम कहते हैं कि अब तो मैं इसके बिना कर नहीं सकता हूं।
2: और तब तक आप बुद्धि फिर तर्क ढूंढने लगती है, जैसे आगे मैंने एक तर्क बताया,
3: उसको जस्टिफाई भी कर देते हैं ना कि वैसे भी जितना जीना है।
2: दूसरा एक तर्क ये भी होता है कि मुझे नहीं होगा, भले ये पक्का है कि सिगरेट के कारण लंग कैंसर होता है, परंतु मुझे नहीं होने वाला। तो इस प्रकार से भी व्यक्ति अपने आप की आंखें बंद कर देता है कि हार्मफुल इफेक्ट मुझे नहीं होगी।
0: अगेन, हार्ट की जो प्रॉब्लम जितनी भी आ रही है, कहा जाता है कि मैक्सिमम इफेक्ट स्मोकिंग के कारण है,
2: बिल्कुल,
0: कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, कई सारी, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि हाँ, फिजिकली क्या क्या प्रॉब्लम एक्चुअली सामने आ सकती है।
2: ये जो हार्ट का बताया उसके हम पहले तो चर्चा करें कि खून में प्लेटलेट्स होते हैं कि जो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और चिपक जाने के कारण भी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। निकोटीन से जो ब्लड वेसल्स है वो भी कंस्ट्रिक्ट होने लगती है, सिकुड़ने लगती है, और ऑलरेडी और कई कारण है कि तनाव के कारण वह कंस्ट्रिक्ट हुई है, या तो आप ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं उसके कारण भी वह फैट डिपॉजिट होने लगी है, एक बहुत बड़ा एडिशनल कारण बन जाता है। जो मैंने कार्बन मोनोक्साइड की बात की, कार्बन मोनोक्साइड के कारण भी हीमोग्लोबिन है वह कार्बन मोनोक्साइड से चिपकता है, और फिर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है खून की वो अनेक गुना, थोड़ी सी नहीं, ऑलमोस्ट 20-25% ही रह जाती है। यह एक हार्ट के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और निकोटीन से वो प्रेशर भी बढ़ता है, ब्लड वेसल्स पर प्रेशर आता है जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। ऐसे ही जो इमीडिएट इफेक्ट है वो तो आपके होठों पर है, जो हीट जनरेट होती है, हीट के कारण होठों का कैंसर, जीभ का कैंसर, मुंह का कैंसर होने की संभावना, जितनी आप ज्यादा सिगरेट पीते हैं उतनी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सिस्टमेटिक रिसर्च है, सिर्फ कोई एक दो किस्सों को देख करके किसी ने कहे कि भी एक स्टोरी नहीं बना दी कि सिगरेट के कारण जीभ का कैंसर होगा। दिस इज रियली अ सिस्टमेटिक रिसर्च विच हैज प्रूवन। और दूसरा, आजकल तब क्या हो रहा है कि सिगरेट में निकोटीन बढ़ रहा है। एक रिसर्च स्टडी हुई थी कि करीब पिछले 12 सालों में सिगरेट में 11% निकोटीन है वह बढ़ा है। और दूसरी बात कि अभी सिगरेट्स को इससे अलग अलग तरीके से बनाते हैं कि भी व्यक्ति ज्यादा पफ्स ले सकते हैं, तो इसके कारण भी जो हार्मफुल इफेक्ट है वो बढ़ रही है।
0: और एक अगली बात मेरी ये थी कि अगर छोड़ना चाहते हैं तो क्या एकदम से छोड़ी जा सकती है या फिर धीरे धीरे करके छोड़ी जाती है?
2: सक्सेस तो एकदम से ही मिलती है, भल हर व्यक्ति सफल न भी हो पाए, परंतु जो सक्सेस मिलती है वो जब आप एक बार निर्णय करते हैं और पूरा छोड़ दे तब सक्सेस मिलती है, बल उसके लिए थोड़ा सा समय लिया जा सकता है। आप ये निर्णय कर ले कि आज से 15 दिन के बाद एक डेट निश्चित कर दे कि इस डे को मुझे 100% सिगरेट को छोड़ना है, फिर उन 15 दिन के लिए आप मैक्सिमम एफर्ट करिए कि जितना कम से कम हो। उसमें भी कोटा सिस्टम नहीं चलती है, कई डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आज अगर आप 15 सिगरेट पी रहे हैं तो कहेंगे कि भी एक वीक के लिए आप 10 पियो, फिर और एक वीक के लिए 5 पियो और फिर उसको कंप्लीटली छोड़ो। मैं सोचता हूं कि ये राइट नहीं है। ये संभव है कि फर्स्ट डे ही आपको एक सिगरेट से भी चल जाए तो फिर दूसरी क्यों पीनी चाहिए। इसलिए ये संभव है कि भी थोड़े दिन हम कम से कम करें और फिर उसको पूरी तरह से
0: एक डेट फिक्स करके ये कर सकते हैं। दिस इज अ टेक्निक एक्चुअली, जैसे छोड़ने जाए डी एडिक्शन के ऊपर हम और बात करेंगे। तो बीच में मेरे पास आया, अच्छा सिगरेट स्मोकिंग सिस्टर शिवानी एक ऐसा व्यसन है, एक ऐसी, अभी तक हम उन आदतों की बात कर रहे हैं जो सिर्फ मुझे अफेक्ट कर रही है, जो मुझ तक ही सीमित है और मैं ही उससे अफेक्टेड हो रहा हूँ, चाहे हम बाकी सारे व्यसनों की बात करें, लेकिन सिगरेट स्मोकिंग एक ऐसा व्यसन है, एक ऐसी लत है जो पूरे समाज को, पूरे पर्यावरण को खराब कर रही है। जब पैसिव स्मोकिंग की बात आती है, जब वो स्मोक पूरे वातावरण में जा रहा है, घर में भी देखा गया है कि जो इन्फेंट डेथ्स की बात है उसमें भी स्मोकिंग शायद काफी रिस्पॉन्सिबल है, तो वो जो पैसिव स्मोकिंग है उसके इफेक्ट्स क्या है?
2: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने खुद ये जो बात बताई कि जब आप पैसिव स्मोकिंग करते हैं तो बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और विशेष स्टडी भी की गई है कि बच्चों पर बुरा प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि उनके जो लंग्स है अभी भी डेवलप हो रहे हैं, नहीं वो टेंडर है एक प्रकार से। एडल्ट पर कम इफेक्ट होगी, बच्चों पर और ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होती है। और एक यही चीज देखी गई जिसको कहा सडन इन्फेंट डेथ्स, SIDS कहते हैं, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो यह सिंड्रोम में कई बार पाया है कि एडल्ट्स का स्मोकिंग है वही उसके लिए कॉज है। तो कहेंगे कि इट कैन बी नो लाइक अ डेथ पेनल्टी आल्सो, कई बार तो लोगों ने भी रियलाइज किया।
0: इट्स एक्चुअली सो सैड, और देखा जाए तो पूरे पर्यावरण, पूरे समाज के लिए ये व्यसन के रूप में सामने आ जाता है। सिस्टर शिवानी, स्पिरिचुअली अगर हम देखें, क्योंकि बाकी सारे व्यसनों की, आदतों की हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये जहां पूरा का पूरा समाज एक सिगरेट से भी, एक सिगरेट के स्मोक से भी इफेक्ट हो रहा है, स्पिरिचुअली हाउ कैन वी डील विद इट?
3: आई थिंक इट्स डिफिकल्ट, बिकॉज जो कर रहा है वो शायद औरों के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि वो तो अपने बारे में ही नहीं सोच रहा है। यू नो, पहले तो हम अपने बारे में सोचते हैं, अगर मुझे गिव अप करना है, मैं शायद इस एंगल से सोचकर नहीं गिव अप कर सकती हूँ कि इसका नुकसान, हाँ फैमिली का अगर हम सोचें कि इसका मेरे बच्चों पर नुकसान हो रहा है, मेरी इमीडिएट फैमिली जो साथ में रहती है, विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ देयर्स दे आर कंज्यूमिंग, और हम सब कुछ अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनको खुशी देना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू गिव देम द बेस्ट ऑफ हेल्थ, तो हम उनको क्या दे रहे हैं? ये एक थॉट पे अगर हमें आए कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, शुड बी अ रीजन इनफ टू गिव इट अप एट वन गो। और एक थॉट से इसको गिव अप कर सकते हैं। हमारे पास रिट्रीट सेंटर में एक भाई आए थे, प्रिंसिपल थे, जो 5 दिन की रिट्रीट के लिए आए थे, और रिट्रीट सेंटर में तो स्मोकिंग अलाउड नहीं है ब्रह्मा कुमारीज कैंपस में। तो अब उनको पता था कि उनको 5 दिन यहाँ रहना है, तो ही इज नॉट अलाउड टू स्मोक। तो उन्होंने पहले दिन ही कहा कि आई एम सॉरी, मैं इस रिट्रीट में हिस्सा नहीं ले सकता हूँ, आई हैव टू गो बैक, बिकॉज वो 40 या कुछ सिगरेट रोज स्मोक करते थे और काफी बुजुर्ग थे, 50 अबव। तो फिर सभी ने उनको कहा कि ट्राई करके देखते हैं, यू नो आप इस कैंपस में आए हैं, और बहनों ने कहा कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर आप यहाँ कोशिश करें तो यू विल बी एबल टू गिव इट अप। तो उन्होंने कम नहीं किया, क्योंकि वहां कम करने की मार्जिन नहीं थी, क्योंकि वो कैंपस के अंदर थोड़ी एक भी नहीं ले सकते। तो पहले दिन से ही जब ठहरे तो लेना बंद कर दिया। 2 या 3 दिन उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, यू नो वो रिट्रीट के लिए भी हिस्सा लेने नहीं आ सकते थे, वो कमरे में ही रहते थे, उनको चिंगम और लौंग और उस तरह के सब्स्टिट्यूट दिए जा रहे थे। 3 days द ब्रदर वॉज इन अ लॉट ऑफ यू नो टर्मोइल, लेकिन एक भी नहीं लिया, एक भी सिगरेट, राइट फ्रॉम 50 या जो भी वो लेते थे, एक भी नहीं लिया। 4th day वो आए उस वर्कशॉप के अंदर, और 5th day तो जाने का दिन था वापस। 5वें दिन ही वॉज बिल्कुल ओके, एकदम ओके. और जाने से पहले सभी लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो वो क्लास के सामने आए और एक्सपीरियंस शेयर करने लगे तो रोने लगे सबके सामने एकदम, और कहा कि आज मैं जब घर जाऊंगा तो सर उठा कर जाऊंगा. कहते मेरी बेटी मेरे से बात नहीं करती थी क्योंकि उसको ये मेरी हैबिट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मेरे मैं उसके लिए करना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं सकता था, लेकिन आज मैं बहुत गर्व से घर जाऊंगा कि मैंने इस आदत को छोड़ दिया है. और 2 साल के बाद वो फिर आए रिट्रीट सेंटर में, हमने नहीं पहचाना क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं, तो उन्होंने आकर कहा कि आपने पहचाना मैं वो ही हूँ जो 50 सिगरेट स्मोक करते थे. कहता वो दिन और आज का दिन 2 साल एक भी नहीं लिया बीच में, नॉट इवन वन.
0: That's wonderful. Actually, कहीं ना कहीं जो ये सोशल इशू भी है, कहीं ना कहीं इसका मतलब जो स्मोकर्स हैं, दे हैव दिस गिल्ट जिसको वो मार के आगे बढ़ते जाते हैं.
3: इट्स जस्ट नॉट एबल टू डू इट. लेकिन जब उनको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में आकर बहुत बहुत बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने इन आदतों को एक बारी में छोड़ा है. इनफैक्ट सेंटर पे और हेडक्वार्टर में तो एक दान पेटी होती है जिसमें आप जो कैरी कर रहे हैं ना अपनी पॉकेट में, सिगरेट या बीड़ी का पैकेट, वो आप वहां डाल कर जाइए और दृढ़ संकल्प से, बिकॉज ऑल दैट इट रिक्वायर्स इज वन थॉट. जब हम अपने गुस्से को और इन बातों को थॉट पावर से खत्म कर सकते हैं, तो ये तो फिजिकल एडिक्शन है. और बहुत सारे लोग एक थॉट से धीरे धीरे नहीं कम किया, कितने एक थॉट से गिव अप किया है, एंड दैट टू जो बहुत ज्यादा स्मोक करते थे. तो जो अभी कैजुअल है उनको तो गिव अप करने में कुछ भी टाइम नहीं लगे.
0: ये सिगरेट या स्मोकिंग जो है, सरकार भी अगर हम आज देखें तो कई बाकी सारे लत या एडिक्शंस के ऊपर इतनी बात ना करके स्मोकिंग पे ही इतना जोर इसीलिए है कि कहीं ना कहीं पूरा सोसाइटी पर्यावरण जो है इससे परेशानी में है. परिवार का हमने पिछली बार भी बात की थी, एक्सेप्टेंस हो जाती है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. हमारे फादर स्मोक करते हैं तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है वो तो करेंगे ही. हमारे हस्बैंड स्मोक करते हैं, इवन कई घरों में मदर स्मोक करती है तो मान ही लेते हैं कि हाँ स्मोक करेंगे ही. बार बार कहना क्या पेस्टरिंग हो जाएगा, क्या कह सकते हैं? मतलब कई बार क्योंकि ये भी लगता है कि कहीं हम उनके पीछे ही पड़ गए हैं कि स्मोक नहीं कीजिए, स्मोक नहीं कीजिए. व्हाट टू डू पेरेंट या एक जो फैमिली है उसकी काउंसलिंग कैसे होनी चाहिए कि वो स्मोकिंग को छोड़ पाए?
2: एक तो कहते हैं कि उनको स्कोल्ड करना वो अच्छा नहीं है, जैसे कि ना कन्फ्रंटेशनल अप्रोच, विजय से आए डांटना शुरू कर दो, है ना, बात करना बंद कर दो, तो ये चीजें इतनी काम नहीं करती है. हमको उन्हें सपोर्ट देना पड़ेगा कि भी हम आपके साथ है. ये छोड़ना तो जरूर है, एक्सेप्ट भी नहीं करना है कि भी 100% छोड़ना है, परंतु हम आपको उसमें पूरा पूरा सपोर्ट देंगे. और फिर अपनी बात को उनके सामने रखे, उनको समय प्रति समय अगर अलग अलग तरीके से ये स्पष्ट किया जाए, कुछ ऐसे अच्छी बुक्स है तो वो घर में ला दो, पिक्चर्स भी इफेक्टिव होते.
0: डी एडिक्शन की जहां बात करते हैं स्मोकिंग की, उसे वो मानते ही नहीं है कि डी एडिक्शन की जरूरत है. बहुत ज्यादा बार लोग यही कहते हैं कि हाँ एक बार में हम सोचेंगे छोड़ देंगे जब हमारी मर्जी होगी. छोड़ते भी हैं लेकिन देखा ये जाता है कि 6 महीने में या 3 महीने में या 15 दिन में एक एक एक सिगरेट से शुरू करके दोबारा रिलैप्सेस हो जाते हैं. The way you said, Sister Shivani, it's just a thought away. एक thought away है. छोड़ना आसान है, उसे continue करना मुश्किल है. अध्यात्म कितनी मदद करे?
3: Actually, कोई भी चीज चेंज करने के लिए, नॉट ओनली स्मोकिंग, कोई भी आदत को चेंज करने के लिए हम 4 टाइप से चेंज अपने अंदर ला सकते हैं. एक है बिहेवियरल लेवल चेंज, जो बिल्कुल ही ग्रॉस लेवल पर है कि आज आज से हम इतनी ही पियेंगे या हम पैकेट नहीं खरीदेंगे, एक एक करके लाएंगे. ये जो बिहेवियरल लेवल पर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरह वो आदत हमारे से छूट जाए. दूसरी लेवल पर जो चेंज होता है वो है इंटेलेक्चुअल, कि मेडिकली क्या नुकसान है, फिजिकल क्या नुकसान है. तो इंटेलेक्ट को टैप किया जाए, डॉक्टर से बात की जाए, कहीं वो मुझे ट्रिगर कर दे. तीसरा है इमोशनल लेवल चेंज. फैमिली मेंबर्स कहते हैं मेरे लिए छोड़ दो, हमारा इतना नुकसान हो रहा है. बच्चे कहते हैं हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो आप सामने वाले के इमोशंस को ट्रिगर करते हैं कि कहीं इमोशनली वो गिव अप कर दे अपनी आदत को. अब ये तीनों प्रकार के जो चेंज है, बिहेवियरल लेवल, इंटेलेक्चुअल या इमोशनल, ये टेम्पररी चेंज है. किसी में परमानेंट हो भी सकते हैं, लेकिन इनका रिलैप्स होना बहुत कॉमन है कि यू माइट गो बैक टू योर ओल्ड. जो रूट परमानेंट चेंज है उसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस लेवल पे चेंज, कि बिल्कुल अंदर से आपने उस चीज को स्वीकार किया, सिर्फ मेडिकली नहीं, सिर्फ किसी के कहने पर नहीं, सिर्फ धीरे धीरे से छोड़, अंदर से आपकी कॉन्शियसनेस को वो समझ में आ गई जब वो बात, तब फिर वो कोई आपको कहे या कोई आपके सामने सारी ऑफर भी करे, यू विल नॉट गो बैक टू इट व्हेन दैट चेंज कम्स फ्रॉम इनसाइड. सो देयर विल बी एन एंटायर शिफ्ट इन द कॉन्शियसनेस. और इसको एक ही थॉट लगता, इट्स बेसिकली सेल्फ रियलाइजेशन. तो वो सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है आप 10 साल से ट्राई कर रहे हो, लेकिन जब वो होना होगा, जस्ट वन थॉट, जस्ट टेक्स वन थॉट, एब्सोल्युटली. और ऑफकोर्स आप मेडिटेशन अगर साथ में करते हैं, आप अगर इस तरह के वायुमंडल में आते हैं जहां सारे बहुत पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, जहां आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो शायद पहले स्मोक करते थे, उन्होंने कितनी इजीली गिव अप किया,
0: और इनफैक्ट ऐसा लगता है कि इट इज पॉसिबल. आज जिस दौर में हम रह रहे हैं एक्चुअली, वहां लगता है कोई भी बात करना, जैसे हम बातें भी करते आए हैं तो ऐसे लगता है, ज्यादातर हमें ईमेल्स भी आते हैं, वो कहते हैं इट इज नॉट पॉसिबल. अच्छी तो बहुत लगती है बातें, लेकिन ये संभव नहीं है. तो ऐसी जगह पे अगर आप जाएंगे जहां दिख रहा है कि वो संभव हुआ हुआ है, सो आई थिंक दैट कैन हेल्प.
3: जहां आपका पीयर प्रेशर वो होगा जो स्मोक नहीं करता, यू नो, कहीं ना कहीं वो संघ की भी तो आवश्यकता है, जिन्होंने, जिसमें से आपको कई ऐसे मिलेंगे जिन्होंने बहुत, यू नो, चेन स्मोकर्स थे, उन्होंने कैसे गिव अप किया, तो वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो जाता है. एंड अगेन सेकंड थिंग, वो जो अति इंद्रिय सुख है, जब परमात्मा से संबंध जुड़ता है तो वो जो सुख मिलता है उसका लेवल इतना हाई होता है, और हमें तब पता चलता कि अगर हम स्मोकिंग या कोई ऐसा पदार्थ लेते हैं तो मेरे वो ब्लिस में वो लीकेज है. देन आई काइंड ऑफ प्रायोरिटाइज कि मुझे क्या चाहिए,
0: एंड देन आई वुड लाइक टू बी कनेक्टेड.
3: तब तो कोई भी चीज छूट सकती है एक क्षण में, फॉर दैट हायर सोर्स ऑफ पावर एंड लव, तो वो एक क्षण में छूट जाती है, डजंट टेक टाइम एट ऑल.
0: जहां परमात्मा के साथ वो सब कुछ मिलने लग गया, एक्चुअली आई कैन अंडरस्टैंड दैट, यू नो, द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट, यू गेट इनटू दैट कनेक्शन, देयर इज नो नीड फॉर एनीथिंग
2: एल्स एज वेल.
0: एक्चुअली वो नशा सबसे सुंदर, सबसे बड़ा नशा हो जाता है. और कुछ छोटे छोटे युक्तियां हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करें.
2: तो मैं ये चाहता हूँ कि पावरफुल मोटिवेशन डेवलप करना चाहिए, और आज ही छोड़ो, इसी समय नहीं सोचो कि मैं 5 साल के बाद छोड़ूंगा, 10 साल के बाद छोड़ूंगा, तब तक बहुत देरी हो गई होगी. इतना हो सके आज ही जल्दी से सोचो, एक निर्णय करो कि मुझे पूरी तरह से इस व्यसन पर विजय प्राप्त करना है. फिर और आगे के स्टेप्स भी हो सकते हैं, कि जो पहले भी मैंने कहा कि डेट डिसाइड करो, मे बी 10 दिन 15 दिन के बाद की डेट, कि इस दिन से 100% मैं छोड़ दें, और सभी को बताओ, अपने तक सीमित नहीं रखो,
0: और इमेजिन करने लग जाओ कि छूट गया,
2: छूट गया, ये भी ठीक है. हाँ. परिवार में भी बताओ, फ्रेंड्स को बताओ, क्योंकि सभी को पता होगा तो उससे भी आपको एक फोर्स मिलेगा, अंदर में मोटिवेशन मिलेगा. हाँ, पीयर प्रेशर भी, सबको पता है मुझे यह छोड़ना चाहिए. और जब जब भी इच्छा हो, इसमें भी कुछ युक्तियां जो काम करती है, कि जब भी आपको इच्छा हो तो यह प्रश्न पूछो कि क्या मैं और आधा घंटा नहीं रुक सकता हूं. 99% जवाब मिलेगा, कोई बात नहीं, आधे घंटे में मृत्यु नहीं होनी है. आधे घंटे के बाद फिर से पूछो कि भी क्या और कोई आधा घंटा नहीं रुक सकता हूं, या तो और 10 मिनट नहीं रुक सकता हूं, जितना, और 5 मिनट नहीं रुक सकता हूं, क्योंकि कई बार अर्ज खत्म हो जाती. इस क्षण, हाँ, इस क्षण
0: उसको अगर हम उसी वक्त थॉट बदल दें तो शायद वो,
2: या तो पोस्टपोन भी कर दो. आपने 5 मिनट भी पोस्टपोन कर दिया, हो सकता है दूसरा 1 घंटा भी आप रुक सकते हैं. और जब अब ऐसे 2-3-4 घंटे के बाद आपको लगे कि असंभव है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, सिगरेट पीनी ही पड़ेगी, तो तब अपने पास एक भी सिगरेट नहीं रखो. आपने अपने पास रखी तंबाकू, कुछ भी नहीं, तो तुरंत ही आपको ले लेंगे. परंतु जब ऐसा इम्पॉसिबल लगे दिन में, तो स्वयं जा करके वह 1 सिगरेट खरीदो. बच्चों को नहीं भेजो, हाँ, सर्वेंट्स को भी नहीं भेजो, नहीं तो वह आपकी आदत और बढ़ेगी. जाओ, 1 ही सिगरेट खरीदो, और वह भी दूसरी ब्रांड की, आप जो पीते वही नहीं, उससे कोई दूसरी ब्रांड के सिगरेट 1 खरीदो, क्योंकि उसकी जो टेस्ट है वो उसका अच्छा नहीं होगा, उसके कारण वह आपको कम सेटिस्फेक्शन देगा. और फिर बस आधी ही सिगरेट पियो, पूरी भी जरूरत नहीं है. आधी सिगरेट से भी जो आपको क्रेविंग हो रही है, विड्रॉल्स हो रहे हैं, वह खत्म हो जाएंगे. ऐसा अगर व्यक्ति कोशिश करे तो पहले दिन से ही वह 5% या तो 2% पे भी आ सकता है। और एक बहुत ही जो अच्छे न्यूज है सिगरेट छोड़ने के, कि जैसे ही आप सिगरेट छोड़ते हो 2 घंटे में फायदा होना शुरू हो जाता है। आप पूछेंगे क्या फायदा, तो सबसे पहले तो यह है कि भी आपने सिगरेट छोड़ी तो 3-4 घंटे में ही आपकी सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ती है, तो आप गहरा सांस ले पाते हो ना, तो उसके कारण आपको अच्छा लगता है। और कुछ दिन बीतते हैं तो टेस्ट अच्छा आने लगता है,
0: रियल टेस्ट आने लगता है।
2: खाने का पहले टेस्ट नहीं होता था। ब्रह्मा कुमारीज में हम विशेष रूप से भी व्यसन छोड़ने के लिए कुछ कैंप्स लगाते हैं। तो स्मोकर्स का एक बार कैंप लगा था, तो वहां पर 8 दिन तक सभी आए और फिर वापस गए। वापी से गुजरात में एक स्थान है, वहां से कुछ भाई आए थे कि जो सिगरेट पीते थे, तो एकाध मास के बाद वह सेंटर पर गए और ब्रह्मा कुमारी बहन को कहा कि देखो बहन जी, आपने हमको वह शिविर में वह माउंट आबू में भेजा, उसे चलो ये तो फायदा हुआ है कि हमारी सिगरेट छूट गई, परंतु तो और एक बहुत बड़ा फायदा हुआ क्या, कि अभी खाना टेस्टी लगने लगा।
0: हमारा टेस्ट वापस,
2: पहले खाने का टेस्ट का ही हमें पता नहीं था, तो ऐसे सचमुच बेनिफिट्स है वह फर्स्ट डे से ही होने शुरू हो जाते हैं।
0: डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, आज जो एक हमने खास उस व्यसन, उस एडिक्शन की बात की थी, जिसे हम आज के दौर में एडिक्शन ही नहीं मान रहे, लेकिन अगर हम देखें तो पूरे परिपेक्ष में वही सबसे ज्यादा खतरनाक पर्यावरण के लिए, समाज के लिए और हम इंडिविजुअल्स के लिए भी होता जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, एक्सेप्ट करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सिगरेट को यूं जलाकर फूंकना और फिर कई तरह के आजकल हमारे जो पूरी सोसाइटी में जो कुछ चल रहा है उसे स्वीकारते आ रहे हैं। आज चाहे मैं खुद स्मोक करता हूं या मेरे परिवार में कोई स्मोक कर रहा है, पहली बात, पहला जो स्टेप आज हम लेंगे वो ये कि उसे स्वीकारना बंद कर देंगे, बदलाव की तरफ जरूर बढ़ेंगे। उसके बाद जैसे आज हमारी बातचीत रही कि आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, तो तय करके आज से ही उसे छोड़ देना है और फिर एक ऐसा विल पावर, एक ऐसी जो आत्मशक्ति है उसे पहचान कर, जो हमने खुद की पहचान की बात की है, जो मेडिटेशन की बात करते आ रहे हैं हम, तो आज वक्त आ गया है कि हम उसे खुद टेस्ट करें कि क्या सचमुच हम उस विल पावर को अपना पाए हैं इस पूरे सफर में। अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल कीजिए या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं।

0: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: शादी है

रोज क्लब में उसका मिलना, देकर हाथ हाथ में चलना। रोज समुंदर

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली

0: सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग ड्रिंकिंग वेयरिंग, लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग स्पीकिंग बिहेविंग, दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं, तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों के गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपके चिंतन को एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं नीतू जैन हमेशा की तरह आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है कम सोचो धीरे सोचो, कम बोलो धीरे बोलो, कम खाओ धीरे खाओ। चलिए आज मैं आपसे इस विषय पर अपना चिंतन शेयर करूंगी। दोस्तों, हमने कई बार सुना है कम खाओ धीरे खाओ, कम सोचो धीरे सोचो, कम बोलो धीरे बोलो, लेकिन इसका रियल अर्थ क्या है? चलिए आज हम इस पर गहराई से सोचते हैं, सुनते हैं। कम खाओ धीरे खाओ, कम सोचो धीरे सोचो का गहरा आध्यात्मिक और व्यवहारिक अर्थ है। यह वाक हमें संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो चलिए आज हम इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले कम खाओ धीरे खाओ, इसका क्या अर्थ है और इसके क्या उपयोग हैं? इसे हम अपनी जीवन शैली में कैसे उतार सकते हैं? कम खाओ, इसका रियल अर्थ है कि हमें आवश्यकता के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, ना कि लालच या स्वाद के लिए। अधिक खाने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन शरीर को स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर रखता है। संयमित भोजन आयुर्वेद और योग में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए अब जानते हैं धीरे खाने का क्या फायदा है। भोजन को शांति और ध्यान पूर्वक ग्रहण करना माना भोजन को धीरे धीरे खाना। भोजन को धीरे धीरे चबाने से पाचन बेहतर होता है, इससे शरीर को अधिक पोषण मिलता है और ओवर ईटिंग से बचा जा सकता है। भोजन को आनंद और कृतज्ञता के साथ खाना चाहिए। चलिए अब हम दूसरे विषय पे बात करते हैं, कम सोचो धीरे सोचो, इसके क्या फायदे हैं और इसका रियल मीनिंग क्या है। कम सोचो, अनावश्यक चिंताओं और विचारों में ना उलझें। अति सोचने से मानसिक तनाव बढ़ता है और मन अशांत रहता है। जीवन में सरलता और संतोष रखना मानसिक शांति के लिए अति आवश्यक है। फालतू और नकारात्मक विचारों से बचकर सकारात्मकता को अपनाना ही कम सोचने के फायदे हैं। अब चलिए जानें धीरे सोचो का अर्थ और उसके फायदे। धीरे सोचो माना विचारों को संतुलित और धैर्य पूर्वक रखें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें, बल्कि धैर्य पूर्वक सोच विचार कर करें। मन को स्थिर और केंद्रित रखना जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए आवश्यक है। जल्दबाजी के लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। अब चलिए आइए जानते हैं तीसरे विषय में, कम बोलो धीरे बोलो, इसके फायदे और इसका अर्थ क्या है। आवश्यकता से अधिक बोलना कभी कभी समस्याओं को जन्म देता है, इसलिए सोच समझकर और मित भाषी बनकर बोलना चाहिए। धीरे और शांति से बोले गए शब्द अधिक प्रभावशाली होते हैं, इससे संवाद बेहतर होता है और हम दूसरों को अधिक सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस चिंतन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह वाक हमें संयम, धैर्य और संतुलित जीवन जीने की सीख देता है। यदि हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अधिक स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। कम खाओ धीरे खाओ, कम बोलो धीरे बोलो, कम सोचो, धीरे सोचो एक गहरी जीवन शैली से जुड़ी सीख है, जो संतुलन, धैर्य, आत्म संयम की ओर इशारा करती है। इसका अर्थ अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज के चिंतन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए चिंतन के साथ। बने रहे हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। धन्यवाद।
0: प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का विषय आपके मन मस्तिष्क में एक नए विचारों का संचार करने में सफल रहा होगा। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगले कार्यक्रम में हम एक और रोचक विषय के साथ लौटेंगे। तब तक अपने विचारों को निखारते रहें और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।

सब बकवास है, सब बकवास, सब बकवास है, सब बकवास। बालू मेहता को जिसकी चलती है हुकूमत उसकी है दुनिया का दस्तूर यही, सब गलत यहाँ ताकत ही सही, सब बकवास। किसने की प्रेम की बात उसे हमारे सामने लाया जाए, हम उसे सख्त से सख्त सजा देंगे।

0: पुणेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो।
1: There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister.
2: Om Shanti.
1: Aapka being bliss mein swagat.
2: Thank you so much.
1: Last time hum baat kar rahe the ki kaise apni energy deplete ho jati hai aur hame kaise conserve karna hai apni energy. Hum sote bhi hain to dimag chalta rehta hai, thoughts chalti rehti hain. जैसे आपने नलके का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था, जैसे अपने जैसे बॉम्बे में तो टाकियों में पानी आता है, घर के ऊपर छोटी छोटी टाकी होती है, फ्लैट्स में तो नल खुला रह जाए तो सारे की सारी टाकी खाली हो जाती है. उसी तरह हमारी भी एनर्जी विद और विदाउट आवर नॉलेज,
2: कांट से विद और विदाउट आवर नॉलेज, इट्स विद और विदाउट अवेयरनेस.
1: अच्छा,
2: इन इफ आई एम थिंकिंग, एक घंटा बीत गया एंड ऐसे ही सोच रहे हैं, सोचते जा रहे, अवेयर ही नहीं है कि क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसा सोच रहे हैं, क्वालिटी.
1: उस समय ये चीज को कौन कंट्रोल कर रहा है, मन?
2: हाँ, मन. आपने कहा जब हम सोते हैं तो दिमाग चलता है ज्यादा, दिमाग नहीं, मन. हमने क्या किया, मन और दिमाग में थोड़ा सा, मतलब कहीं भी किसी भी दोनों को यूज कर लिया. दिमाग थॉट्स नहीं क्रिएट करता है.
1: हाँ, लेकिन कैजुअली जब बात करते हैं, मेरा दिल कहता है, मन कहता है,
2: राइट.
1: आपने कहा था थॉट्स के बारे में अवेयरनेस, मैंने अवेयरनेस की तो अवेयर करते करते करते वो स्लिप हो जाता है.
2: कोई बात नहीं, जर्नी.
1: कभी याद आता है कि यार मैं तो अवेयरनेस करने बैठा था और कहाँ पहुंच गया.
2: इट इज लाइक लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक मदर है, छोटा सा बच्चा है, लेकिन उस माँ ने घर का भी पूरा काम करना है और बच्चे को भी संभालना है. उसके पास कोई हेल्प नहीं है, घर में और कोई नहीं है, ध्यान रखने के लिए भी नहीं है, घर का काम करने के लिए भी कोई नहीं है. ऐसे होगा ना घरों में. अब ये माँ क्या करेगी, बच्चे को उस क्रेडल में पालने में डाल देगी, पूरे घर में जाएगी काम करते हुए, सारे काम करेगी घर के, लेकिन सब काम करते हुए उसकी अटेंशन किस पे होगी,
1: बच्चे के रोने पे, आवाज पे.
2: मतलब एक नजर वहां, नजर मतलब मन की नजर, और दूसरा बाकी सारा ध्यान काम पर. लेकिन प्रायोरिटी में कौन ऊपर होगा, बच्चा. फर्स्ट प्रायोरिटी इज टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकिंग केयर ऑफ द होल हाउस. दिस इज वेरी क्लियर फॉर द मदर. वो ये नहीं कहेगी बच्चे का ध्यान रखो तो घर निग्लेक्ट कर दूंगी, घर का काम करो तो बच्चे का मैं ध्यान नहीं रख सकती. नो, शी हैज टू डू बोथ द थिंग्स, दैट्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रायोरिटी बहुत क्लियर है कि फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा, सेकंड घर का काम. कैन शी डू इट?
1: शी कैन. और आपकी बात सुनते सुनते पता मेरा एक्टर का इमेजिनेशन क्या चल रहा है. मैं विजुलाइज कर रहा था एक सीन, एक गांव की औरत हाथ में गुद बच्चा, बच्चे को कुछ खिला भी रही है और सर पे मटका पानी का भी है.
2: ब्यूटिफुल.
1: हाँ? और मटका भी देख रही है.
2: यस. Yes.
1: बच्चे को कुछ खिला पिला बात भी कर रही है.
2: ब्यूटिफुल.
1: हाँ? और खुद भी चल रही है, सारा कुछ बैलेंस भी कर रही है.
2: राइट.
1: और ये भी देख रही है कि सड़क
2: बात भी कर सकती है जो उसके साथ भी और ऐसे लोग चल रहे हैं.
1: हाँ, ये भी साथ देख रही है कि गाड़ी भी कोई आए आगे से, या बैलगाड़ी या साइकिल कोई टकरा ना जाए, सारा कुछ अवेयरनेस उसका,
2: सारा कुछ करते हुए. लेकिन सब चीज में उसकी प्रायोरिटी पे नंबर वन कौन है?
1: नंबर वन बच्चा.
2: बच्चा. सपोज मटका है सर पे,
1: भले गिर जाए, बच्चे ने गिर जाए,
2: क्लियर
1: खड्डा आ गया, समझो.
2: दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ.
1: समझो आगे खड्डा आ जाए.
2: Yes.
1: वो बच्चा संभालेगी, मटका गिरने देगी.
2: क्लियर, कम्प्लीटली क्लियर. ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट प्रायोरिटी बहुत क्लियर है. नंबर वन बच्चे का ध्यान, सेकंड सारी चीजों का ध्यान अपना. अब वो कर सकते हैं ना, ये कर सकते हैं, हम में से किसी को भी ये करना पड़े तो हम कर सकते हैं।
1: से मन को बच्चा बना दिया,
2: तो
1: तब से उसको दुश्मन बना के रखा था। इतने सारे एपिसोड हो गए और मैं कोसता था मेरे को, मेरा मन नहीं चुप होता है, मेरा मन चलता रहता है, मेरा मन रात को भी चलता है, दिन को भी। अजी आपसे बात करते करते भी कितना प्यारा वर्ड आ गया ना, बच्चे
2: बच्चा है ना,
1: मन मेरा बच्चा।
2: हमने सुनते मन एक बच्चा है, अब इसको क्या करना है, सारा दिन सब काम करने हैं, सब काम, परिवार का ध्यान, ऑफिस का काम, सोशल वर्क, फ्रेंड्स के साथ घूमना, सब कुछ करना है, हॉबीज, जिम, डू एवरीथिंग, गो एवरीवेयर, सब करते हुए एक नजर बच्चे पर कर सकते हैं। एंड उसमें भी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर वन कौन, बच्चा, द चाइल्ड, मतलब मेरा मन, सब कुछ करना है एक नजर, यहाँ सब ठीक है, थॉट्स कैसे चल रहे हैं, इसने रोना तो नहीं शुरू किया, रोना मतलब थोड़ा भी, ऐसा क्यों, ऐसा क्या, क्यों हुआ मेरे साथ ये। अब माँ के लिए बच्चा इधर है, काम वो सारा कर रही है, बहुत काम है उसके पास करने के लिए, लेकिन अगर बच्चा रोने लगे तो माँ क्या करेगी, जो काम वो कर रही है वहां से हटकर एक मिनट के लिए उस बच्चे के पास जाएगी, चुप कराएगी, वापस काम पर। अगर उस माँ ने उस समय वो एक मिनट नहीं निकाला तो बच्चा रोता रहेगा। सपोज माँ कहे मेरे पास टाइम नहीं है बच्चे की तरफ देखने के लिए, मैं काम करने में बहुत बिजी हूँ, बच्चा रोना बंद नहीं करेगा, रोता जाएगा, रोता जाएगा, रोता जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ये काम कर रहे हैं। जब तक ये माँ काम से एक मिनट के लिए ना हटे और उस बच्चे को बस एक मिनट ऐसे कर दे प्यार से जाके, बच्चा चुप हो जाएगा। ना तो चॉइस कि वो एक मिनट कब निकालना है, जैसे ही रोने लगे उसी टाइम निकाल दो, क्यों एक घंटा वेट करने के बाद वो एक मिनट निकालना है, कितना रो देगा बच्चा उतनी देर में, उसकी कितनी एनर्जी गई। जैसे ही मन थोड़ा सा भी रोने लगे, ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ऐसे विड्रॉ, दिस इज विड्रॉल। तो जैसे एक माँ बच्चे पर ध्यान रखते हुए सारा काम कर सकती है, अब हम भी अपने जीवन में सारा दिन में सारा काम करेंगे, सारी जिम्मेवारियां उठाएंगे, लेकिन एक नजर बच्चे पर। और अगर ये बच्चा रोने लगे, मतलब ये इधर उधर की ऐसी दर्द वाली थॉट्स क्रिएट करने लगे, उथल पुथल या हलचल थोड़ी सी होनी शुरू हो जाए, तो हम जो कुछ कर रहे हैं उससे एक मिनट के लिए विड्रॉ कर ले, और विड्रॉ करके वो जो थॉट्स चल रहे हैं उनको रिजोल्व कर दे, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, ऐसे नहीं, आंसर कर दे इन क्वेश्चंस को, टेक आउट दैट लिटिल वन मिनट ऑफ टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी से नो दिस इज यू नो इट डजंट साउंड वेरी, हाउ आर यू सपोज टू डू दिस, दिस वर्क्स। आपका मन रोने लगा है, उसने कुछ कुछ कुछ बोलना शुरू किया है विच इज क्रिएटिंग डिसकम्फर्ट, डोंट कीप रिमेनिंग बिजी डूइंग वर्क आउटसाइड एंड सेइंग आई डोंट हैव टाइम फॉर माय सेल्फ, थिंकिंग दैट दिस क्राइंग इज नेचुरल, इसका ये इस तरह से अंदर रोना तो नेचुरल है। जितनी देर रोता रहेगा उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, टेक आउट दैट वन मिनट, अपने मन में जो बातें चल रही हैं उसको आंसर कर दो। और कोई भी आंसर अगर नहीं मिले, सपोज कोई ऐसी प्रॉब्लम है, चिंता है, उसका अभी आंसर नहीं है, तो कम से कम उस मन को ये इंस्ट्रक्शन तो दो कि अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, हम दो घंटे के बाद इसके बारे में सोचे।
1: कितना इजी कर दिया आपने, जब से आपने इसको बच्चा बोला ना, मेरा ध्यान ऐसे ही जा रहा है कि जैसे मैं अपने बच्चे को कैसे पालता हूँ, कि बेटा ये गलत काम है, नहीं करना। और छोटा होता नो नो नो बेटा, हाथ जल जाएगा, दिए के पास नहीं जाना, पूजा करो, हाँ ये आरती है, नमस्ते करना है, उसमें आग में हाथ नहीं लगाना। बच्चा और बड़ा हुआ तो बेटे स्कूल में ये सब नहीं करना, और बड़ा हुआ मतलब ऑल द टाइम जैसे बच्चे की तरह, कितना सुंदर है। और यही कल मैं इसको डांट रहा था, मेरे मन को, अपने आप को कोस रहा था, बहुत अपने आप को गिराया। मैंने बोला घटिया घटिया बातें तो याद करता, तेरे साथ इतनी अच्छी बातें वो नहीं देखता, इसकी भी बुरा सोचता, तो कितना ये है तो कितना वो है, कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे बच्चा बोला ना, एक रिलेशन बन गया उससे मन का।
2: पर ये जो आपने कहा ना, प्यार से करना बेटर लग रहा है, कोसना, दबाना, कंट्रोल करना, सप्रेस करना, वो मेथड वर्क नहीं करेगा।
1: बच्चों से भी करते हैं
2: ये हम सबके साथ, लेकिन क्योंकि जब हम लोगों के साथ भी डील कर रहे हैं तो हम किसके साथ डील कर रहे हैं, किसी के मन के साथ डील कर रहे हैं ना।

0: हम किसी के मन के साथ ही तो डील कर रहे हैं, कानों के साथ आंखों के साथ थोड़ी डील कर रहे हैं।
1: बहुत अच्छा।
0: हम हरेक के मन के साथ डील कर रहे हैं और हरेक का मन, मेरा मन भी और मेरे आसपास जितने हैं सभी का मन आज थोड़ा सा चंचल है। चंचल मीन्स वो बच्चा जिसको कभी सिखाया ही नहीं कि सही क्या गलत क्या, कब उठना कब बैठना। भी एक ऐसा बच्चा देखो जिसकी पेरेंटिंग में उसको सिखाया ना गया हो कि कैसे बोलना है कैसे चलना है, सिखाया नहीं। ऐसे ही हमने अपने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी सिखाया ही नहीं क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, कब सोचना है कितना सोचना है किस बारे में सोचना है। मेरे मन को किसने सिखाया?
1: कोई हवा बच्चा था सिस्टर।
0: हाँ।
1: मालूम ही नहीं था ना अभी तक कि वो मेरा बच्चा है।
0: पर सिखाया नहीं, तो अब जब किसी बच्चे को कुछ ना सिखाया जाए तो बच्चे की गलती बोलेंगे?
1: नहीं
0: नहीं, तो कहते देखो इसके पेरेंट्स ने इसको कुछ नहीं सिखाया।
1: चलिए ये एपिसोड देख के आपका आप बात करके सिखाना शुरू
0: हाँ,
1: करते हैं।
0: तो अब हम जब बोलते हैं ना मन बहुत चंचल है, मन मेरा है मेरा बच्चा है, इवन अगर डिसिप्लिन्ड नहीं है चंचल है अभी मेरा कहना नहीं मान रहा है, इवन अगर ये है, लेकिन उसको प्यार से परिवर्तन करना और एक सही तरह से जीने का तरीका सिखाना, ये मेरा मन है। और जितना मैं अपने मन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जितना मैं अपने मन को सही तरह से ये पेरेंटिंग करके कर लूंगा, मुझे विधि आ जाएगी कि सबके मन के साथ कैसे करना है, क्योंकि ये मन हर एक के पास सेम ही है, सेम है, मन है सबका।
1: एक नया तरीका मिल गया, मतलब दूसरे के दूसरे को भी उसके मन को बच्चा देखो।
0: हाँ।
1: ये इसका बच्चा है, ये मेरा बच्चा है।
0: और बच्चा ही नहीं, सिर्फ एक चंचल बच्चा है जो उसका भी आजकल कहना नहीं मान रहा है।
1: हाउ स्वीट।
0: तो यू नो इट्स लाइक अगर आप किसी और पड़ोसी के पास जाओ और कहो आपका बच्चा देखो कितना तंग करता है, और वो पेरेंट बोले क्या करो मेरा बच्चा तो मेरा कहना ही नहीं मानता है, आप ही मेरे बच्चे को संभाल लो, संभाल सकते हो। तो आज हमारे आसपास जितने लोग हैं ना, उनका अपना जो बच्चा है ना, वो उनके अपने ही कंट्रोल में नहीं है। तो लेट्स नॉट बी वेरी हार्श विद देम, लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उनका मन अभी उतना संयम में नहीं चल, संयम इन द सेंस अपनी चॉइस से नहीं चल रहा है कि जो सोचे जितना सोचे। Let's not be harsh with people. जो आपने कहा कंट्रोल अगर करा, सप्रेस किया,
1: कोसा,
0: it didn't work ना, प्यार वाला मेथड वर्क करेगा ना, तो वो ही मेथड मेरे मन के साथ भी वर्क करेगा। एंड इम्पोर्टेंट है जो मेथड मेरे मन के साथ वर्क करेगा वो सबके मन के साथ वर्क करेगा।
1: आपका मतलब ये है कि जो एक बच्चे के साथ मन करेगा सब बच्चों के
0: साथ, क्योंकि फाइनली सब बच्चे हैं और सब बच्चों को सेम चीज अच्छी लगती है,
1: इसीलिए प्यारी प्यारी टीचर सब बच्चों को अच्छी लगती है।
0: यस एब्सोल्युटली। और वो जो टीचर प्यार करती है, जो पेरेंट प्यार करता है, बच्चा उनका कहना मानना चाहता है, मानना पड़ता है नहीं। एक है मुझे इस टीचर का कहना मानना पड़ता है, एक है मुझे इस टीचर का कहना मानना अच्छा लगता है, क्योंकि ये टीचर मेरे फायदे के लिए बोल रही है, बट इट्स कमिंग विद द राइट एनर्जी।
1: मानकर खुश हूँ,
0: अच्छा लगता है, कंफर्ट फीलिंग। क्यों? दोनों टीचर बात वो ही कर रहे हैं लेकिन एनर्जी कौन सी दे रहे हैं करने के टाइम, एक है नेगेटिव एनर्जी एक है प्यार वाली एनर्जी। जो एनर्जी कंफर्टेबल होगी वो बात अच्छी लगेगी। तो अब पहले इम्पोर्टेंट प्यार से करना है वो तो ठीक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि दोनों काम कर लेंगे, कि बच्चे का ध्यान रखते हुए अपना जीवन संभालेंगे पूरा, बाकी जिम्मेवारियां संभालेंगे। एंड उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी कौन? आज अगर हम किसी से भी पूछें व्हाट इज योर प्रायोरिटी इन लाइफ, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ, कहेंगे वर्क। अच्छा, सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली, थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी माई सेल्फ। तो जो लिस्ट है
1: जैसे उस स्कूल में 5 साल की बच्ची ने बोला था ना,
0: yes.
1: कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो,
0: सेड हैप्पी,
1: शी सेड मैं हैप्पी बनना चाहती हूँ,
0: राइट right.
1: तो बोले तुम्हें सवाल ही समझ में नहीं आया।
0: समझ में नहीं आया। तो आज हम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट से मिले दिल्ली में, एंड ही वर्क्स फॉर 14-15 आवर्स इन सम रिसर्च लैब एट अ वेरी हाई पोजिशन इन दिल्ली, एंड एक्चुअली वो काउंसलिंग करते हैं और लोगों की। तो मेरे को लेकिन उनके चेहरे पर लगा कि थोड़ा सा बहुत खुशी नहीं है, यू नो इट वॉज मोर टूवर्ड्स लिटिल डिप्रेशन साइड। आई सेड आप थोड़ा टाइम निकालो ऑफिस आते जाते समय, थोड़ी देर आप मेडिटेशन सेंटर पे आओ, 10 मिनट बैठकर फिर आप ऑफिस आ जाओ। फर्स्ट इमीडिएट आंसर, टाइम नहीं है, 10 मिनट्स टाइम सिर्फ, कभी भी मॉर्निंग इवनिंग. ही सेड 14 आवर्स आई स्पेंड हियर इन दिस रिसर्च लैब. जो थोड़े से घंटे बचे वो परिवार के लिए, इन सब चीजों में अपने लिए टाइम निकालना नॉट पॉसिबल. ड्राइविंग टाइम दिल्ली में 2 आवर्स, 1 आवर ईच वे, इस सब में सिस्टर अपने लिए नहीं टाइम निकल सकता है. तो प्रायोरिटी लिस्ट क्या बन गई? वर्क, फैमिली एंड सेल्फ. एंड क्योंकि वर्क एंड फैमिली इतना टाइम ले रही है कि हम सेल्फ तक तो पहुंचे ही नहीं, ये प्रायोरिटी लिस्ट ओनली वॉज नॉट राइट. अब वर्क पे टेंशन है, तनाव है, तो जब सेकेंड फेज पर आए फैमिली पर, वो सारा हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया. शाम को हम अपना सारा तनाव घर पे लेकर आ गए, अपना ध्यान रखने का टाइम नहीं था. स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है हमें? इस लिस्ट को एक तब अपसाइड डाउन, सेल्फ, फैमिली एंड देन वर्क.
1: जब सेल्फ से स्टार्ट हुआ तो बिगनिंग
0: बिल्कुल
1: सेल्फी से तो है, हम
0: एवरीथिंग एवरी. एंड इसमें ये नहीं है कि सेल्फ को 14 घंटे देने हैं फिर. इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट प्रायोरिटी एंड अटेंशन.
1: अगर ये सब गाड़ी है मेरी, तो सेल्फ स्टार्टर को सेल्फ को तो कुछ दो ध्यान.
0: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अगर गाड़ी है लेकिन ड्राइवर यहाँ है, ड्राइवर पहले स्टार्ट करेगा हर चीज को, फिर गाड़ी उस तरह से चलेगी, फिर यात्रा उस हिसाब से होगी सारी. दिस इज वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट हैज टू बी वेरी क्लियर. अगर मैं ठीक, मैं इन कंट्रोल, फिर मेरे परिवार में रिश्ते अच्छे ऑटोमेटिकली.
1: कहते हैं सेल्फ कंट्रोल,
0: सेल्फ कंट्रोल. अब अगर परिवार में रिश्ते अच्छे, फिर जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो मेरी पूरी एनर्जी लेवल कैसी होगी? अब फिर जब मैं घर से ऑफिस इस स्थिति में जाऊंगा तो मेरा ऑफिस में काम करने का तरीका भी एक डिफरेंट होगा. शाम को घर आऊंगा तो परिवार को भी अच्छी एनर्जी दूंगा. दिस होल बिकम्स अ साइकिल. अब जैसे हमने देखा, सपोज बच्चा 1 मिनट के लिए रोया, तो विदड्रॉ फ्रॉम योर वर्क, फर्स्ट टेक केयर ऑफ द माइंड. दिस इज प्रायोरिटी लिस्ट, कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना. आज लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड यूज करते हैं, मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी. फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी माई सेल्फ. रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द कितना सुंदर है. रिस्पॉन्स अबिलिटी,
1: ओहो,
0: ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
1: हाउ टू रिस्पॉन्स,
0: हाउ टू रिस्पॉन्ड राइट वे इज द अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन द राइट वे इज रिस्पॉन्सिबिलिटी.
1: ब्यूटिफुल.
0: इसके बाद हमारी बाकी बातें आती हैं सारे. तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, द अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द राइट वे इन एवरी सिचुएशन. दिस इज माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी.
1: ये अवेयरनेस ही आएगा ना, जो हम बात शुरू से कर रहे थे.
0: Absolutely.
1: छोटे बच्चा, उसका बच्चा रो रहा है या नहीं,
0: right.
1: सर पे मटका, सारी चीज फाइनली आती अवेयरनेस.
0: अवेयरनेस में भी, अब अवेयरनेस है लेकिन अब प्रायोरिटी लिस्ट बना लेते हैं. क्योंकि जैसे आज लोग कहते हैं ना, टाइम नहीं है, तो कौन सिखाते हैं हमें? प्रायोरिटी लिस्ट बना लो. आपको टाइम मैनेजमेंट करना है ना, प्रायोरिटी लिस्ट बना लो, प्रायोरिटी के वाइज करते जाओ. जीवन की प्रायोरिटी लिस्ट में स्व की स्थिति को नंबर 1 पे रख दो. अब हम जैसे सेंटर पर है या बड़ा हेडक्वार्टर है, कैंपस है, बड़े इवेंट्स है, कई बार लोग कहते हैं वो ये आश्रम में, इनको क्या पता है, इनके पास क्या काम है करने के लिए. जितनी एक्टिविटी सेंटर पे होती है या हेडक्वार्टर पे होती है, वो किसी ऑफिस में नहीं होती.
1: कौन इसे आश्रम कहता है? मैं देख के आया ना, वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं,
0: नॉट
1: ओनली वन यूनिवर्सिटी, कई सारी यूनिवर्सिटीज मिलाकर है ये लाखों.
0: राइट. अब आप देखो, मैंने जैसे देखा है बाहर,
1: चेन ऑफ स्कूल्स.
0: हाँ, बाहर आप देखो कि एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी हो ना, तो 6 महीना तैयारी चलती है. इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी है. हमारे पास माउंट आबू में हर वीक एक कॉन्फ्रेंस है. Every week, 4 days is a conference, जिसमें लगभग 1,000, कई बार 5,000, और जो दूसरी annual retreats होती है तो 20,000. 4 days वो रहते हैं, फिर 3 days मिलते हैं, उनका जाना, साफ सफाई सब होना, and next group का आना, वो 3 days, and फिर next 4 days वो conference. अब ये चल रहा है, event after event after event. छोटी बात नहीं है, ये छोटा काम नहीं है, बहुत काम है. लेकिन इसमें हमें जो मेडिटेशन क्या सिखाती है, सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, और सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक

0: के होने लगे, प्रॉब्लम भी आ जाए, तो उस प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं है। परमात्मा एक बहुत सुंदर लाइन हमें देते हैं, जो सेवा करने से आपकी स्थिति डिस्टर्ब हो गई वो सेवा करने का कोई फायदा नहीं है। पहले स्थिति पर ध्यान रखते हुए सेवा करें तो सफलता है, क्योंकि वाइब्रेशन, यू नो, टुडे व्हेन वी से सक्सेस, सक्सेस ऑफ एनी इवेंट, एनी प्रोग्राम, हम कहते हैं स्टेज अच्छा था, हॉल अच्छा था, लोग टाइम पर आए, डेकोरेशन अच्छी थी, प्रोग्राम अच्छा पूरा हो गया, ऑडियंस बहुत अच्छी थी। परमात्मा प्रायोरिटी लिस्ट को बहुत क्लियर करता है, स्थिति अच्छी थी सबकी, वाइब्रेशन अच्छी क्रिएट हुई, तब सफलता है।
1: थोड़े दिन पहले जब मैं माउंट आबू गया था देखने के लिए, वहां पर एक लड़का मिला, उसने मुझे सब कुछ घुमाया फिराया, सब जैसे मिठाई खिलाई, ये किया, तो मुझे उसने एक किस्सा सुनाया। कहने लगा कि दादी ने मुझे कहा कि हमारे गेस्ट आए हैं लंदन से, इनको घुमाओ फिरो और पूरा कुछ दिखाओ। तो बड़ी खुशी से मतलब दादी के पास गया, देखिए मैंने उनको यहाँ घुमाया, ये किया, वो किया, लंच खिलाए, इनको जाते जाते मिठाई पैक करके दी, आप प्लीज पूछ लीजिए उनको। बहुत खुश होके गए, मैं तो एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट तक छोड़ाया उनको। अच्छा, तो दादी का जवाब क्या था मालूम है? मैंने उनको ये नहीं कहा कि तू उनको खुश करो, तुम खुश होकर उनको ये सब दिखाओ।
0: हाउ ब्यूटीफुल,
1: तुम खुश होकर, खुश रहते हुए, खुशी की स्थिति में ये सेवा करो।
0: दिस इज इट एंड दिस इज द मंत्रा ऑफ लाइफ। सब कुछ करो, सारा दिन करो और सारी जिम्मेवारियां उठाओ, लेकिन खुश रहकर करो, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट स्थिति, फिर सारा काम। अब अगर कहीं भी अगर अंदर डिस्टर्बेंस हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग दैट इज हैपनिंग आउटसाइड, आई विल फर्स्ट विदड्रॉ, टेक केयर ऑफ दिस एंड देन डू एवरीथिंग। ये सक्सेस है। आज अगर हम पूछे व्हाट इज सक्सेस, आप सफल हैं जीवन में, डू यू काउंट योर सेल्फ एज सक्सेसफुल, देन सक्सेसफुल इज द वन जिसकी मन की स्थिति शक्तिशाली, खुश और शांत है,
1: स्टेबल,
0: स्टेबल, स्ट्रांग, पावरफुल। जिसका अपना मन कंट्रोल में नहीं, उसको सक्सेसफुल कैसे कहेंगे? भले बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लाखों लोग काम कर रहे हैं, 5 गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, 4 देशों में बंगले हैं, मन अपने कंट्रोल में नहीं है और हम कहे आई एम वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ। सफलता की डेफिनेशन चेक करनी है, एंड विच दिस मीन्स कि ये सब कुछ अक्वायर करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट पर अपने को नहीं रखा था, सबसे पहले मन की स्थिति को नहीं रखा। सारा दिन में हम हर मिनट में 25 से 30 थॉट्स क्रिएट करते हैं, 25 टू 30 थॉट्स इन 1 मिनट, विच मीन्स माई फैक्टर
1: 25 to 30 थॉट्स
0: इन 1 मिनट एवरेज मीन्स वेन वी आर इन अ नॉर्मल स्टेट ऑफ
1: 70 भी सोच सकते हैं,
0: अबाउट अप टू 45-50। अगर बहुत टेंशन है ना, एंग्जाइटी, बहुत एंग्जाइटी है किसी बात की, तो फिर इट कैन गो अप टू 45-50 थॉट्स। बियॉन्ड दैट जाएगा तो इट्स अ नर्वस ब्रेकडाउन, जो भी हो जाता है।
1: 3600 थॉट्स,
0: 3600
1: 60 into,
0: अच्छा, बट एक दिन में
1: मैं 1 घंटा सोचता था, 24 घंटे तो पता नहीं कितने
0: एक दिन में, बिकॉज काउंटिंग के 6-7 घंटे हम सो रहे हैं, जिसके अंदर स्पीड बंद नहीं होगी लेकिन कम हो जाएगी,
1: शायद
0: कम हो जाएगी कम्पेयर टू दिस 25 to 30, बिकॉज 25 to 30 थॉट्स पर मिनट इज इन द अवेक स्टेज। ये जो अवेक वेकिंग स्टेज है, 40 से ऊपर हो जाएगा व्हेन वी आर इन द टेंशन स्टेज, एंग्जाइटी। सो रहे हैं तो स्लो डाउन हो जाएगा। अगर ड्रीम स्टेज में है 17 to 20 उस तरह से, और डीप स्लीप में जाएंगे 8 to 10 उस तरह, नेवर बिकम्स 0। वो एवरेज लेते हुए इट विल कम टू अबाउट 50 to 60,000 थॉट्स इन अ डे। ये मेरी फैक्ट्री है, प्रोडक्शन 50 to 60,000 थॉट्स इन अ डे। अब आप कहें शुड वी बी अवेयर?
1: नहीं, बट अगर समझो एक्चुअली इसको आप प्रोडक्शन कहें तो 50-60 हजार समझो आप गारमेंट्स बनाएं, उसमें से काम के थोड़े से निकले, बाकी का सारा रद्दी में फेंकना
0: पड़े, कैसा बिजनेस में
1: तो आउट ही हो जाएंगे बिजनेस, घर गांव वापस जाना पड़ेगा।
0: तो हो रहा है ना, इतना बड़ा बिजनेस हाउस है, इतनी प्रोडक्शन है, लेकिन यूजफुल कितने हैं और रिजेक्ट कितने हो रहे हैं, सारे दिन में वेस्ट में कितने जा रहे हैं, तो बैंकरप्सी हो गई ना, कहेंगे दिवाला निकल गया इसका। खुशी नहीं,
1: खत्म, तो वेस्ट की दुकान लगानी पड़ेगी।
0: दिस इज अवेयरनेस, मैं मालिक हूँ।

0: ये मेरी रचना है, ये मेरी रचना है, ये मेरी क्रिएशन है, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस इंडस्ट्री।
1: आपकी जो बात आपने कहा ना कि मैं मालिक हूँ और मेरी ये रचना है,
0: राइट
1: तो मेरी माँ हमेशा मुझे बचपन में कहती थी, बेटा यहाँ से लेके पांव तक ये तेरा जगत है और ये तेरा मन है ना, तो मन जीते पुत्र जग जीते।
0: ब्यूटिफुल।
1: तो मतलब तू मन को जीतेगा तो इस सारे जगत को, फिर बाकी के दूसरे,
0: फिर ये जगत को,
1: हाँ बाकी भी तो जगत ही है।
0: आपका परिवार आपका जगत है,
1: हाँ?
0: आपका ऑफिस, आपका स्टाफ आपका जगत है,
1: हमारे रिश्तेदार, सब कुछ जगत
0: मीन्स आपकी दुनिया।
1: हाँ?
0: आप, लेकिन अब ये जो आपने लाइन बताई, हम सबने सुनी है ना बचपन से कि मन जीते जगत जीत, लेकिन करने के टाइम हम कहते हैं जग को जीत लें तो मन को जीत लेंगे, कि अगर जग मेरे हिसाब से चले तो मन बड़ा खुश रहेगा।
1: मन
0: तो
1: जीते जग जीते,
0: इक्वेशन रॉन्ग हो गई ना,
1: उल्टा ही हो गया ना,
0: इक्वेशन
1: उल्टी
0: हो
1: नॉर्थ
0: गई।
1: को स्टार्ट कर रहे हैं साउथ पे।
0: अगर इक्वेशन रॉन्ग हुई, पूरा मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन ही बना दी, इक्वेशन थी मन जीते जगत जीत, हमने कहा जग मेरे कंट्रोल में हो, जग को जीत लू तो मन खुश हो जाएगा। जब इक्वेशन फर्स्ट लाइन रॉन्ग, अब उसके बाद आप कितने भी पेपर्स ले ले ना, कई बार एग्जाम में हम क्या करते थे, फर्स्ट लाइन इक्वेशन रॉन्ग है, उसके बाद 10 पन्ने भर दिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और हमें लगा कि हमने बहुत अच्छा पेपर दिया है, क्योंकि आई टुक 10 मोर पेपर्स टू आंसर दैट होल क्वेश्चन। टीचर देखेगा भी नहीं ना वो 10 पेजेस को। फर्स्ट लाइन जब राइट नहीं तो सोल्यूशन आ ही नहीं सकता। आज हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना जीवन में, वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, काउंसलिंग, एवरीथिंग, एफर्ट, अटेंशन, सब कुछ, लेकिन फर्स्ट लाइन रॉन्ग, तो कितने भी पन्ने भर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी टाइम और एनर्जी लगा दें उसके ऊपर, सोल्यूशन वो नहीं मिलेगा जो चाहिए। तो ये मंत्र पकड़ लेते हैं कि मन की स्थिति, जो मन मेरा है, उसको हम फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हुए, उस बच्चे का प्यार से ध्यान रखते हुए, थोड़ा चंचल है तो भी कोई बात नहीं, अपना है।
1: एक चीज और समझ में आई आज इस उम्र में कि मन को कैसे जीतना है, मार के, डांट के, कोस के, अपने आप को गाली दे के नहीं चलेगा, जैसे आपने कहा ना बच्चे को, बच्चे को कैसे जीतते हैं प्यार से, आजा बेटा चॉकलेट खा, आजा बेटा म्यूजिक सुन, ध्यान बटाते, मतलब ये बहुत अच्छा गेम बन गया है।
0: और आज सी, अभी मैं इतने एपिसोड से कह रही थी कि ये गेम है, सो यू सेड हाउ कैन यू कॉल दिस
1: ऑल, वॉर लेके बैठा था,
0: नाउ यू कॉल्ड इट अ गेम।
1: इस गेम को मैं वॉर लेके बैठा था, अगेंस्ट फाइटिंग विद माई माइंड,
0: नाउ इट्स फन, इट्स
1: नाउ इट्स फन, नाउ इट्स अ पजल, लाइक सुडोकु में जैसे करते वो,
0: नाउ एंजॉय द गेम, नाउ एंजॉय द, अब चैलेंजेस आएंगे,
1: लेकिन जब मैं सुडोकू में एक मिस्टेक करता हूँ ना, मैं पेंसिल से खेलता हूँ, फिर से वो रब कर लेता हूँ, फिर स्ट्राइक टेस्ट करता हूँ, यहाँ भी कर सकते हैं, होगी गलती, ठीक है फाइन, फिर करेंगे,
0: एज लॉन्ग एज द फर्स्ट इक्वेशन इज राइट। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, जस्ट टेक केयर फर्स्ट इक्वेशन ना गलत हो, फर्स्ट इक्वेशन राइट, आज नहीं तो कल, चाहे थोड़ी मेहनत ज्यादा भी लगे, सोल्यूशन मिल जाएगा, एंड विच इज हैप्पीनेस, That is being bliss. हमें खुश रहना है।
1: कुछ होमवर्क दे दीजिए आप अगले
0: आपने एपिसोड के लिए। सारा होमवर्क ले लिया आप कि सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट, कितना भी काम बाहर करें, प्रायोरिटी स्वस्थिति।
1: थैंक यू सो मच सिस्टर।
0: ओम शांति।
1: थैंक यू सो मच। ओम शांति। द माइंड इज लाइक आवर चाइल्ड, टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड एंड ऑल्सो all your responsibilities like family, career and health. The first priority will be the child within and then everything outside. While taking care of your responsibilities, the child might start crying. The mind starts getting irritated, angry or hurt. Withdraw for a minute from activity and heal the child. Talk to the mind and change the quality of thoughts. The child within is not in our control. No one taught us what to think or how much to think. Discipline this child with love, not force or harshness. While dealing with others, remember, we are dealing with the child within them. Responsibility means the ability to respond the right way in every situation. So, the priority list of responsibilities will be self, family, and work. If we take care of our emotional well-being, we will have good relations and then perform well at work.
2: नमस्कार, मी मोनाली सावागत. तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं और पहचानता हूँ खूब।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम और मैं हूं आपका हम सफर सनी, ख्वाबों का सफर। में जी हां, इस रेडियो प्रोग्राम में हम आपको सुनाते हैं वो गाने जो अक्षर आ से शुरू होता है और वो भी ओल्डीज गोल्ड मेलोडीज। जी हां, जो 50s और 60s का सुपर हिट गाने हैं। जी हां, कहते हैं ना, उम्मीद अधिक रखो और डरो कम, चबाओ ज्यादा खाओ कम, सांसे ज्यादा लो और चिल्लाओ कम, सुनो ज्यादा बोलो कम और अधिक प्रेम करो, तब जाकर ही सभी अच्छी चीजें तुम्हारी होगी। वो कहते हैं ना, बिना किए कुछ नहीं मिलता। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे सकारात्मकता को कैसे बनाए रखें। इस विषय पर बात करूंगा तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में एक राम और श्याम का सुपर डुपर हिट गाना आपके लिए अभी। जी हाँ, मैं हूँ आपका हम सफर सनी, रेडियो प्रोग्राम ख्वाबों का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार साथियों, आपने सुना बहुत ही प्यारा सा गीत, जी हाँ, जिसे शकील बदायूं कलम ने लिखा था और मोहम्मद रफी साहब ने गाया था। नौशाद का संगीत फिल्म राम और श्याम 1967 का, जिसे दिलीप कुमार पर फिल्माया गया था। और हाल ही में एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने बताया था, राम और श्याम फिल्म का स्क्रिप्ट ने बहुत प्रभावित किया और आखिरी तक फिल्म में सस्पेंस बना रहता था और आपके मन में विचार आते रहते थे कि अब क्या होगा। हर सीन के बाद ये सवाल आपके मन में उठ जाते कि इसके बाद क्या होगा। दिलीप कुमार बताते हैं, लिखने वाले ने बहुत ही कमाल का ये स्क्रिप्ट लिखा था, गंभीर सोच समझ के साथ इस कहानी को लिखा था और इसके बाद हर 5-6 सालों के बाद इस फिल्म का रीमेक भी अलग अलग नाम से हुआ। जी हाँ, जैसे कि आप सीता और गीता 1972 में आई, जो हेमा मालिनी पर फिल्माया गया था। उसके बाद चालबाज जो श्रीदेवी पर फिल्माया गया था 1989 में आई। और उसके बाद एक और फिल्म आई थी किशन कन्हैया, जो अनिल कपूर पर फिल्माया गया था 1990 में। तो देखिए, एक फिल्म राम और श्याम को देखकर दूसरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर उन्हें संकेत मिला और उन्होंने भी सेम स्टोरी को मॉडिफाई करके लोगों का मनोरंजन भी किया और पैसा भी कमाया। ये है पॉजिटिव सोच का कमाल। तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गाना, जो शुरू होता है अक्षर आ से। जी हाँ, मैं हूँ आपका हम सफर सनी और आप सुन रहे हो रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। इसलिए खुश रहो और खुशियाँ बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना, आज की रात पिया दिल न तोड़ो। जी हाँ, साहिर लुधियानवी साहब का लिखा हुआ ये गाना, गीता दत्त का गाया हुआ, सचिन देव बर्मन का संगीत से सवारा हुआ और फिल्म थी भाजी 1951 का। जी हाँ, गुरुदत्त का ये फिल्म था। कभी कभी हमारे मन में ऐसा भी होता है प्यार के सफर में, जहाँ दो दिलों की बात होनी चाहिए थी लेकिन वो सिर्फ एक तरफा प्यार होता है। और बहुत बार ऐसा देखा गया, एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से ये कहने में असफल होता है या समय बहुत लगाता है और ऐसे में कुछ मुश्किलें आती हैं। कभी कभी तो वो मौत की तरफ भी रास्ता रुक कर जाता है। और जो व्यक्ति सकारात्मक होता है वो खुद ही अपने दिल की बात कह देता है, उसे किसी का डर नहीं होता और वो कभी कभी अपनी मस्ती में रहता है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी 107.8 FM। मैं हूँ आपका हम सफर सानी, लेकर प्रोग्राम खाबोखा सफर। कहते हैं प्रेम के कितने रंग है, हर इंसान जो प्यार करता है उसका दिल पिघलता जरूर है, अपनी प्रेमी के लिए तड़पता जरूर है। और कितना प्यार भरा समा होता है जब कोई अपने रूठे हुए प्रेमी को मनाता है। जब दोनों के दिल मिल जाते हैं तो सारा जहां मिल जाता है। और ऐसे ही कुछ कहानियां अमर हो जाती हैं। जो सकारात्मक व्यक्ति होता है वही गीत संगीत का तराना छेड़ देता है। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM और मैं हूं आपका हम सफर सनी। जी हां साथियों, ख्वाबों का सफर में एक और खूबसूरत गाना, मैं आपका हम सफर सनी कहना चाहूंगा। सकारात्मक सोचो, खुश रहो और खुशियां बांटो।

जी हाँ साथियों, साहिर लुधियानवी का लिखा एक और खूबसूरत गीत आपने अभी सुना। आशा भोसले का आवाज और संगीतकार रवि ने इसे संगीत दिया था। चित्रपट सावधान 1954 का। आज किसी की हाथों ने दिल के हार छेड़ दिए। जी हाँ, सकारात्मक सोच पॉजिटिव थिंकिंग के बिना जिंदगी अधूरी है साथियों। सकारात्मक सोच की शक्ति से घोर अंधकार को भी आशा के किरण यानी रोशनी मिल जाती है या अंधकार रोशनी में बदल सकता है। हमारे विचारों पर हमारा स्वयं का नियंत्रण होता है, इसलिए ये हमें ही तय करना होता है। कभी कभी सकारात्मक ऊर्जा होते हुए भी किसी किसी के लिए या कोई आपसे या आपके साथ किसका बनता नहीं तो आ जाता है नकारात्मक विचार। थोड़ा अंधेरा जरूर छाता है, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा का दिया आपके साथ हमेशा जलता रहे तो किसी भी तरह का नकारात्मक अंधेरा आपके पास नहीं आएगा। ऐसे कहते हैं प्रेमी होते हैं अपने प्रेम के लिए बरसों इंतजार करता है। आपको पता हो ऐसा सिर्फ वही करता है जिसके अंदर बहुत सकारात्मक ऊर्जा होता है। क्या कभी आपने सोचा है किसी के लिए इतना इंतजार कैसे कोई कर सकता है? जरूर वो प्यार ही है जो ऐसा करने में समर्थ होता है। तो चलिए, बात जब मुलाकात की हो तो मुलाकात का वक्त कभी कभी कम ज्यादा होता है, और सच्चे प्रेमी जो होते हैं उनकी मुलाकात कभी खत्म नहीं होती, लेकिन मुलाकात को कभी सीमा में बांधना होता है। जैसे कि आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आपका हम सफर सनी। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे ये बहुत ही खूबसूरत गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ ये गाना और राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा चित्रपट हरोसा। इस एल्बम से 1963 का ये एल्बम जो बहुत ही खूबसूरत गाना, इसे आज भी लोग पसंद करते हैं और उस समय तो हर समय बस यही गाना चलता, मस्ती भरा प्यार भरा ये सुपर डुपर हिट गाना अभी भी आपके कानों को एक मिठास दे जाती है। समय चक्र की गति बड़ी अद्भुत है, समय का चक्र निरंतर गतिशील रहता है, रुकना इसका धर्म नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम अपनी मन की बात करें तो मन सकारात्मक हो तो समय के चक्र का भी आनंद आप ले सकते हैं। हमारे पास दो तरह की बीज होते हैं, एक सकारात्मक दूसरा नकारात्मक, जो आगे चलकर हमारे जीवन में हमारे व्यवहार रूपी पेड़ का निर्धारण भी करता है। हम जैसे सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। इसीलिए अंग्रेजी में कहावत है, क्या कहावत है शायद आपको पता है, व्हाट वी थिंक वी बिकम। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारा आचरण होता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग रूपी जमीन में कौन सा बीज बो देते हैं। थोड़ी सी चेतना एवं सावधानी से हम कांटेदार पेड़ को महकाते फूल के पेड़ में बदल सकते हैं साथियों। लेकिन हाँ, इन सभी के बावजूद दिल पर कभी किसी का जोर चलता नहीं, क्योंकि कभी कभी मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े।

नमस्कार साथियों, आनंद बख्शी साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत मिलन इस एल्बम से आप सुन रहे थे। ये गाना 1967 का, ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपने अभी सुना। जी हाँ, आइए, मैं हूँ आपका हम सफर सनी ख्वाबों का सफर में। इस रेडियो प्रोग्राम में हम आपको सुनाते हैं वो गाने जो अक्षर आ से शुरू होता है, ओल्ड इज गोल्ड मेलोडीज, जो 50s और 60s का सुपर डुपर है, आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सुना है आप जिस तरह काले रंग का चश्मा पहनने पर आपको सब कुछ काला और लाल रंग का चश्मा पहनने पर सब कुछ लाल ही दिखाई देता है, उसी तरह नेगेटिव सोच से हमें अपने चारों ओर निराशा, दुख और असंतोष ही दिखाई देगा, और सकारात्मक पॉजिटिव सोच से हमें आशा, खुशियाँ एवं संतोष ही नजर आएगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है साथियों कि आप कौन सा रंग या कौन सी सोच अपने दिमाग में रखते हो। तो मैं चाहूंगा, आशा, खुशियाँ और संतोष की चाहत अगर आप चाहते हैं तो सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़िए, जिससे हमें हर व्यक्ति अच्छा लगेगा और हम हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी ढूंढ ही लेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है, नेगेटिव पॉजिटिव की उधेड़ भून में आज भी कल में डल जाता है और हमें पता ही नहीं लगता आज कल में डल गया और दिन तमाम हुआ। आइए ऐसा ही कुछ भाव भरा एक सकारात्मक गीत सुनाने की कोशिश हमारी अक्षर से, सैनंदर साहब का लिखा, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, शंकर जय किशन का संगीत बेटी बेटा 1964 का ये गाना अभी आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे पुनेरी आवाज 107.8 FM। जी हाँ, सकारात्मकता की शुरुआत आशा और विश्वास से होती है। किसी जगह पर चारों ओर अंधेरा है और कुछ भी दिखाई न दे रहा है, और वहाँ पर अगर हम एक छोटा सा दीपक जला देंगे तो उस दीपक में इतनी शक्ति है कि वो छोटा सा दीपक चारों ओर फैले अंधेरे को एक पल में दूर कर देगा। इसी तरह आशा की एक किरण सारे नकारात्मक विचारों को एक पल में मिटा सकती है। तो आइए, नकारात्मकता को नकारात्मकता समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन नेगेटिव को तो केवल पॉजिटिव ही समाप्त कर सकती है। इसीलिए जब भी कोई छोटा सा नकारात्मक विचार मन में आए तो तुरंत उसी पल उसी समय सकारात्मक विचार में उसे बदल दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी विद्यार्थी को परीक्षा में 20 दिन पहले अचानक ये विचार आता है कि इस बार परीक्षा में वो पास नहीं हो पाएगा, तो उसके पास दो ही विकल्प है। या तो वो इस विचार को बार बार दोहराए और धीरे धीरे नकारात्मक पौधे को एक पेड़ बना दे, या फिर उसी पल इस नेगेटिव विचार को पॉजिटिव विचार में बदल दे और सोचे कि कोई बात नहीं, अभी भी परीक्षा में 20 दिन यानी 480 घंटे बाकी है और उसमें वो 240 घंटे पूरे दृढ़ विश्वास के साथ मेहनत करेगा तो उसे पास होने में कोई नहीं रोक सकता। अगर वो नेगेटिव विचार को सकारात्मक विचार में उसी पल बदल दे और अपने पॉजिटिव संकल्प को याद रखे तो निश्चित ही वो पास हो जाएगा, और वो भी अच्छे डिस्टिंक्शन में। जी हाँ, आप क्या कहते हो, है ना कमाल की बात। तो आइए अभी से सकारात्मक सोचना या ना सोचना, ये हमारे मन के नियंत्रण में है और हमारा मन हमारे नियंत्रण में है। अगर हम अपने मन से नियंत्रण हटा लेंगे तो मन अपनी मर्जी करेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारे मन में नकारात्मक पेड़ उग गए हैं। इसीलिए कहता हूँ, सदा सकारात्मक रहिए और प्यार से सबके साथ बात करें। क्या पता आपकी कही हुई प्यार भरी बातों से किसी का दिल खो जाए। इसके साथ मुझे यानी आपके हम सफर सन्नी को इजाजत, और जाते जाते गीतकार SH बिहारी का आशा भोसले की आवाज, OP नैयर का संगीत सावन की गठा 1966 का ये गाना आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। सकारात्मक रहिए और दूसरों को भी इसी दृष्टि से देखे और दिखाए। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट है। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मैं हूं पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। अभी सुनते हैं बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम।

0: नहीं, पहले 10 तक काउंट करो फिर आना।
1: 10, 9, 5, 3, 1, 0। मैं आ रही हूँ।
2: ये चुपो चुपो चुपो आ रही आ रही है।
3: अरे यहाँ पे क्या हो रहा है?
1: हाइड एंड सीक दीदी।
3: और ये आकाश कहाँ छुप गया? वो तो दिखाई नहीं दे रहा।
1: बिस्तर के नीचे।
3: अच्छा, तो यहाँ छुपन छुपाई खेली जा रही है।
1: हाँ दीदी।
3: चलो आकाश बाहर आ जाओ।
1: पकड़ लिया।
3: भुवना ने तो पकड़ लिया, सबको ढूंढ लिया। तो मतलब तुम लोग को हाइड एंड सीक खेलना इतना अच्छा लगता है, क्यों भुवना?
1: हाँ दीदी।
3: ओके, तो चलो आज हम गेम्स के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि बच्चों का फेवरेट पास टाइम तो गेम्स ही होते हैं।
4: हाँ दीदी।
5: सही बोला दीदी।
3: है ना? तो सैंडी को सबसे अच्छा गेम कौन सा लगता है? सैंडी,
6: मुझे ना बैडमिंटन और क्रिकेट अच्छा लगता है।
3: बैडमिंटन और क्रिकेट अच्छा लगता है। अच्छा, बैडमिंटन किसके साथ खेलते हो सैंडी?
6: मैं पापा के साथ कभी खेलता हूँ।
3: पापा के साथ कभी कभी खेलते हो? और उसमें जीतता कौन है?
6: पापा, मुझे ज्यादा नहीं आता।
3: अच्छा ऐसा, पापा जीत जाते हैं।
4: आखिर पापा है वो तुम्हारे।
6: सही बात।
3: पूना, तुम्हें बैडमिंटन अच्छा लगता है?
1: हाँ दीदी, मैं टेनिस भी खेलती हूँ।
3: टेनिस भी खेलते हो? अरे वाह, तो टेनिस के बारे में हमें कुछ बताओ।
1: टेनिस बॉल से खेलते हैं और बैडमिंटन शटल कॉक से खेलते हैं।
3: अच्छा, और कितने प्लेयर्स होते हैं टेनिस में?
1: दीदी जब रैली खेलते हैं दो खेल सकते हैं और टीम भी खेल सकते हैं, दो लोग, दो दो।
3: तो आप स्कूल में टेनिस खेलते हो?
1: स्कूल में नहीं, मैं टेनिस कोर्ट पे खेलती।
3: अच्छा, तो क्या आपने कभी किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है?
1: कॉम्पिटिशन में नहीं, लेकिन मैं रैलीज खेली।
3: अरे वाह, मतलब आपको टेनिस खेलना बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ।
3: और बैडमिंटन खेलना यहाँ पे और किसे अच्छा लगता है?
1: मुझे।
6: मेरे को थोड़ा थोड़ा।
3: सैंडी को तो अच्छा लगता है। और भुवना, भुवना आप किसके साथ खेलते हो बैडमिंटन?
1: मेरी बुआ के साथ, तीन बुआ के साथ।
3: तीन बुआ के साथ?
1: हाँ।
3: और उसमें जीतता कौन है?
1: मैं।
3: अरे वाह, मतलब भुवना तो बैडमिंटन चैंपियन है।
6: कहीं चीटिंग तो नहीं करती तुम?
1: मैं चीटिंग नहीं करती।
3: और आकाश को क्या अच्छा लगता है?
5: छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक।
3: अच्छा, तो छुपन छुपाई जो अभी खेली जा रही थी वो अच्छी लगती है?
5: हाँ।
3: क्यों अच्छी लगती है छुपन छुपाई?
5: क्योंकि मैं ऐसी जगह छुप जाता हूँ ना जो प्लेयर ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है और हाथ जोड़ के सामने कह देता है, भाई सामने आ जा, मैंने हार मान ली है।
3: अब ऐसी सीक्रेट जगह के बारे में तो हम सब जानना चाहेंगे, है ना? तो आकाश, कहाँ कहाँ छुपते हो तुम?
5: जो कोर्ट बनाया होता है ना, जहाँ तक छुपना नहीं होता है, मैं उसके बाहर जाके छुप जाता हूँ।
6: तो चीटिंग हुई।
5: लेकिन चीटिंग की क्या, पकड़ में तो नहीं आता ना।
6: ये बात भी है,
3: लेकिन फिर जिसने आंखें बंद की उसे तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ तो जाना अलाउड ही नहीं है।
5: और क्या, तभी तो मैं वहाँ छुपता हूँ, क्योंकि डिनर तो वहाँ आएगा नहीं।
6: तुम हाइड एंड सीक दिन में खेलते हो या रात में?
5: दोनों टाइम। दिन में खेलता हूँ तब भी जीत जाता हूँ, रात को खेलता हूँ तब भी जीत जाता हूँ।
6: रात में मजा आता खेलने में।
5: हाँ, छुप जाते हैं ना तो दिखते भी नहीं है,
6: अंधेरा में कुछ दिखता नहीं है, लाइट बंद कर दो फिर मजा आता है।
4: लेकिन रात में हमें छुपने में बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि रात में अगर हम गलियों में या कहीं और छुपते हैं तो वहाँ कीड़े हो सकते हैं,
5: पेड़ों के वहाँ पे।
6: हाँ पंकज भैया।
3: हाँ पंकज ने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि रात को ना हमें ठीक से दिखाई देता है, और अगर छुपने के जिसमें जैसे आकाश कहीं चले जाते हैं बाहर भी, तो अगर वैसे चले गए तो कोई हम तक पहुंच भी नहीं पाएगा, और कोई प्रॉब्लम हुई तो किसी को पता भी नहीं चलेगा।
5: और एक सबसे सीक्रेट जगह है डैनर को वापस टिप मारने की, वो जैसे आंख बंद के काउंट करता है उसके पीछे जाके खड़े हो जाओ, वो जैसे बंद जवाब उसका जैसे ही काउंट पूरा होगा उसको टिप कर दे।
6: ये अच्छा आइडिया है,
1: इसमें क्या मजा आएगा फिर,
5: उनको बार बार डैन मिलता रहेगा।
3: लेकिन एक बार में तो उसे पता चल जाएगा कि आकाश तो पीछे से आता है।
6: तो अगली बार दूसरा आइडिया, नेक्स्ट टाइम डिनर आँख खोल के काउंट करेगा।
5: तो उसको वापिस डैन देना पड़ेगा, क्योंकि आँख खोल के काउंट करना अलाउड ही नहीं है।
6: जब तुम चीटिंग कर रहे हो तो वो करेगा करेगा।
3: अच्छा, और कौन सी ऐसी सीक्रेट जगह है जो तुम लोग जाके छुपते हो जब छुपन छुपाई खेलते हो?
6: मैं तो टंकी में जाके छुप जाता हूँ।
3: अच्छा, सैंडी टंकी में जाके छुप जाते हो?
5: गीले नहीं होते?
6: नहीं, हमारी खाली टंकी ना। अच्छा। जो देखते खाली टंकी हो।
3: और भुवना?
1: मैं क्या करती हूँ ना, जहाँ हम क्लोथ सब डालते हैं एक बकेट में, मैं और मेरे भैया जाते हैं और मेरे भैया सारे क्लोथ निकालते, मैं अंदर घुस जाती हूँ और सारे क्लोथ मेरे ऊपर डाल देते, और मेरे भैया पीछे चुप जाते हैं और मुझे साइंस देते, मत आओ, हिलो मत, इतना मजा आता है।
3: अरे वाह, यानी छुपने में भैया मदद करते हैं। और पंकज?
4: मैं तो जब हाइड एंड सीक खेलता हूँ तो मैं छुपता ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा अंधेरे में हाइड एंड सीक खेलता हूँ। और जब डैन सामने आता है तो मैं उसके सामने अपने शर्ट उतार लेता हूँ और ऐसा अपना लुक चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, तो उसे पता ही नहीं चलता कि है कौन सामने।
5: ये काफी अच्छी बात कही, अब से मैं भी ये ट्रिक आजमाऊंगा।
4: हाँ, ट्राई करना, मजा आता है। हाँ।
3: मतलब पंकज को ढूंढने निकले तो पंकज को मिले ही नहीं।
4: हाँ, और मैं उसके सामने ही होता हूँ।
3: अरे वाह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग तरीका निकाला है पंकज ने।
6: हाँ दीदी।
3: और हाइड एंड सीक खेलते वक्त तो मजा तो आता ही है, क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है जो अभी तक आपको याद हो?
1: हाँ दीदी।
3: क्या?
1: एक दिन मैं काउंट करके ना, मैं इतनी धीरे से आती हूँ, जब मेरे भैया मेरे साथ नहीं होते ना, मैं डैनर होती, इतनी धीरे से आती हूँ क्योंकि मुझे पक्का पता है कि मेरे भैया मुझे आउट करेंगे। तो मैं स्लोली स्लोली रूम के अंदर जाती हूँ। एक दिन क्या हुआ, मैं स्लोली जा रही थी, फिर बिस्तर के नीचे मेरे भैया चुप गए, तो सडनली मेरे पैर को पकड़ ली, इतना चिल्ला रही थी दीदी,
6: पैर पोक बूना,
1: सडनली आके पकड़ लिया, इतना डर गई मैं दीदी, चिल्लाने लगी।
3: हाँ, आपका ध्यान कहीं और था और भैया ने नीचे से पैर पकड़ लिया तो अचानक से डर गए।

0: और ऐसे कौन से गेम्स हैं जो आप लोग सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो? आकाश, हाइड एंड सीक तो घर पे खेलते हैं, स्कूल में कौन से गेम्स खेलते हो?
1: स्कूल में मैं कोई गेम ही नहीं खेलता।
0: लेकिन स्कूल में तो गेम्स पीरियड होता है सबकी क्लास में, तो उस टाइम आप क्या करते हो?
1: सारे बच्चे जो अपने अपने गेम्स खेलने लगते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई वॉलीबॉल, कोई फुटबॉल, उसके बीच में मैं फंस जाता हूँ। मेरे को मन भी करता है क्रिकेट भी खेलूं, मन करता है फुटबॉल भी खेलूं, मन करता है वॉलीबॉल भी खेलूं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका मैं कोने में जाके बैठ जाता हूं।
0: लेकिन इससे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, आपका मन करता है तीनों गेम्स खेलने का।
2: सारे
0: तीनों
2: गेम्स थोड़े थोड़े देर खेल लेने के।
0: हाँ, नहीं तो एक गेम तो खेलना चाहिए।
1: गेम में ही नहीं रखता ना, उसके बाद जैसे बैठ जाता हूँ ना आराम से, जो मुझे चाहता है ना टीम में लाने के लिए, वो अपने पास अपने आप आ जाता है। टीम में खेलते हैं यार।
0: ये भी अच्छा तरीका है, बैठ जाते हैं तो बुला ही लेगा कोई ना कोई।
1: लेकिन फोर्स देते हैं,
0: सर फोर्स करते हैं
2: तो तुम्हारे भाव बढ़ जाते हैं।
0: नहीं, लेकिन कोई ना कोई गेम हमें जरूर खेलना चाहिए। फिर कौन सा गेम है जो तुम्हारा फेवरेट है जो खेलते हो फिर जाके
1: स्कूल में?
0: स्कूल
1: में मेनली मैं सब बच्चों के साथ वॉलीबॉल ही खेलता हूँ।
0: वॉलीबॉल खेलते हो? वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं आकाश?
1: ये तो पता नहीं, लेकिन
0: नाइन
1: प्लेयर्स। मैं जिन बच्चों के साथ खेलता हूँ हम लोग चार चार की टीम बना के खेलते हैं।
0: अच्छा, अरे वाह, वैसे वॉलीबॉल खेलने में भी बहुत मजा आता है ना?
2: उससे हमारे हाथ स्ट्रांग होते हैं।
0: हाँ, हाथ हमारे उससे स्ट्रांग होते हैं।
3: पर मुझे वॉलीबॉल नहीं आती।
2: मुझे आती है
4: यार, मैं रग्बी खेलती हूँ।
0: रग्बी? ओहो, ये तो इंटरेस्टिंग गेम है काफी।
3: ये कौन सा गेम है?
1: रग्बी मतलब उसके अंदर एक ओवल बॉल होती है जिसको हमको,
4: इसको ना हम बास्केटबॉल जैसे नीचे गिरने नहीं देते, हमको पकड़ के भागना चाहिए ताकि दूसरी टीम वो बॉल हमसे छीन ले।
0: और हमें गोल तक पहुंचानी होती है।
4: हाँ। गोल तक पहुंचानी चाहिए।
1: और दूसरी टीम बहुत कोशिश करती है हम उससे बॉल ले लें।
0: किसी को चोट लगे तो फाउल हो जाएगा। और सैंडी को कौन सा गेम पसंद है आउटडोर में?
3: गिल्ली डंडा।
2: सैंडी ग्रो अप।
0: नहीं नहीं, गिल्ली डंडा भी बहुत अच्छा गेम है। गिल्ली डंडा कैसे खेलते हैं और क्या मजा आता है सैंडी को गिल्ली डंडा खेलने में, बताओ।
3: दीदी ना, गिल्ली डंडा में ना डंडे से गिल्ली को मारते हैं, फिर दूर तक फेंकते हैं, फिर वहाँ से जो सामने वाली टीम होती है फिर गिल्ली फेंकती है, अगर उस डंडे में टच हो गया तो आउट, नहीं तो फिर बाद में गिल्ली सॉस मारते दूर भेजते फिर पॉइंट मिलता है।
0: अरे वाह, मतलब ये गेम तो हम में से कोई भी खेल सकता है।
3: हाँ।
0: और कितने लोग खेलते हैं गेम मिलके?
3: इसमें जितना चाहे उतना खेल सकते हैं टीम वाइज,
2: पर एक से ज्यादा।
3: एक से ज्यादा?
0: एक से ज्यादा। तो ये गेम स्कूल में भी खेला जाता है?
3: हम तो घर पे ही खेलते हैं।
0: ये तो बहुत पुराना गेम है, मेरे ख्याल से हमारे मम्मी पापा ने भी ये गेम खेला होगा।
3: और पंकज हमारा चैंपियन है इस गेम में।
0: अच्छा, पंकज गिल्ली डंडा चैंपियन है।
2: चैंपियन था दीदी, अब तो नहीं खेलता मैं।
0: अब क्या खेलते हो पंकज?
2: अब तो ज्यादा टाइम क्रिकेट ही खेलते हैं।
0: क्रिकेट अच्छा लगता है?
2: हाँ दीदी।
0: और क्रिकेट में आप क्या करते हो, बैटिंग बॉलिंग क्या पसंद है?
2: मुझे तो तीनों पसंद है, आप चाहे फील्डिंग करवा लो या बैटिंग या बॉलिंग।
0: अच्छा, तो आप स्पिनर हो कि फास्ट बॉलर?
2: फास्ट बॉलर, लेकिन स्पिन भी आती है।
0: स्पिन भी आती है, स्पिन कराना तो काफी डिफिकल्ट होता है।
2: हाँ, मुझे तो इजी लगता दीदी।
0: अच्छा, बैटिंग यहाँ पे कौन कौन करता है?
2: मैं भी।
0: सैंडी? अच्छा, मतलब सैंडी को बैटिंग ज्यादा पसंद है। अच्छा, और अभी अभी कुछ क्रिकेट मैच भी चल रहे हैं ना आप लोगों के?
2: हाँ हाँ दीदी, हमारे टूर्नामेंट चल रहे हैं।
0: अच्छा, उसके बारे में हमें कुछ बताओ तो।
3: हाँ दीदी, ये टूर्नामेंट मैच हम और पंकज ने ऑर्गेनाइज कराया है, इसमें कुछ टीमों को इनवाइट किया है क्रिकेट के लिए, और अभी चल रहे हैं। अभी आज तो मैच नहीं था, शाम को मैच है दो टीमों का, उसमें जो जो टीमें अच्छे से खेलेगी फाइनल में पहुंचेगी उन्हें प्राइज देंगे विनिंग टीम को।
0: अच्छा, अरे वाह, आप दोनों ने मिलके क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है।
3: हाँ दीदी।
0: कितनी टीम सारी है उसमें?
3: अभी तो उम्मीद थी कि ज्यादा टीमें आएगी, बट अभी 8-9 टीमें हुई, कमी टीमें आई।
0: अरे वाह, ये भी बहुत अच्छी बात है। और गेम्स की टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना तो और भी मजेदार चीज है।
3: हाँ, पर थोड़ी हालत भी खराब होती है,
2: मेहनत तो करनी पड़ेगी।
0: बात तो सही है, लेकिन आप दोनों मिलके मेहनत करोगे तो फिर तो सफलता जरूर मिलेगी, और मिल ही रही है।
3: हाँ,
0: है ना?
3: दीदी मिल रही है।
0: और आकाश, अब हम बात करते हैं इंडोर गेम्स की। आउटडोर गेम्स में तो बास्केटबॉल खेला, थ्रो बॉल खेला, वॉलीबॉल, क्रिकेट। अब ये बताओ, इंडोर गेम्स आप लोग कौन कौन से खेलते हो? जब बहुत धूप होती है बाहर तो हमें इंडोर भी खेलना पड़ता है, तो फिर इंडोर गेम्स में कौन कौन से खेलते हो आकाश?
1: मैं इंडोर गेम्स में बॉलिंग प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब बॉल को दीवार से मार के उसको कैच करने की।
0: अच्छा, मतलब बॉल को कैच करने की प्रैक्टिस करते हो, तो ये तो हम अकेले भी कर सकते हैं।
4: कुछ बोर्ड गेम्स खेलते हो?
1: हाँ, लाइक लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स, चेस।
0: ओके, आकाश को चेस पसंद है।
3: मुझे चेस समझ में नहीं आती।
4: मैं भी खेलती हूँ दीदी, मेरी ग्रैनी के साथ।
0: चेस? अरे वाह, आपकी ग्रैनी के साथ आप चेस खेलते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है।
4: इंटेलिजेंट है कि हर बार वही जीतती है।
0: अरे वाह, लेकिन चेस तो काफी अच्छा गेम है, उसमें माइंड की भी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है।
3: हाँ दीदी,
0: है ना। और सैंडी, अगर आपको नहीं आता तो आप सीख सकते हो।
1: मैं हूँ ना, मैं सिखा दूंगा।
3: ठीक है आकाश, तुम सिखा लेना मुझे।
0: तो आकाश डन, फिर आप सैंडी को चेस सिखाओगे। और पंकज, आपको आता है कि?
2: मुझे भी नहीं आता दीदी।
0: ठीक है, कोई नहीं, आप दोनों सीख सकते हो, और फिर साथ में जब टाइम मिले तो फिर चेस भी खेल सकते हो। और कौन से इंडोर गेम्स है जो सैंडी खेलता है?
3: कैरम बोर्ड।
0: कैरम बोर्ड, अच्छा। और कैरम बोर्ड में क्या मजा आता है?
2: मजा इसलिए आता है क्योंकि हमेशा चैंपियन में होता
3: और मैं हार जाता।
0: अच्छा, मतलब हारने में भी अपना अलग मजा है नहीं? हाँ, सैंडी।
3: मेरी बस यही टारगेट रहती है कि मैं इसे हरा दूं, और पूरा होता नहीं तो हम खेलते रहते हैं।
0: ये भी अच्छी बात है।
2: हम तीन बेस्ट फ्रेंड है, हर्षित, सैंडी और मैं, लेकिन हमेशा मैं ही चैंपियन हूँ
3: और हमेशा मैं थर्ड आता हूँ।
0: और क्वीन कौन लेके जाता है?
3: क्वीन को तो मैं ले जाता हूँ।
2: बस तू क्वीन के पीछे भागता
3: है। हाँ, पीछे तो भागता रहता हूँ।
0: अच्छा, मतलब सैंडी की कोशिश जारी रहती है, लेकिन
3: एंड के चक्कर में गेम हार जाता हूँ।
0: एंड में क्वीन मिल जाती है पंकज को।
2: हाँ दीदी।
0: ठीक है बच्चों, अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और फिर ब्रेक से वापस आते हैं और फिर बातें करते हैं कुछ और इंडोर और आउटडोर गेम्स की। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं हम लेके बच्चों की दुनिया रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और बहुत सारे बच्चों से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, भुवना, सैंडी, पंकज और आकाश, इंडोर और आउटडोर गेम्स की बात कर रहे हैं। अब ये बताओ, जब तुम लोग की समर हॉलीडेज होती हैं तो कौन से गेम्स खेलते हो?
1: हम लोग क्रिकेट खेलते।
0: क्रिकेट खेलते हो? उसके लिए पूरी टीम मिल जाती है क्योंकि स्कूल की तो छुट्टियाँ हो गई होती हैं।
1: हाँ।
0: तो मतलब आसपास के बहुत सारे फ्रेंड्स इकट्ठा होकर खेलते हो?
1: हाँ।
0: और भुवना?
2: मैं चॉकलेट बॉक्स खेलती हूँ, स्टॉप एंड पार्टी, डिमेंड ऑल, फिर कंफ्यूजन।
0: कंफ्यूजन?
3: हम भी कंफ्यूज हो गए, ये कैसा गेम है?
2: इसमें एक डिनर होता है दीदी, तो एक को पकड़ने चलता है, फिर उसका नाम सपोज ऋषिता है, वो बोलेगी हेल्प शांति, तो शांति आएगा मुझे पकड़ने।
0: ओके।
2: तो फिर मैं बोलूंगी हेल्प पूजा, तो पूजा आएगी शांति को पकड़ने।
0: अच्छा, मतलब ऐसे सब लोग हेल्प लेते रहेंगे और नए नए लोग नए नए लोगों को पकड़ते रहेंगे।
2: कंफ्यूज हो जाएंगे ना दीदी
0: लास्ट में, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब कितना ज्यादा टेंशन रखना पड़ेगा। और आकाश?
4: दीदी मैं तो एक ही गेम खेलता हूँ, सोने का।
0: सोने का गेम?
1: ये कौन सा गेम है?
4: देखो क्या होता है कि स्कूल के टाइम में हम ढंग से सो नहीं पाते।
3: अच्छा, तो रात को सोते सोते गेम खेलते हो?
4: नहीं नहीं, स्कूल से आके फिर नाश्ता करके खाना खाके ट्यूशन जाना होता है, उसके बाद आके स्कूल का वर्क करना पड़ता है, फिर सुबह को जल्दी उठ के पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर स्कूल जाना होता है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ समर वेकेशन में, जितना मुझसे हो सकता है ना मैं उतना सोता हूँ, पूरे साल की कसर एक पूरे गर्मी छुट्टियों में निकालता हूँ।
1: और जीतता कौन है?
4: जीतता स्कूल है।
1: अच्छा,
0: मतलब फाइनली स्कूल खुल जाता है और नींद टूट जाती है।
3: हमें छुट्टियों में सोना नहीं चाहिए, कुछ नया ट्राई करना चाहिए,
1: कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए।
4: हाँ। इसीलिए मैं जून में नहीं सोता, सिर्फ मई में सोता हूँ।
0: हाँ, क्योंकि छुट्टियों का टाइम हमें साल में एक ही बार मिलता है, जिसमें हम और नई नई चीजें सीख सकते हैं और इन्हें ट्राई कर सकते हैं, है ना सैंडी?
1: दीदी मैंने ना आइस वाटर भी गेम खेले।
2: हाँ, मैं भी खेलती हूँ दीदी।
1: बर्फ पानी,
2: आइस एंड वाटर।
0: और उसमें क्या होता है?
4: एक बच्चा होता है, आइस लेके आता है, दूसरे बच्चे के ऊपर डाल देता है, और जब तक वो आइस
1: ऐसा नहीं करते
2: कोई भी नहीं आएगा।
4: डैनर होता है ना, वो दूसरे बच्चे के ऊपर आइस डाल देता है तो वो आइस बन जाता है, और जो बाकी ऑडियंस होते हैं ना वो उस बच्चे के ऊपर पानी डाल देता है तो वो पानी आ जाता है।
3: आकाश कश्मीर से लाते हो आइस?
4: नहीं नहीं, फ्रीजर से।
0: भाई ये तो नाम पे चलेगा आकाश, लेकिन एक्चुअली हम ये आइस वाटर कैसे खेलते हैं हमें कौन बताएगा?
4: नहीं भूगना दीदी आप बताओ।
0: अच्छा सैंडी बताओ।
1: इस गेम में एक होता है, एक डिनर होता है और बाकी सब खेलने वाले होते हैं, तो ट्रेनर किसी को बोल देगा ना कि आइस, तो वो जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में खड़ा रहेगा,
4: उसको टच भी करना होता है।
1: हाँ, स्टेच्यू बन जाएगा, फिर बाकी जो होंगे ना उसे टच करेंगे तो वो आइस से हट जाएगा, मतलब आवाज वाटर बन जाएगा।
0: अच्छा, तो इस गेम में बहुत मजा आता है यानी?
1: हाँ, बहुत।
2: हाँ, दीदी बहुत आता है।
0: और अपने स्कूल में दोस्तों के साथ खेलते हो कि घर पे?
1: कभी कभी हम लंच में भी खेलते हैं। ऐसा
0: लंच में खेलते हो?
3: हाँ दीदी।
0: और बहुत तेज तेज भाग के जब पकड़ना होता है, क्या कभी किसी को चोट लगी है कोई गेम खेलते खेलते?
1: हाँ, हमने इसी गेम में, मैंने
2: सावधान रहते हैं,
0: बहुत सावधान रहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सैंडी?
1: मैंने इसी गेम में सर को एक बार गिरा दिया था भागते भागते।
0: सर को गिरा दिया था? मतलब भागते भागते आप उनसे टकरा गए थे?
1: हाँ, तो सर ने मुझे एक थप्पड़ मार गिरा दिया।
3: दीदी मुझे क्रिकेट में चोट लगी थी जब मैं कीपिंग कर रहा था।
0: कीपिंग करते टाइम?
3: हाँ दीदी।
0: तो आपके पास ग्लव्स होते हैं कि नहीं?
3: नहीं, हम बिना ग्लव्स के ही करते हैं,
1: खतरों के खिलाड़ी हम लोग।
4: मेरे पास ग्लव्स पड़े हैं लेकिन मुझे कीपिंग करनी नहीं आती।
3: लेदर की बॉल से नहीं खेलते ना, टेनिस की बॉल से खेलते, इसलिए ज्यादा
4: चोट लग सकती है। सॉफ्ट टेनिस या हार्ड टेनिस भैया?
3: हार्ड टेनिस होती
4: है। अच्छा,
3: लेकिन फिर भी उससे कीपिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं तो चोट लग जाती है।
4: हाँ। मेरा एक फ्रेंड बता रहा था, उनके अंकल गुजरात की तरफ से खेल रहे थे, तो हार्ड टेनिस की बॉल से वो लोग खेलते हैं, तो जैसे ही बॉल आई तो उनकी लिटिल फिंगर पे कट लग के बॉल चौका लग गया और उनकी लिटिल फिंगर टूट गई।
0: मतलब ये सब गेम्स खेलते टाइम हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गेम जीतने से इम्पोर्टेंट ये है कि कभी भी किसी को चोट ना लगे, है ना बच्चों?
3: हाँ दीदी।
0: अच्छा, तो ये तो हुई बातें जो हम स्कूल में गेम्स खेलते हैं। अब मुझे ये बताओ, आप जब मम्मी के साथ या पापा के साथ होते हो तो उनको कौन से गेम्स खेलना पसंद है? क्या वो आप लोगों के साथ कभी कोई गेम्स खेलते हैं?
4: मेरे साथ तो नहीं।
1: मेरे साथ भी नहीं।
2: खेलते हैं
3: सैंडी के पापा खेलते हैं ना बैडमिंटन।
0: हाँ सैंडी के पापा तो सैंडी के साथ बैडमिंटन खेलते हैं
1: जब कभी कभी फ्री होते तो।
3: अच्छा मूड पे डिपेंड,
1: मूड के ऊपर डिपेंड करता हूँ।
0: अच्छा और मम्मी के साथ तुम लोग कोई गेम खेलते हो कि नहीं?
2: हाँ दी।
0: क्या भूखना?
2: मैं मम्मी पापा यूनो खेलते दीदी, यूनो मोनोपोली सारे गेम्स खेलते,
0: सारे गेम्स खेलते हैं।
2: और मैं ब्रेन बीटा भी खेलती हूँ।
0: अच्छा और कोई गेम?
1: हाँ दीदी मैं मम्मी के साथ कभी कभी सांप सीढ़ी खेलता हूँ, लूडो।
0: अरे वाह, मतलब उसमें
1: मम्मी बहुत अच्छा खेलती सांप सीढ़ी।
0: मम्मी को मजा आता है
1: बहुत, और मम्मी को फूल आता भी है।
0: और पंकज कौन सा गेम खेलते हो? मम्मी के साथ कभी कोई गेम खेलते हो?
3: नहीं दीदी मम्मी के साथ कभी गेम नहीं खेला मैंने।
0: कभी नहीं खेला?
3: नहीं खेला।
0: लेकिन कभी कभी हमें अपनी मम्मियों के साथ गेम खेलना चाहिए क्योंकि वो लोग तो घर में अकेले होते हैं और हमें इतने सारे गेम्स आते हैं।
2: मेरी मम्मी ऑफिस जाती है दीदी।
3: वो गोटियों वाला गेम आता है ना, पांच कंकर पत्थर होते हैं।
4: हाँ क्या कहते उसको, गट्टे, गट्टे की गोटियां ऐसे कुछ।
0: अच्छा तुम लोगों ने कभी पिट्ठू फोड़ खेला है?
4: ये कैसे?
1: ये कौन सा गेम है दीदी?
0: नहीं खेला? इसमें क्या करते हैं, हम सात पत्थर लेते हैं जिनको हम बड़े से छोटे और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख
4: देते हैं। सतोलिया।
0: अच्छा उसे सतोलिया बोलते हो?
4: हाँ
0: मतलब उसे खेलने में तो बहुत मजा आता है ना।
4: बहुत,
1: जब एक दूसरे को मारते हैं ना
4: पॉट
1: मजा आता है।
0: लेकिन धीरे धीरे मारो, किसी के चोट नहीं लगनी चाहिए।
1: हम तो जोर जोर से मारते हैं,
3: पूरी कसर
1: निकाल देते। बोले कल मुझे चिढ़ रहा था ना, ले
4: ले काले मार।
0: अच्छा तुम लोग कभी किसी टीम में कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए बाहर गए हो?
4: हाँ दीदी मैं सिंगिंग की टीम के लिए टूर्नामेंट खेलने के लिए बाहर गया था, सिंगिंग के लिए।
0: किसी गेम के लिए गए हो क्या?
4: गेम के लिए एक बार गया था, स्कूल से बैडमिंटन के लिए सिलेक्ट होकर मैं जोधपुर गया था खेलने के लिए। तो वहाँ पे जितने बच्चे थे ना, तो सर ने मेरा नंबर लास्ट में लगा दिया, तो आगे के आगे सब लोग आउट होते जा रहे थे। और उस टाइम मेरा लक ऐसा था ना कि जब हवा मेरे तरफ की थी तो मैं जैसे मार रहा था ना, वो सीधा उसके पाले में आके गिर रहा था, और हवा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी तो उसको परेशान हो जा रहा था बेचारा, कॉक किधर से मारूं, इसलिए बार बार उसका गिर रहा था। लेकिन अंत में मैं आउट हो गया, लेकिन हमारी टीम जीत गई।
0: अरे वाह आपकी टीम जीत गई। और सैंडी पंकज तुम लोग कभी गए हो?
1: हाँ दीदी मैं जिम्नास्टिक में गया हूँ।
0: अच्छा
1: जिम्नास्टिक में बहुत बार गया हूँ, 5-6 बार गया हूँ, मेरे को 5 सर्टिफिकेट जिम्नास्टिक के।
0: अच्छा जिम्नास्टिक के 5 सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं? अरे वाह। और भुवना इसी बात पे हम सब क्या करेंगे सैंडी के लिए?
2: थैंक
1: यू।
0: भुवना आप कभी किसी गेम के लिए गए हो?
2: मैं गेम के लिए नहीं थी पर कराटे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन।
4: हाँ
0: कराटे। अरे वाह। और आकाश
4: मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। दीदी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है
0: गेम खेलते समय कुछ फनी?
4: हाँ
1: हाँ दीदी
0: हमने तो बहुत डांट खाई है क्योंकि हम गेम जब खेलना शुरू करते थे तो फिर चाहे रात हो जाए और लेट हो जाए खेलते ही रहते थे। सबकी मम्मियां बुलाती रहती थी और हम लोग घर ही नहीं जाते थे, फिर सबकी मम्मियां आके धीरे धीरे एक एक को कान पकड़ के लेके जाती थी।
3: दीदी आपने इमोशनल कर दिया, हमने फनी पूछा था।
0: लेकिन वो हमारे लिए फनी होता था क्योंकि डांट खा के भी हम लोग गेम खेलते रहते थे।
1: तो हम लोगों ने भी बहुत मार खाई है,
0: डांट खाई है।
1: मैंने मार खाई है
3: बस।
4: बस पुरानी यादें मत ताजा करो पप्पू भैया।
0: और भुवना?
2: नहीं इतना फनी इंसिडेंट नहीं हुआ।
0: ठीक है तो आज के इस गेम्स के ऊपर करी बातचीत को हम यही

0: को बोला
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: यही खुशी है यहाँ की जो दो बूंद पानी में बह जाती है। जानते हो अगर हम शहर में होते तो चाहे आंधी तूफान या बारिश जो कुछ भी आ जाता हम लोग मजे से उसी क्लब या रेस्टोरेंट में डांस कर रहे होते। लेकिन यहाँ
1: अच्छा अब देखो

0: ख्वाबों का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, ख्वाबों के सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूं प्रोग्राम रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। जी हाँ, जहाँ पर आप सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत गाने, 50s, 60s, 70s तक के गाने आपको हम लोग सुनाते हैं और बहुत ही अलग अलग कलेक्शन आपको अल्फाबेट के माध्यम से सुनाते हैं। जैसे पिछली बार हमने आर अल्फाबेट से सुनाया था, आज भी वही अल्फाबेट से आपको सुनाएंगे। और हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए गानों का कलेक्शन लेकर उपस्थित है विभाजी। विभाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सनी, आपको सबसे पहले मैं नमस्कार कहना चाहूंगी और ख्वाबों का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार से प्यार भरा नमस्कार।
1: जी जी जी, स्वागत है आपका। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप अपने कलेक्शन के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं और मीठी प्यारी बातें करते हैं, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत ही अच्छा लगता है कि आप ऐसे ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे गाने लेकर आते हैं जिससे हमारी खुशी दुगनी हो जाती है। अब कहते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में तोड़ निभाना पड़ता है और ये जो है कभी कभी बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये जिंदगी भर चलता है। तो रिश्ते हैं, दोस्ताना है, तो जिंदगी भर ये चीजें निभाने वाला हमें एक बना के रखना पड़ता है और रस्सी की तरह हमें इसे लेके चलना पड़ता है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि उसमें गांठें भी पड़ जाती हैं। इसीलिए गांठें पड़ भी गए तो रुकना नहीं, हमें चलना है। तुझे अभी बहुत चलना है, जल जल कर नहीं कभी गलना भी है। वादा किया है तूने खुद से, वादा तो निभाना ही होगा। इरादा किया है तूने अब जो, पूरा करके दिखाना ही होगा। तुझे अभी बहुत गिरना है, गिर गिर कर खुद को संभलना है, संभल कर कभी नहीं थमना है। तो साथियों, यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि हमारे जीवन में बहुत मुश्किलें आएगी, लेकिन फिर भी हमें रुकना नहीं, चलना है और चलते रहना है, क्योंकि चलना ही जिंदगी है, चलने का नाम ही जिंदगी है। तो आइए इस जिंदगी के कुछ इस पलों में एक घंटा हम आपके साथ हैं ख्वाबों के सफर के साथ, और आशा व्यक्त करते हैं आपके इस एक घंटे को हम लोग बहुत ही खुशनुमा, यादगार, हल्का फुल्का और प्यार भरे, मस्ती भरे गीत सुनाएंगे। तो विभा जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड पहला गाना कौन सा आप सुना रहे हैं?
2: सबसे पहले तो

0: आपका, हमारे श्रोताओं को शुक्रिया करना चाहूंगी इतना कीमती वक्त मुझे देने के लिए, और इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आरक्षक पे आज फिर गाने लेके आई हूँ, और कोशिश यही है कि आपका दिल लुभाए, ये गाने आपको अच्छे लगे। ये गाना है रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते ना मिलन की बेला। ये गाना मीना कुमारी और राजकुमार पर फिल्म आया गया है। गाने के बोल बहुत ही भावुक हैं। अगर आपको स्टोरी पता है तो राजकुमार अपनी पत्नी को दुल्हन बनकर सजकर सामने आने को कह रहे हैं, और इन लम्हों को वो लम्हे समेट लेना चाहते हैं क्योंकि वो बीमार हैं और उनको अपनी जिंदगी जाती हुई नजर आ रही है। मीना कुमारी दुल्हन के वेश में उनके सामने है, और मीना कुमारी भी इन लम्हों को समेटना चाहती है और कह रही है, रात को कह रही है रुक जाने के लिए कि इतना तो बढ़ जा कि ये लम्हा मेरे हाथ से न निकले। कल का डरना कल की चिंता, दो तन है एक मन हमारे, रुक जा रात ठहर जा चंदा, बीते मिल की बेला। बहुत सुंदर लगा।
1: बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है। दिल एक मंदिर इस एल्बम का है, और मुझे कुछ याद है कि मैं स्कूल पढ़ा करता था, उस समय इस फिल्म के बारे में जिक्र किया करते थे लोग कि दिल एक मंदिर, इस नाम से ही लोगों ने इसको देखना शुरू किया था। तो ये एक फिल्म आई थी उस समय 1963 में शायद, और मीना कुमारी, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, मोहम्मद अली, शोभा कोटे पर पिक्चराइज किया गया था। तो ये खूबसूरत फिल्म का, ये खूबसूरत गाना कार्यक्रम की शुरुआत में आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, खाबो के सफर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह के खूबसूरत गाने सुनते हैं तो दिल में एक नई ऊर्जा पैदा हो जाती है। और चीजें जो है, ऊर्जा तो पैदा होती है लेकिन उसे संभल के भी रखना होता है। मुनव्वर राना कहते हैं, अगर कभी रोना ही पड़ जाए तो इतना रोना आके बरसात तेरे सामने तौबा कर ले। तो चलिए, बहुत ही अच्छी बातें जो है हमने मुनव्वर राना की आपको सुनाई दो लाइनें। आशा करता हूँ आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी। तो हंसिए, दिल से हंसिए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। अब विभा जी, अगला गाना कौन सा आप सुनाने वाले हैं?
2: अगला गाना जैसे ये जितेंद्र और माला सिन्हा पे फिल्म आया गया, जैसे आप जितेंद्र जी का ध्यान आते ही आपको एक चुलबुला पन और एक शरारत सामने आ जाती
1: जी
2: है,
1: नजर आता है।
2: जी बिल्कुल। और ये गाने के बोल हैं, रुख से जरा नकाब हटा दो
1: मेरे हुजूर,
2: जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। ये ट्रेन में गाया गया गाना है और माला सिन्हा अपना गुटके में है और उनके साथ जितेंद्र छेड़ाखानी कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं। तुम मिले हो मुझे ऐसे, मिलता चांद जैसे रात में। गाने के बोल भी बहुत खूबसूरत हैं।
1: जी जी जी। जितेंद्र, माला सिन्हा, राजकुमार, जॉनी वॉकर पर पिक्चराइज किया गया था। ये फिल्म आई थी मेरे हुजूर, जिसका टाइटल सॉन्ग आपने याद कराया है, 1968 का है और बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही उस समय की। शंकर जयकिशन साहब का संगीत से सजा ये फिल्म, विनोद कुमार के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी। ये फिल्म जो है उस समय एक प्रेम कहानी पर बनी हुई है और आशा करता हूँ आपने इस फिल्म को अगर देखा हो तो एंजॉय किया होगा। और क्लाइमैक्स लव स्टोरी को भी बीच में इसमें बताई गई है और शादी में समस्या आती है, फिर उसके बाद वापस ये चीजें जो है लास्ट में जाकर ठीक हो जाती है। तो चलिए, अब इस फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग अभी आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, हसरत जयपुरी साहब का लिखा, मोहम्मद रफी का गाया, मेरे हुजूर इस एल्बम का गीत आपने सुना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, मंजिलें बहुत है और अफसाने भी बहुत हैं, जिंदगी की राह में इम्तिहान भी बहुत है। मत करो दुख उसका जो कभी मिला नहीं, दुनिया में खुश रहने के बहाने अभी बहुत है। आइए आगे बढ़ते हैं और आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही प्यारे प्यारे गीत सुनने का एक बहुत ही सुहाना अवसर हम दे पा रहे हैं आपको। और जो गाने आपको अच्छे लगते हैं उसके लिए जरूर कमेंट करिए 7219190005 पे, ताकि हमें बहुत खुशी मिलती है आपके मैसेजेस सुनकर पढ़कर। तो विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पटारे में?
2: अगला गाना है मेरे पास, ये थोड़ा उदासी भरा गाना है, रुला के गया सब गुनाह मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा। बेहद उदासी वाला ये गाना है और प्रीतम को याद करते हुए इसके बोल प्रीतम को बुला रहे हैं और सवेरे का, सुबह होने का इंतजार है। सुबह मतलब नई जिंदगी का, नई खुशियों का इंतजार कर रही है। कैसी रे जिंदगी की सांसों से हम डूबे, के दिल डूबा हम डूबे।
1: जी, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है, रुला के गया सपना मेरा। ये ज्वेल थी फिस एल्बम का है और ये फिल्म आई थी 1967 में। देवानंद, अशोक कुमार, वैजयंती माला, तनुजा, इन पर पिक्चराइज किया गया था। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है देवानंद का डबल रोल इसमें दिखाया गया है। और इस फिल्म में ये बहुत बड़ा क्लाइमेक्स है जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। तो आइए, बहुत ही खूबसूरत गाना है जो आपको अभी सुना रहे हैं हम लोग, तो चलिए सीधे गाने की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: रुला के गया सपना मेरा, क्या बात है। लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में ये गीत आपने सुना। शालिनी साहब का लिखा, सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा, ज्वेलती फेस एल्बम से ये गाना था। आशा करता हूँ आप सभी को ये गाना सुनकर कहीं ना कहीं कुछ यादें ताजी हो गई होगी, आपके जीवन की पुरानी यादें। तो चलिए आप यादों से निकलकर हमारे साथ जुड़ जाइए ख्वाबों के सफर में। और बात कर रहे हैं हम ख्वाबों के सफर में, समय आगे बढ़ता जा रहा है। कभी कभी लगता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं और फिर थोड़ा डर भी लगता है। कहते हैं डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। जी हाँ साथियों, कभी कभी जीवन में डर लगे तो डर को जल्दी से भगा दीजिए और उसकी जगह पर अपने अंदर बुलंद हौसला कीजिए, ताकि आप अपने मंजिल तक बहुत जल्दी तेज रफ्तार से पहुंच सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना और विभा जी थैंक यू सो मच इस गाने को सुनाने के लिए। अब अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: अगला गाना मेरे पास है रुत फिरी पर दिन हमारे, फिरे ना फिरे ना फिरे ना। आई थिंक अभी जो आपने कहा ये इस गाने पे बिल्कुल फिट बैठता है कि यहाँ रुकावटें आए तो आप उससे हारना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। और गुरुदत्त और वहीदा रहमान पे फिल्माया गया ये गाना है। इस उदासी में शिकायत है और शिकायत यही है कि सब कुछ बदल रहा है लेकिन हमारे दिन नहीं बदले। इस पार कुछ नहीं है, उस पार कुछ नहीं है, और इसी गीत में ये बोल गाया जाता
1: है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया, प्यासा इस एल्बम का जो 1957 में रिलीज हुई थी। गुरुदत्त का ये फिल्म था और गुरुदत्त साहब के ही निर्देशन में ये फिल्म बनी थी। एसडी बर्मन का संगीत और आबरा अलवी ने इस कहानी को लिखा था। कहानी इस तरह से एक कवि की कहानी है जो कविताएं लिखता है लेकिन उसके प्रकाशन के लिए बहुत संघर्ष करता है, लेकिन जिस भी जगह जाता है उसे सफलता नहीं मिलता है और आखिरी में उसकी कविताओं का संकलन जो है एक वेश्या को मिलता है। वो उन कविताओं को पढ़कर बहुत खुश हो जाती है, तो फिर वो प्रत्यक्ष ने अप्रत्यक्ष रूप में उसको सहायता देती है और उन कविताओं को सुनकर उसकी सराहना करती है। तो इस तरह से ये कहानी बताई गई है। आबरा अलवी साहब ने इस कहानी को लिखा है। गुरुदत्त के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी और इस फिल्म के कलाकार जो है खुद गुरुदत्त, वहीदा रहमान, माला सिन्हा, जॉनी वॉकर थे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चाहेंगे, मुझे लगता है कि आज के इस एपिसोड में हमने बहुत कम गाने सुनाए हैं, लेकिन अब इसके बाद हम लोग कुछ गजल्स आपको सुनाने वाले हैं। कार्यक्रम के इस छोर में हम लोग आपसे चाहेंगे अलविदा और जाते जाते विभा जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही खूबसूरत गाने आपने सुनाए और बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज वाले गाने थे।
2: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सनी जी मुझे वक्त देने के लिए और हमारे श्रोताओं का भी जो इतने प्यार से हमें सुनते हैं और अपना इनपुट देते हैं। और आगे भी ऐसे ही हम प्रोग्राम और अच्छे अच्छे गाने, गजल, भक्ति भरे गाने, शोकी भरे सारे लाइक लेके आएंगे। इस वादे के साथ नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया विभा जी। और जाते जाते चंद लाइनें आपको कहना चाहूंगा। शकील बदाई साहब एक जगह पे लिखते हैं, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। तो कहते हैं कि बेजान चीजों को बदनाम करके, बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं चुप चुप के बातें और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें आपसे की और आशा करता हूँ कहीं ना कहीं आपको जो बातें दिल को छू गई होगी तो जरूर उसके लिए जवाब में आप हमें मैसेज कीजिए 7219190055 पे और अपना प्यार जताइए। और आप सभी इसी तरह मस्त रहें, खुश रहें और जाते जाते चंद गजलों का जो सिलसिला है आपको हम लोग आज तोहफे में देकर जा रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, नए अल्फाबेट के साथ होंगे ख्वाबों के सफर में। आप यूं ही बने रहे हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गनीसा, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बींग।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आए प्यार के जमाने
1: हल लग गया
0: आए प्यार के जमाने
1: हल लग गया
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी
0: ऐसे तो नहीं मैं तेरे दर से हटूंगा गोरी जी न सकूं तो अब मर के रहूंगा गोरी दिल में यही है कुछ करके

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप उनका रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप उन्हें कटाई रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, मैं मोनाली सावागत, तुम्ही ऐकत आहात रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। हमने, अगर आपको याद हो, पिछली कड़ी में बात की थी कि सिचुएशंस हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी हो जाती हैं और नो डाउट वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लगती हैं। और जिस तरह से हमने देखा था कि आने वाला वक्त ये भी कह रहा है कि सिचुएशंस तो आती ही जाएंगी, और वो अगर हम एक चीज जिसे हमने धारण करने को कहा था, जिसे कहा था कि अपने जीवन में जरूर इम्प्लीमेंट करें, वो ये कि उन्हें सिचुएशन फील कैसे किया, वो मैंने क्रिएट किया।
1: तो यहाँ दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस होल लाइन इज वेरी इम्पोर्टेंट, वो मैंने क्रिएट किया। आई जस्ट हैव टू रिमेम्बर ओनली दिस। अभी तक ये हो रहा था कि हाँ, दर्द क्रिएट हुआ, टेंशन क्रिएट हुई या गुस्सा क्रिएट हुआ, लेकिन वो परिस्थिति ने क्रिएट किया।
0: सिचुएशन ऐसी थी,
1: आई अंडरस्टूड दैट द पेन इज गेटिंग क्रिएटेड। वो तो मुझे, क्योंकि वो मेरे अंदर क्रिएट होता है, तो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है कि वो पेन क्रिएट हो रहा है क्योंकि आई एम गोइंग थ्रू द पेन। लेकिन क्रिएटर कौन था उसका? सो समवेयर व्हाई आई वाज फोकसिंग आउटसाइड, क्योंकि मेरे को लगा क्रिएटर बाहर बैठा है, यू नो, दैट्स व्हाई यू सेड पेन हिट्स अस, बिकॉज क्रिएटर वाज आउटसाइड। लेकिन जो आपने अभी कहा, मैंने क्रिएट किया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ आ गई? सारी मेरे ऊपर आ गई। तो जो हमने, कई बार हम ऐसी थॉट्स क्रिएट करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि वो नेगेटिव हैं, लेकिन वो नेगेटिव थॉट फिर वो मेरे सारे दर्द का कारण बन जाती हैं उस सिचुएशन को फेस करने में। तो अगर हमें अपने आप को उस सिचुएशन से क्रॉस करना है और बहुत स्टेबिलिटी से क्रॉस करना है, तो कुछ एक बातें जो हमें बहुत मदद करते हैं वो है पॉजिटिव थिंकिंग। आई नो इट्स अ वेरी क्लीशेड वर्ड, आई नो इट्स अ वेरी क्लीशेड वर्ड, वेरी रेड, वेरी हर्ड, but still not practiced. What is the need of the hour? Let's start now. Let's not wait for the pain to
0: come in,
1: go out of control. Kyunki wo jo emotional pain hai, fir wo sirf emotional pain na rehkar mere par physical effect bhi le leta hai, meri relationships pe effect karta, koi na koi ailment sharir mein bimari ho jati hai, fir doctor kehta hai tension nahi lena, hoga, it won't happen at that time. To jabki ab मालूम है सिचुएशंस बाहर है, बट स्टिल इट्स नॉट दैट बैड, इट्स स्टिल नॉट बैड, आई कैन स्टिल टेक आउट सम टाइम टू वर्क ऑन माय सेल्फ, प्रोवाइडेड आई रिमूव दिस वन थॉट कि मेरे पास टाइम नहीं है। सी, आई एम नॉट रेडी टू टेक आउट दैट लिटिल बिट ऑफ टाइम। हाउ मच टाइम? 10 मिनट्स, 15 मिनट अपने लिए निकालना, 15 मिनट जिससे आपके पूरे दिन की, आपके पूरे जीवन की नींव खड़ी हो सकती है। अगर हम 15 मिनट निकाल कर सिर्फ साइलेंस में बैठकर अपने आप को देखें, अपनी थॉट्स को देखें, फिर आगे मेडिटेशन जब करते हैं तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़े, अगर ये 15 मिनट में मेरा इतना क्लीनिंग और चार्जिंग प्रोसेस हो सकता है जिससे मैं बड़ी से बड़ी सिचुएशन को फेस कर सकती हूँ, हाउ मच इज 15 मिनट्स नाउ?
0: लेकिन ऑलरेडी जब सिचुएशन है, जैसा आपने कहा कि अब सिचुएशन आ गई है, और
1: लेकिन अभी भी उतनी बड़ी नहीं है, अभी भी उतनी बड़ी नहीं है कि मैं अपने ऊपर काम करना नहीं शुरू कर सकती, क्योंकि अभी भी मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्टेज तो यही देखनी है कि आई एम क्रिएटिंग द रिस्पॉन्स। लेकिन अगर मैं अपने लिए समय निकाल कर थोड़ी देर साइलेंस में बैठकर उस पर कॉन्टेम्पलेट नहीं करूं, मनन नहीं करूं, तो मुझे तो ये फैक्ट भी नहीं पता चलता कि आई एम क्रिएटिंग द रिस्पॉन्स। मुझे तो ये रियलाइजेशन भी नहीं है कि आई एम क्रिएटिंग द पेन। क्यों रियलाइजेशन नहीं? आई एम गोइंग वेरी फास्ट, ये इसलिए द फर्स्ट स्टेप हैज टू बिगिन विद टेकिंग आउट सम टाइम फॉर माय सेल्फ। बैठे भले वो परिस्थिति ही है, लेकिन बैठकर अपने बारे में जब सोचेंगे, व्हाट डू आई हैव अ चॉइस टू फेस दिस सिचुएशन, दिस कुड बी कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन, नो प्रॉब्लम। परमात्मा से कनेक्शन अभी नहीं जुड़ रहा है, नो प्रॉब्लम, अपने से तो जोड़ना शुरू करें। अपने से जुड़ेगा, हीलिंग होगी, तो परमात्मा से तो जुड़ना ही है, बिकॉज ही इज फाइनली द वन who's going to, you know, give me the power to change. लेकिन टाइम तो निकालना पड़ेगा, इलाज करवाना है तो डॉक्टर के पास जाना तो पड़ेगा ना इलाज करने के लिए, उसके साथ कनेक्शन जोड़ना तो पड़ेगा। कहीं डॉक्टर के पास जाने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं बीमार हूँ, ना who's responsible for this? Who's responsible? आप खुद ही अपने आप को कहते हैं कि मेरे पास अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए टाइम नहीं है, और फिर कह रहे हैं हाय मैं क्या करूं, मेरी किस्मत, मेरा भाग्य, अगेन द ब्लेम विल गो एवरीवेयर आउटसाइड। तो मेडिटेशन इज डेफिनेटली दैट कनेक्शन जिससे मैं अपने आप को देखना शुरू करती हूँ, अपनी हीलिंग, क्योंकि मेडिटेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड हीलिंग, अपने आप को हील करना शुरू करती हूँ, अपने थॉट्स को देखना शुरू करती हूँ कि हाँ देखेंगे ही नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो तो पता ही नहीं चलेगा। बाहर सिर्फ अपने एक्शंस को देख सकते हैं, थॉट्स को नहीं देख पाते हैं। तो थोड़ा सा समय अगर हम अपने लिए रोज निकालें, भले अभी भी कितनी भी बड़ी सिचुएशन है, बहुत बड़ी नहीं है, अभी भी उतना समय निकल सकता है, और अभी भी समय निकालेंगे तो उस सिचुएशन को राइट पर्सपेक्टिव में देख पाएंगे। समय नहीं निकालते।
0: एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, अभी जो हम बात ही कर रहे हैं ना शिवानी की, जब सिचुएशन आती है तो हमारा कोई थॉट क्रिएट होता है, लेकिन अगर अवेयरनेस के साथ देखूं, मैं भी अगर देखूं, हमने जो हम कई दिनों से काम कर रहे हैं, हमारे सारे दर्शक और मैं शामिल होकर, समटाइम्स इन द सिचुएशन कई बार तो हम हैंडल करते हैं अपने आप को देखते हुए, कई बार देखते हैं कि वो फीलिंग पहले जनरेट होती है, थॉट कि जहां फीलिंग ने हिट किया, चाहे वो हर्ट का था, चाहे वो एंगर का था, चाहे वो पेन का था, या चाहे वो रिजेक्शन का था, कोई भी एक फीलिंग ने हिट किया, उसके बाद थॉट आया कि
1: फीलिंग बिना थॉट के नहीं आएगी,
0: नहीं आ सकती।
1: हर्ट पेन जितने भी आपने फीलिंग्स बताई, हर्ट पेन एंगर रिजेक्शन, उसने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हर्ट, उसे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, एंगर, वन थॉट हैज टू गेट क्रिएटेड फर्स्ट,
0: लेकिन वो थॉट हमें दिख नहीं पाता,
1: पर फास्ट प्रोसेस है ना।
0: हाँ।
1: क्योंकि मेरा एक स्पीड इतनी, फिफ्थ गियर में आपकी गाड़ी अगर सारा दिन चल रही है तो आपको कितना क्लैरिटी से दिखाई देगा सब कुछ। कभी तो स्लो डाउन करेंगे थोड़ा सा तो दिखाई देगा कि क्या प्रोसेस है अंदर जो चलता है। देखो इतना फास्ट होता कि ये भी नहीं रियलाइज होता कि पहले थॉट या पहले फीलिंग, ये भी नहीं रियलाइज होता अंदर से आ रहा है या बाहर से आ रहा है। यू नो लाइक यू सेड द फीलिंग हिट्स, अगेन फीलिंग डजंट हिट, आई क्रिएट, लेकिन बाय प्रोडक्ट ऑफ माय थॉट। इसलिए जहां मेहनत करने वाली बात है वो उस सीड पर है, उस बीज पर है। थॉट एक बार राइट क्रिएट हो गया, फीलिंग अपने आप राइट क्रिएट होगी, एक्शन अपने आप उसके बाद राइट होगा, लेकिन वो थॉट स्टेज तो हम इतनी फास्ट फॉरवर्ड में चले जाते हैं, पता नहीं चलता। तो अगर हम थोड़ा सा समय रोज बैठकर अपने थॉट्स को देखें तो हमें पता चलने लगेगा कि वी आर क्रिएटिंग द थॉट। तो इसलिए थिंकिंग को परिवर्तन करने के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग में लाने के लिए मेडिटेशन इज द सॉल्यूशन, बिकॉज मेडिटेशन मीन्स फर्स्ट थिंग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को देखना। जब तक हम वो नहीं करेंगे तो उसको तो फिर हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसको कैसा करना है। लेकिन नॉर्मली क्या होता कि जब भी परिस्थिति आती है, माई फर्स्ट रिस्पॉन्स विच हैज बिकम वेरी कॉमन, हियर इज अ चेंज, वट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, वट इज इट?
0: रेजिस्टेंस।
1: यहां से सिचुएशन आई, मैंने रेजिस्ट किया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई डर है। फियर एक बहुत डीप रूटेड,
0: क्या होगा,
1: डीप रूटेड। अब जो आपने कहा क्या होगा, अब हम नॉर्मली समझते कि जब भी परिवर्तन होता है कुछ ना कुछ तो हमें डर लगता है, फियर इज वेरी डीप रूटेड। लेकिन डर ये लगता है हमें कि अब क्या होगा। एक्चुअली अगर आप और उसको गहराई से अपने आप को कभी भी देखना, नेक्स्ट टाइम जब डर लगेगा, फियर, इट्स नॉट फियर ऑफ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, इट इज फियर ऑफ व्हाट विल आई लूज आउट ऑफ व्हाट आई हैव नाउ।
0: यस, लूजिंग इज वेरी,
1: बिकॉज वी ऑलवेज थॉट दैट चेंज मीन्स फियर ऑफ अननोन, यू नो कि आई डोंट नो कि इस चेंज से क्या होने वाला है। लाइक आई रिमेम्बर कि जब कंप्यूटराइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, यू नो, into the offices, into the school system and everything, oh it was fear everywhere,
0: there was so much of resistance,
1: yeah, so much of resistance ke jis tarah se chal raha hai theek chal raha hai na, ye kis liye abhi, ye kyun
0: kar, human ko replace kar denge, machine jo hai, machine will take over, kitni unki films bani thi, kitna kuch bana tha,
1: to ye fear kis baat ka tha? Fear is baat ka nahi tha ki ye kya hoga isse, fear is baat se tha ki meri jo vartaman samay position hai, meri jo authority hai, meri jo power hai, कहीं वो तो नहीं
0: लूज
1: कम हो जाएगी। तो वो फियर की वजह से मैं उस चेंज को रेजिस्ट करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं जैसे हूँ वैसे ठीक हूँ। सो फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, एंड नॉर्मली हम किस चीजों को खोने का डर रहता है हमें, पीपल, फियर ऑफ लूजिंग पीपल, पावर, यू नो, एनी रिलेशनशिप, एनी ऑफिस, एनी वेयर चेंज इज इंट्रोड्यूस्ड, फियर ऑफ लूजिंग पावर,
0: माय पोजीशन
1: पोजीशन यस प्रेस्टीज माय पर्सनालिटी पीपल मनी पे ऑल दीज वी कॉल देम द पीस पावर पोजीशन प्रेस्टीज पीपल पेनीज डर और ये डर मुझे उस चेंज को रेजिस्ट करने के लिए करता है और जैसे ही मैंने रेजिस्ट किया तो कौन सी एनर्जी फ्लो होने वाली है
0: नेगेटिव
1: नेगेटिव सो इफ आई रेजिस्ट चेंज देयर इज नो वे आई विल बी एबल टू थिंक पॉजिटिव नाउ तो मैंने रेजिस्ट किया क्योंकि मुझे अंदर कोई ना कोई डर है कि मेरी ये सारी जो है पोजिशन पावर लोग जो है इनमें से कोई मेरे से खो ना जाए तो वो डर हमें रोकता है तो अगर हमें इस सिचुएशन को बहुत आसानी से क्रॉस करना है फर्स्ट स्टेप कम्स टू एक्सेप्टेंस
0: एक्सेप्टेंस ऑफ सिचुएशन
1: एक्सेप्टेंस स्वीकार करना कि ये होना है जैसे ये सारी बातें हमने की अब ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है ना ऑल दीज थिंग्स पीपल मनी पोजिशन वट एवर इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ दिस इज ऑल्सो ऑल एनर्जी लाइक इट्स फ्लोइंग इन माई लाइफ ये एक रिवर की तरह है जो फ्लो करता रहता है हम उस रिवर को क्या करने की कोशिश करते हैं रुक जाए ये यहाँ रुक जाए और वो रिवर को रोकने की कोशिश जो हम ये जीवन में हमारा जो बहता ये सारी चीजें बहती हैं दैट्स वाई इट्स चेंज बिकॉज रिवर फ्लोइंग नॉट इवन अ सिंगल यू नो मोमेंट इट्स गोइंग टू बी टू मोमेंट्स द सेम फ्लोइंग रिवर मीन्स हर पल
0: अलग
1: अलग हर पल परिवर्तन तो ये जीवन में ये जो सारी बातें हैं ये परिवर्तन है 10 साल पहले मेरे जीवन में जो लोग थे आज परिवर्तन है 10 साल पहले जो मेरी पोजिशन थी आज परिवर्तन है वी आर नॉट क्वेश्चनिंग गुड और बैड क्वेश्चन इज हैज इट रिमेन्ड कॉन्स्टेंट नो तो हम उसको क्यों रोकने की कोशिश करते हैं
0: यहाँ आपने कहा एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम ये आती है जैसे ही एक्सेप्टेंस कहती हूँ मेरे जो सारे फियर्स थे मैं उसको एक्सेप्ट करने लग जाती हूँ कि अच्छा ठीक है फिर मेरी अपनी पोजीशन तो जाएगी ही जाएगी कोई आगे मेरे पैसा तो जा ही रहा है ये जो फियर ये जो एक्सेप्टेंस है ये एक्चुअली एक्सेप्टेंस ना लाइक रहकर कई बार मतलब जैसे एक्सेप्टेंस आप कहो कि सिचुएशन की एक्सेप्टेंस तो उसके साथ के फियर के साथ जो लूज को चीजों को लूज करने वाला फियर था उसको एक्सेप्टेंस की बात
1: तो वो तो फिर हमने फियर को एक्सेप्ट किया सिचुएशन को थोड़ी एक्सेप्ट किया सिचुएशन को नहीं एक्सेप्ट किया मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इस सिचुएशन में डर लगना तो नेचुरल है हम अपने रिस्पॉन्स को भी नहीं कहेंगे रिएक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं अगेन बाय सेइंग कि ये सिचुएशन में ये तो नेचुरल ही है ना सो वी
0: ऐसा तो होगा ही ये होगा अब चलो मैं एक्सेप्ट उसको रेजिस्ट नहीं करता हूँ ठीक है अब हो गया है ये तो ठीक है मेरी नौकरी भी जाएगी मेरी पोजिशन चली जाएगी
1: दिस इज अ होल सीरीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स व्हिच हैज स्टार्टेड तो ये जो रिवर जो फ्लो कर रहा है If I try to stop it, it's like एक डैम बिल्ड कर देना यू नो ये यहीं रुक जाए पानी जैसा आगे नहीं फ्लो करे ये यहीं कहीं रुक जाए अब जैसे ही हम उस पर एक डैम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो डैम के दूसरी तरफ क्या क्रिएट होगा प्रेशर और ये प्रेशर जो है दिस आई एम क्रिएटिंग दैट इज वाई वी से सेल्फ क्रिएटेड अपना प्रेशर खुद ही क्रिएट किया हुआ है इन्होंने क्यों क्रिएट किया हुआ है क्योंकि ये बहती हुई चीजों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं अब बह रही हैं चीजें व्हाट कैन आई डू हाउ डू आई एक्सेप्ट एंड व्हाई शुड आई एक्सेप्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एक्सेप्ट करना लेकिन क्यों एक्सेप्ट करना अगर मुझे पसंद नहीं आ रही है सिचुएशन तो क्यों एक्सेप्ट करना हैव यू सीन अ रेस्लिंग मैच हाँ तो वो जूडो या सुमो या जो भी वो रेस्लर्स होते हैं आप कभी भी देखना उनकी जो मैच होता है वो कैसे स्टार्ट होता है दैट इज चेंज फिलोसफी दो लोग सामने से आते हैं First they bow down, right? This is a sign of respect. Then they embrace each other. Kabhi bhi dekhna. Always the match will start like that. Pehle aap bow down karte hain, phir aap embrace karte hain, phir aapka aage shuru hota hai, jo game aapne karni hai. This is basic change philosophy. Ki jab bhi aapke samne wo parivartan aaye, wo situation aaye, pehle aap usko embrace karte hain. दिस जूडो और रेस्लिंग व्हाट डू दे डू आप पहले एम्ब्रेस करते हो और एम्ब्रेस करने से आप कैच कर लेते हो कि इसका मोमेंटम क्या है
0: इसकी ताकत कितनी है
1: और फिर उस ताकत को मैं कैसे फेस करने वाला हूँ अगर ये यहां से करेंगे ना इसको I wouldn't know how to handle
0: fear
1: this.
0: Fear of unknown remains.
1: Fear of that. So normally the change philosophy goes, ki first you embrace, right? Then you catch the momentum. Ki iske andar kya hai? Lekin agar aap usko resist karenge, तो आपको उसका मोमेंटम तो पता ही नहीं चलेगा कि वो किस फ्लो से आ रहा है. और जब तक हम उसके मोमेंटम को कैच नहीं करेंगे, तब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि अब इसको मैंने किस तरह से
0: अपने शक्तियों से पहले हाथ मिलाओ, उसके बाद उसका जांचो कि कितना है उसमें पोटेंशियल,
1: एंड देन सी व्हाट आई कैन डू. बिकॉज फाइनली लाइफ इज व्हाट इट्स लाइक दिस ओनली ना. ये जो सिचुएशन हम बोल रहे हैं ये क्या है, हमारा मैच ही तो चल रहा है ना सारा दिन इनके अंदर. लेकिन जब हम वो सिचुएशन को ही
0: बड़ा
1: इतना
0: मान
1: बड़ा मान लेते हैं
0: बड़ा
1: और अपने आप को एकदम छोटा कर लेते हैं, दैट मीन्स वन साइड हैज सेड सॉरी मैं आपके साथ नहीं मैच खेल सकता, आई हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड डिफीट, मेरे जीवन में तो यही लिखा है. तो मतलब क्या किया मैंने, तो उसके साथ ट्राई भी नहीं किया,
0: गिव अप कर,
1: ट्राई ही नहीं किया. सो ऑलवेज एक्सेप्टेंस, एंड एक्सेप्टेंस मीन्स ये है, दिस इज इट, नाउ व्हाट. Our problem is, ऐसा क्यों? ऐसा कैसे? अभी हमारे बोलने से या हमारे उस तरह से सोचने से क्या हो जाता है, जैसे ही वो क्यों क्या कैसे इसमें चले जाते हैं, परमात्मा शिव बाबा हमेशा हमें बताते कि ये जो क क क हर टाइम खड़ा करते हो ना, इसको पहले फुल स्टॉप करो. क्यों क्या कैसे कब कहां, तो पूरा माइंड कहाँ किस तरफ चला गया, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस. एंड देन बाबा ऑलवेज सेज क्वेश्चन मार्क बहुत क्रुकेड मात्रा है, बहुत टेढ़ी है, फुल स्टॉप ऐसा है. नाउ व्हाट, नाउ व्हाट. लेट्स से आप मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे, छोटी सी सिचुएशन है, आई नो सिचुएशंस आर वेरी बिग, बट लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल सिचुएशन. आप मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहे, आप मुझे अब्यूज भी कर सकते हैं, आप बुरा भला कह रहे हैं, शायद 10 लोग आसपास सुन रहे हैं, आप इंसल्ट कर रहे हैं. नाउ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, इनको यही बात कहनी थी अलग से कह देते, ये कोई बोलने का तरीका है क्या, इस तरह से बात की जाती है. सो हु एम आई ट्राइंग टू कंट्रोल, I'm trying to control you. And I'm going into क्यों क्या कैसा. The next acceptance means, हाँ जी ये इस तरह से मेरे से बात कर रहे हैं, अब मेरा रिस्पॉन्स क्या. आपसे बुद्धि हटाऊंगी तब तो बुद्धि को अपने ऊपर लेकर आऊंगी कि हाँ how am I supposed to face this. लेकिन जब तो मेरा मन आपके अंदर ही अटका हुआ है, क्या आप ऐसे क्यों, आप ऐसे कैसे, आप
0: और आपने मेरी इंसल्ट कर दी, इतने सारे लोगों के सामने कर दी, आपने मुझे ये कह दिया, आपने मुझे ये कह दिया, मुझे ये समझ लिया, मुझे ये समझ, यू नो किसने समझा,
1: आपने किया, आपने किया, जो सही है या गलत है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, बिकॉज बाय गोइंग इनटू दैट देयर इज नो रिजल्ट. अगर मैं समझू के ओके यू आई फील आई शुड टेल यू, आई विल टेल यू कि आई डोंट थिंक कि जो आपने मेरे साथ किया वो ठीक, लेकिन वो मैसेज भी आप तक कन्वे करने के लिए पहले मेरी स्टेट ऑफ माइंड कैसे होनी चाहिए. लेकिन अगर मैंने आपको रेजिस्ट किया तब तो मेरे अंदर आपके प्रति इतनी कहें घृणा भर जाती है, इतनी नफरत भर जाती है कि बैठकर क्लैरिटी से फिर उसको वो
0: नहीं हो पाता.
1: तो इसलिए अगेन आई विल हैव टू कम बैक टू माई सेल्फ. लेकिन आपसे हटकर, मतलब सिचुएशन से हटकर अपने तक आने का जो प्रोसेस है, वो सिर्फ तब होता है कि मैं पहला वो फुल स्टॉप जो आपने कहा ना, फुल स्टॉप लगाना, फुल स्टॉप इज एक्सेप्टेंस. तो जो वो रिवर फ्लो कर रहा है, आई ओनली हैव अ फ्यू ऑप्शंस विद दैट. एक तो उसको रोकने की कोशिश करें, प्लीज मत जाओ, यू नो आई ट्राई टू स्टॉप यू, या प्लीज बदल जाओ, प्लीज अच्छे हो जाओ, प्लीज मेरे से ठीक से बात करो. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू स्टॉप द रिवर, कि हम दूसरों को ब्लॉक करते हैं. दूसरा है, कई बार ऐसे हो जाता है कि आप जैसे हैं मैं आपके ही प्रभाव में
0: वैसी होती जाऊं,
1: बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हूं. तो देन व्हाट हैपेंड कि रिवर वाज फ्लोइंग, मैं रिवर के साथ ही फ्लो होकर चली गई. जैसे आपने कहा ना, एक्सेप्टिंग द पेन, दिस इज फ्लोइंग विद द रिवर. हाँ सिचुएशन खराब है तो मेरा भी खराब होना उसके साथ ये जायज है, दूसरा गुस्सा कर रहा है तो मेरा भी गुस्सा करना जायज है. ये क्या हुआ, flowing with the river.
0: Oh, so you have to continue to stand and let it go.
1: Yeah.
0: I would have said otherwise, ki flow with the river.
1: No, flow with the river is then that means always you getting influenced. फ्लो विद द रिवर मतलब फिर मेरी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं हुई ना, मेरे पास फिर भी कोई कंट्रोल नहीं हुआ, सामने रिवर जो जो लेकर आता गया मैं उसके साथ ही बहती गई। आज रिवर इस तरफ जा रहा है, कल उस तरफ जा रहा है, परसों उस तरफ जा रहा है, तो मैं भी उसके साथ
0: और मैं बेचारी अपने आप को कहती गई मजबूर, कॉम्प्रोमाइज सब कुछ करती गई मैं। ओह, तो आई स्टैंड वेयर एवर आई वाज स्टैंडिंग
1: एंड आई लेट द रिवर फ्लो।
0: ओह यस,
1: नीदर स्टॉप द रिवर क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं है, नीदर फ्लो विद द रिवर बिकॉज दैट्स नॉट गुड फॉर मी। आई विल जस्ट I don't know where I will
0: reach. And that's not what I wanted.
1: That's not what I want.
0: You know, it's very important. If I wanted to flow with the river, if it, this was the right direction I was feeling, I should go. Otherwise, I should stay where.
1: So, if I can look at that river flowing, na, lekin.
0: हाँ.
1: मुझे ये दिखाई देना चाहिए ना अपने जीवन के अंदर, चाहे वो परिस्थिति है, वो परिस्थिति चाहे लोग हैं, चाहे कुछ भी है, मुझे ये दिखाई देना पड़ेगा कि ये है स्थिति, ये है परिस्थिति. परिस्थिति के साथ मुझे स्थिति को बह नहीं जाना है, मुझे परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी क्योंकि वो भी मेरे हाथ में नहीं है, मुझे अपनी स्थिति को परिस्थिति के प्रभाव से न्यारा रखना पड़ेगा। और वो तभी समझ में आएगा, तभी कर पाएंगे जब पहले फंडामेंटल ये रियलाइजेशन बैठ जाएगी कि ये है परिस्थिति, ये है मेरी स्थिति, ये परिस्थिति अलग, मेरी स्थिति मैं क्रिएट करता हूँ, परिस्थिति स्थिति नहीं क्रिएट करती, स्थिति आई एम द क्रिएटर। इवन दिस वन थॉट इफ आई कीप टेलिंग माई सेल्फ एवरी टाइम डे इन एंड डे आउट, एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग टेल माई सेल्फ एवरी थॉट आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर एंड आई हैव अ चॉइस। हर संकल्प मेरी रचना है तो मेरे पास चॉइस है कैसे संकल्प क्रिएट करने हैं, क्योंकि जो संकल्प मैं क्रिएट करूंगा उसके बाद
0: फीलिंग
1: हमने पहले भी देखा था, बट आई थिंक इट्स गुड टू ऑलवेज गो ओवर इट ऑल ओवर अगेन कि जैसे ही हम एक संकल्प क्रिएट करेंगे, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ थॉट, लेकिन जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऑटोमेटिक, जो आपने कहा ऑटोमेटिक हो जाता है, दैट इज अ फीलिंग, कि संकल्प क्रिएट हुआ और मुझे उसका फीलिंग या उसका अनुभव होना शुरू हो जाता है, और जो फीलिंग्स मेरी आपके प्रति, परिस्थिति के प्रति या पूरी दुनिया के प्रति जो फीलिंग्स मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट करती आई हूँ, दैट डेवलप्स माय एटीट्यूड। सो एटीट्यूड या कहें वृत्ति जो मेरी है कि दुनिया ऐसी ही है, ये तो ऐसे ही है, ये एटीट्यूड कैसे बना, क्योंकि कई बार मैंने वो थॉट क्रिएट किया, बार बार मुझे वो फीलिंग आई आपसे मिलने के बाद या आपके कोई व्यवहार से, तो मेरा एटीट्यूड क्रिएट हुआ, ये तो ऐसे ही है, मुझे पसंद नहीं है। तो थॉट, फीलिंग और एटीट्यूड, और ये जो एटीट्यूड मेरा क्रिएट हो गया उसके बाद आई कम इन टू एक्शन। अब हम सिर्फ एक्शन वाली स्टेज को देखते हैं कि मैंने ऐसा बोला या मैंने ऐसा व्यवहार किया, हम ये थ्री स्टेजेस को जो इनर प्रोसेस है ये स्किप कर जाते हैं कि ये एक्शन बना कैसे। इट वॉज बेस्ड ऑन थॉट, फीलिंग एंड एटीट्यूड। और फिर जो एक्शन हम बार बार रिपीट करते हैं, एक पर्टिकुलर बात करने का तरीका, यू नो, जैसे कई लोगों को आदत है ऊंची आवाज में जोर से बोल दिया या जोर से किसी को ऐसे डांट दिया, उनको अगर कभी आप कहो के the same thing could have been said in a probably a different way, they will say, oh, it's my nature. Because they don't even realize now whether this is useful for me or it is damaging for me. It's my nature. And nature matlab, main aisa hoon. Ab mujhe change hone ke liye nahi kehna. To ye nature kaise bani? Bachpan se thodi aise the. Lekin kai baar gusse se bola, phir gusse se bola, phir unchi awaaz mein bola. Thode din ke baad, वो मेरी हैबिट। तो जो एक्शन हम बार बार रिपीट करते वो मेरी हैबिट। नाउ ऑल योर हैबिट्स पुट टुगेदर इज योर
0: पर्सनालिटी। आई रिमेम्बर दैट,
1: ऑफ कोर्स, दिस इज अ डीप प्रोसेस विच शुड ऑलवेज बी देयर ऑन द स्क्रीन ऑफ द माइंड, कि ये जो मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी है, दिस इज बिगिनिंग विद माई थॉट। मेरा पूरा जो आज व्यक्तित्व है वो मेरी सोच से स्टार्ट होता है, और ये व्यक्तित्व, ये पर्सनालिटी संबंधों में आता, कर्म क्षेत्र पर आता, व्यवहार में आता, संबंध संपर्क में आता। एट एवरी स्टेप आई एम क्रिएटिंग माय डेस्टिनी। व्हाई माय डेस्टिनी? बिकॉज जो मेरा व्यक्तित्व होगा वैसा मेरा कर्म होगा, वैसे मेरा आपसे बात करने का तरीका होगा, और जैसा कर्म मैं करूंगी
0: response.
1: उसी का result मुझे मिलेगा. Now we know this. I mean, we don't need to learn it for the new time. बचपन से मुझे सिखाया गया कि जैसा कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट हमें मिलेगा, और हमारा कर्म किस आधार पर बेस्ड है? सोच पर. हमें किसी ने ये तो बता दिया कि जैसा कर्म आप करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये नहीं किसी ने बताया कि आपका कर्म आपके सोच से स्टार्ट होता है. और फिर किसी ने यही नहीं सिखाया कि राइट तरीका सोचने का क्या है. And I was talking to someone and they said, why didn't they teach us how to think?
0: How to think, yes.
1: How to think. And then we were just discussing and we said, as a child, we are taught how to talk, how to drink, how to eat, how to walk, not taught how to think. No one taught us. तो वो अपने आप ही डेवलप होता गया. एंड फिर आज जब हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है ओह ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेट हो गया. बट इट्स नॉट ट्रू. आज भी हम स्टार्ट करें तो इट विल चेंज.
0: तो हमारा एक थॉट कि हम थिंकिंग को शुरू करें, हमारी
1: ये भी हमारी डेस्टिनी को चेंज कर देगा.
0: बिल्कुल. और जिस तरह से हमने आज सिचुएशन को देखते हुए किया कि बिंदी लगाने वाली बात थी कि फुल स्टॉप. थैंक यू सो मच. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: वंडरफुल. So let's try to experience in the real sense what is meant by positive thinking. Positive thinking सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, जैसा कि कह रही है शिवानी, लेकिन implement और अनुभव नहीं कर रहे थे. Let's try to do that. अगर कोई समस्या आती है, कोई सवाल है आपके पास, आपके जीवन में कोई सिचुएशन है जिसका हल आप तलाश रहे हैं, साथ मिलकर भी कर सकते हैं. आपका स्वागत करते हैं. आप हमें फोन पर संपर्क करें या फिर ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-666-0983-555-0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@pkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन अभी हमें वो एम्पावरमेंट का सोर्स से जुड़ने का तरीका एक बार फिर जानना है. हमें देखना है कि जो भी सिचुएशन है उसमें जैसे हम हैंडल करेंगे उसके लिए हमें ताकत कहाँ से चाहिए. और इसके लिए आपके साथ हम अगली कड़ी में जरूर होंगे. फिलहाल आपसे विदा ले रहे हैं. ओम शांति.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

की आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है और कई मोड़ ऐसे आते हैं कि जब वो मजबूरी बन जाती है। अगर हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा तो हो सकता है कहीं हमारे किसी अपने के साथ ऐसा हो रहा हो, या फिर हमारे घर परिवार में कोई हो जो इस परेशानी से जूझ रहे हो, उसके सोल्यूशंस हमें मिल सकते हैं। कई तरह के व्यसन जिसे हम आज जिंदगी का हिस्सा मानकर उन्हें इग्नोर करते जाते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तो आज जब हम अपनी पहचान कर रहे हैं तो फिर ये बात समझ में आती है कि इन सिचुएशंस को हम इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि इन सिचुएशंस को बदलने का प्रयास करेंगे और किया भी जा सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए कि किस तरह से ये आदतें हमारी जिंदगी में शामिल हो जाती हैं और कैसे हम इन्हें दूर कर सकते हैं, हमारा सौभाग्य है हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, और हमारे साथ हर बार की तरह है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का हार्दिक स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, अभी तक हम कई सारे व्यसनों के बारे में भी जाना और कई एस्पेक्ट भी नजर आ रहे हैं। हमने डिटेल में बात की कि अगर ड्रग एडिक्शन की बात की जाए तब भी वो कहाँ तक लेके जा सकती है, और उसके अलावा एक जो आपने बहुत बड़ा रीअश्योरेंस हमें दिया हमारे सभी दर्शकों को भी कि किसी भी प्रकार का व्यसन या किसी भी प्रकार की जो मजबूरी बन जाती है आदत, उसे दूर किया जा सकता है। दिस इज द आई थिंक द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर वी कैन एक्चुअली गो अहेड। और जैसा आपने कहा कि आपने पहले भी बात की थी कि मेडिटेशन एक ऐसा एस्पेक्ट है, हम बात कर चुके हैं हीलिंग है, लेकिन हीलिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे विल पावर को इतना स्ट्रांग करता है, सेल्फ एस्टीम इतनी बढ़ जाती है। डॉक्टर पटेल, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं, एडिक्शन के ऊपर आते हैं, जो आज के इस दौर में एडिक्शन मानी ही नहीं जा रही, और वो इतनी कॉमन, घर घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर नजर आता है, जरूर मिल जाता है, जो इसका इससे घिरा हुआ है, इसका शिकार है, और इसे एक आम आदत के रूप में मान लिया जाता है, और वो है स्मोकिंग। सबसे पहले हमें ये बताइए कि सिगरेट, जो एक सिगरेट पी जाती है, उसके अंदर क्या होता है, कौन से ऐसे केमिकल्स हैं, क्या चीज होती है जो हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल भी करते हैं।
2: बहुत अच्छा। सबसे कॉमनेस्ट चीज कि जो आज सभी जानते हैं वास्तव में, वह है सिगरेट में निकोटीन। जो हैबिट फॉर्मिंग चीज है वह है निकोटीन। निकोटीन की बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होती है, साथ साथ में देखा गया है कि ऐसे और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, और एक डेंजरस केमिकल है वह कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड की जो एफिनिटी है वह हीमोग्लोबिन के साथ बहुत पावरफुल होती है, कई गुना ज्यादा, और इसके कारण उसके काफी हार्मफुल इफेक्ट होती है। ऐसे कोल टार है, कुछ साइनाइड्स भी इसमें है। कुल मिलाकर तो देखा है कि भी 4000 केमिकल्स साइंटिस्ट बताते हैं, पर कम मात्रा में है, परंतु फिर भी हम उसे काउंट कर सकते हैं कि 4000 केमिकल्स है, और उसमें से करीब 48 है कि जो कैंसर पैदा करने वाले। और स्मोकिंग की इन सभी केमिकल्स के साथ साथ जो हीट जनरेट होती है उसकी भी हमारी लिप्स, टंग्स, म्यूकोसा आदि पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है।
0: और कहीं ना कहीं इतने शौक से, इतनी शान से, हम में से हर कोई जो इसका आदी है वो कहता है कि मैं 20 सिगरेट पीता हूँ, मैं पूरा पैकेट दिन में खत्म कर देता हूँ। एक्चुअली ये जो पूरा एटीट्यूड है शिवानी, इस पे आते हैं कि व्हाई टू बी सो प्राउड ऑफ इट। हम फ्लॉन्ट करते हैं कि हाँ मैं स्मोक करता हूँ या करती हूँ, ये क्या है? ये भी कहीं एक सोशल,
3: कहीं ना कहीं उसको भी स्टेटस सिंबल या उसको भी स्ट्रेंथ मान लिया कि मैं इतनी सिगरेट पी सकता हूँ या मैं इतना अल्कोहल कंज्यूम कर सकता हूँ, ये भी मेरी जैसे ताकत है, यू नो, ये फिजिकल स्ट्रेंथ कहे या जो भी, इसको अपना स्ट्रेंथ को यू नो मैग्निफाई करने के लिए या उसको स्टेटस सिंबल बनाने के लिए भी सो प्राउड ऑफ। जैसे हम कहते हैं मुझे इतना स्ट्रेस है, दूसरा कहता है आपको बस इतना ही है, मुझे तो इतना है, यू नो, सो सिमिलर। इवन दो वी रियलाइज कि हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो हानिकारक है, लेकिन फिर भी उसको ग्लोरीफाई कर देते हैं कि मुझे उससे ज्यादा है, आपसे ज्यादा है, तो आई एम मोर पावरफुल देन यू। तो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम अगेन।
2: एक्चुअली देयर इज नो डाउट नाउ जो हार्मफुल इफेक्ट्स का है कि स्मोकिंग के बारे में हर साइंटिस्ट एक्सेप्ट करेगा, और अब तो अलग अलग एरियाज में भी रिसर्च होने लगी कि कौन सी हार्मफुल इफेक्ट्स है स्मोकिंग के कारण।
0: अगर हम डिटेल में जाने की कोशिश करें कि सचमुच फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली कहाँ तक हमें इफेक्ट करता है, उस पे आते हैं, लेकिन फिजिकली क्या एग्जैक्टली क्या कुछ होता है हमारे बॉडी में?
2: एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भी ये रिसर्च होती है, ये कोई एक एक व्यक्ति का अनुभव नहीं है। जब भी सभी जानते हैं कि सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है, लेकिन अधिकतर लोग ये कहते हैं कि मेरा पड़ोसी है वो तो 50 सिगरेट

0: रहा है, उसको लंग कैंसर नहीं हुआ। दूसरा एक व्यक्ति, उसको मैं जानता हूं, उसने कभी सिगरेट को छुआ तक नहीं, लेकिन वो लंग कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई।
1: ओ, ये तो इतना बड़ा प्ली होता है जितने भी स्मोकर्स हैं, तो ऐसा क्यों?
0: परंतु हाँ, ये क्यों है कि भी लंग कैंसर होने के और भी कारण है, बल सबसे महत्वपूर्ण कहते करीब 85% जो रीजन है वह है स्मोकिंग। और भी छोटे छोटे रीजन है कि जो शायद 15% उसको कंट्रीब्यूट करते होंगे। यह जो फाइनल डिसीशन हुआ है वह कैसे हुआ कि बहुत बड़ी रिसर्च की गई, कि जैसे 2 लाख स्मोकर्स को स्टडी किया गया और 2 लाख नॉन स्मोकर्स को स्टडी किया, और फिर देखा कि उनमें भी समझो 10,000 को कैंसर हुआ और वहां पर सिर्फ 10 लोगों को ही कैंसर हुआ। तो फिर यह निर्णय किया गया कि कितना गुना ज्यादा पॉसिबिलिटी है।
1: स्मोकिंग किल्स, हम में से हर कोई शायद इस स्लोगन से गुजरता है, स्मोकिंग किल्स। लेकिन जब भी हम सिगरेट उठाने लगते हैं, ये स्लोगन तब हमें क्यों नहीं याद आता? जब हम बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या जा रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी तो काफी स्ट्रांगली हमारे दिमाग में इम्बाइब्ड है, सो क्यों नहीं तब वो सामने आ जाती है?
2: क्योंकि तब तक वो ऑलरेडी शुरू में, जैसे किरीश भाई ने भी कहा, पहले हमने जो डिस्कस किया, फर्स्ट वी ट्राइड इट आउट फॉर द थ्रिल, ठीक है, तब वो इन्फॉर्मेशन इसलिए मायने नहीं रखती थी कि एक या दो लेने से इट इज नॉट गोइंग टू किल, एंड बाय द टाइम इट बिकम्स अ हैबिट, तब इवन इफ आई अंडरस्टैंड कि स्मोकिंग किल्स, मेरे पास वो विल पावर नहीं है उसको गिव अप करने के लिए, क्योंकि अवेयरनेस न होने के कारण हमें पता ही नहीं चला कि कब हम इस दौर से, जो सिर्फ एक ट्रायल के लिए या एक प्लेजर के लिए था, हम एडिक्शन तक पहुंच गए जिसको हम छोड़ नहीं पा रहे। अब हमारे लिए वो इन्फॉर्मेशन काम की है कि स्मोकिंग किल्स, बट अब हम कहते हैं कि अब तो मैं इसके बिना कर नहीं सकता हूं।
0: और तब तक आप बुद्धि फिर तर्क ढूंढने लगती है, जैसे आगे मैंने एक तर्क बताया,
2: जस्टिफाई भी कर देते हैं ना कि वैसे भी जितना जीना है।
0: दूसरा एक तर्क ये भी होता है कि मुझे नहीं होगा, भले पक्का है कि सिगरेट के कारण लंग कैंसर होता है, परंतु मुझे नहीं होने वाला। तो इस प्रकार से भी व्यक्ति अपने आप की आंखें बंद कर देता है कि हार्मफुल इफेक्ट मुझे नहीं होगी।
1: अगेन हार्ट की जो प्रॉब्लम जितनी भी आ रही है, कहा जाता है कि मैक्सिमम इफेक्ट स्मोकिंग के कारण है,
0: बिल्कुल
1: कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, कई सारी, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि हाँ फिजिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स एक्चुअली सामने आ सकती है।
0: ये जो हार्ट का बताया उसके हम पहले तो चर्चा करें कि खून में प्लेटलेट्स होते हैं कि जो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और चिपक जाने के कारण भी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। निकोटीन से जो ब्लड वेसल्स है वो भी कंस्ट्रिक्ट होने लगती है,
1: सिकुड़ने
0: लगती है, और ऑलरेडी और कई कारण है कि तनाव के कारण वह कंस्ट्रिक्ट हुई है, या तो आप ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं उसके कारण भी वह फैट डिपॉजिट होने लगी है, एक बहुत बड़ा एडिशनल कारण बन जाता है। जो मैंने कार्बन मोनोक्साइड की बात की, कार्बन मोनोक्साइड के कारण भी हीमोग्लोबिन है वह कार्बन मोनोक्साइड से चिपकता है, और फिर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है खून की वो अनेक गुना, थोड़ी सी नहीं, ऑलमोस्ट 20-25% ही रह जाती है। यह एक हार्ट के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और निकोटीन से वो प्रेशर भी बढ़ता है, ब्लड वेसल्स पर प्रेशर आता है जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। ऐसे ही जो इमीडिएट इफेक्ट है वो तो आपके होठों पर है, जो हीट जनरेट होती है, हीट के कारण होठों का कैंसर, जीभ का कैंसर, मुंह का कैंसर होने की संभावना, जितनी आप ज्यादा सिगरेट पीते हैं उतनी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सिस्टमेटिक रिसर्च है, सिर्फ कोई एक दो किस्सों को देख करके किसी ने कहे कि भी एक स्टोरी नहीं बना दी कि सिगरेट के कारण जीभ का कैंसर होगा। दिस इज रियली अ सिस्टमेटिक रिसर्च विच हैज प्रूवन। और दूसरा, आजकल तब क्या हो रहा है कि सिगरेट में निकोटीन बढ़ रहा है। एक रिसर्च स्टडी हुई थी कि करीब पिछले 12 सालों में सिगरेट में 11% निकोटीन है वो बढ़ा है। और दूसरी बात कि अभी सिगरेट्स को इस अलग अलग तरीके से बनाते हैं कि भी व्यक्ति ज्यादा पफ्स ले सकते हैं, तो इसके कारण भी जो हार्मफुल इफेक्ट है वो बढ़ रही है।
1: और एक अगली बात मेरी ये थी कि अगर छोड़ना चाहते हैं तो क्या एकदम से छोड़ी जा सकती है या फिर धीरे धीरे करके छोड़ी जाती है?
0: सक्सेस तो एकदम से ही मिलती है, भल हर व्यक्ति सफल न भी हो पाए, परंतु जो सक्सेस मिलती है वो जब आप एक बार निर्णय करते हैं और पूरा छोड़ दे तब सक्सेस मिलती है। बल उसके लिए थोड़ा सा समय लिया जा सकता है। आप ये निर्णय कर ले कि आज से 15 दिन के बाद एक डेट निश्चित कर दे, कि इस डे को मुझे 100% सिगरेट को छोड़ देना है, फिर उन 15 दिन के लिए आप मैक्सिमम एफर्ट करिए कि जितना कम से कम हो। उसमें भी कोटा सिस्टम नहीं चलती है, कई डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आज अगर आप 15 सिगरेट पी रहे हैं तो कहेंगे कि भी एक वीक के लिए आप 10 पियो, फिर और एक वीक के लिए 5 पियो और फिर उसको कंप्लीटली छोड़ो। मैं सोचता हूं कि ये राइट नहीं है। यह संभव है कि फर्स्ट डे ही आपको एक सिगरेट से भी चल जाए तो फिर दूसरी क्यों पीनी चाहिए। इसलिए यह संभव है कि भी थोड़े दिन हम कम से कम करें और फिर उसको पूरी तरह से
1: एक डेट फिक्स करके ये कर सकते हैं। दिस इज अ टेक्निक एक्चुअली, जैसे छोड़नी चाहिए। डी एडिक्शन के ऊपर हम और बात करेंगे, तो बीच में मेरे पास आया। अच्छा, सिगरेट स्मोकिंग सिस्टर शिवानी एक ऐसा व्यसन है, एक ऐसी, अभी तक हम उन आदतों की बात कर रहे हैं जो सिर्फ मुझे अफेक्ट कर रही है, जो मुझ तक ही सीमित है और मैं ही उससे अफेक्टेड हो रहा हूँ, चाहे हम बाकी सारे व्यसनों की बात करें, लेकिन सिगरेट स्मोकिंग एक ऐसा व्यसन है, एक ऐसी लत है जो पूरे समाज को, पूरे पर्यावरण को खराब कर रही है। जब पैसिव स्मोकिंग की बात आती है, जब वो स्मोक पूरे वातावरण में जा रहा है, घर में भी देखा गया है कि जो इन्फेंट डेथ्स की बात है उसमें भी स्मोकिंग शायद काफी रिस्पॉन्सिबल है। तो वो जो पैसिव स्मोकिंग है उसके इफेक्ट्स क्या है?
0: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने खुद ये जो बात बताई कि जब आप पैसिव स्मोकिंग करते हैं तो बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और विशेष स्टडी भी की गई है कि बच्चों पर बुरा प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि उनके जो लंग्स है अभी भी डेवलप हो रहे हैं, नहीं वो टेंडर है एक प्रकार से। एडल्ट पर कम इफेक्ट होगी, बच्चों पर और ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होती है। और एक यही चीज देखी गई जिसको कहा सडन इन्फेंट डेथ्स, SIDS कहते हैं, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो यह सिंड्रोम में कई बार पाया है कि एडल्ट्स का स्मोकिंग है वही उसके लिए कॉज है। तो कहेंगे कि इट कैन बी नो लाइक अ डेथ पेनल्टी आल्सो, कई बार तो लोगों ने भी रियलाइज किया है।
1: इट्स एक्चुअली सो सैड, और देखा जाए तो पूरे पर्यावरण, पूरे समाज के लिए ये व्यसन के रूप में सामने आ जाता है। सिस्टर शिवानी, स्पिरिचुअली अगर हम देखें, क्योंकि बाकी सारे व्यसनों की, आदतों की हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये जहां पूरा का पूरा समाज एक सिगरेट से भी, एक सिगरेट के स्मोक से भी इफेक्ट हो रहा है, स्पिरिचुअली हाउ कैन वी डील विद इट?
2: आई थिंक इट्स डिफिकल्ट, बिकॉज जो कर रहा है वो शायद औरों के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि वो तो अपने बारे में ही नहीं सोच रहा है। पहले तो हम अपने बारे में सोचते हैं, अगर मुझे गिव अप करना है, मैं शायद इस एंगल से सोचकर नहीं गिव अप कर सकती हूँ कि इसका नुकसान, हाँ फैमिली का अगर हम सोचे कि इसका मेरे बच्चों पर नुकसान हो रहा है, मेरी इमीडिएट फैमिली जो साथ में रहती है, विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ देयर्स दे आर कंज्यूमिंग, और हम सब कुछ अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनको खुशी देना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू गिव देम द बेस्ट ऑफ हेल्थ, तो हम उनको क्या दे रहे हैं? ये एक थॉट पे अगर हमें आए कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, शुड बी अ रीजन इनफ टू गिव इट अप एट वन गो। और एक थॉट से इसको गिव अप कर सकते हैं। हमारे पास रिट्रीट सेंटर में एक भाई आए थे, प्रिंसिपल थे, जो 5 दिन की रिट्रीट के लिए आए थे, और रिट्रीट सेंटर में तो स्मोकिंग अलाउड नहीं है ब्रह्मा कुमारीज कैंपस में। तो अब उनको पता था कि उनको 5 दिन यहाँ रहना है, तो ही इज नॉट अलाउड टू स्मोक। तो उन्होंने पहले दिन ही कहा कि आई एम सॉरी, मैं इस रिट्रीट में हिस्सा नहीं ले सकता हूँ, आई हैव टू गो बैक, बिकॉज वो 40 या कुछ सिगरेट रोज स्मोक करते थे और काफी बुजुर्ग थे, 50 अबव। तो फिर सभी ने उनको कहा कि ट्राई करके देखते हैं, आप इस कैंपस में आए हैं, और बहनों ने कहा कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर आप यहाँ कोशिश करें तो यू विल बी एबल टू गिव इट अप। तो उन्होंने कम नहीं किया, क्योंकि वहां कम करने की मार्जिन नहीं थी, क्योंकि वो कैंपस के अंदर थोड़ी एक भी नहीं ले सकते। तो पहले दिन से जब ठहरे तो लेना बंद कर दिया। 2 या 3 दिन उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, वो रिट्रीट के लिए भी हिस्सा लेने नहीं आ सकते थे, वो कमरे में ही रहते थे, उनको चिंगम और लौंग और उस तरह के सब्स्टिट्यूट दिए जा रहे थे। 3 days द ब्रदर वॉज इन अ लॉट ऑफ टर्मोइल, लेकिन एक भी नहीं लिया, एक भी सिगरेट, राइट फ्रॉम 50 या जो भी वो लेते थे, एक भी नहीं लिया। 4th day वो आए उस वर्कशॉप के अंदर, और 5th day तो जाने का दिन था वापस। 5वें दिन ही वॉज बिल्कुल ओके, एकदम ओके। और जाने से पहले सभी लोग अपना अनुभव शेयर करते, तो वो क्लास के सामने आए और एक्सपीरियंस शेयर करने लगे, तो रोने लगे सबके सामने एकदम, और कहा कि आज मैं जब घर जाऊंगा तो सर उठा कर जाऊंगा। कहते मेरी बेटी मेरे से बात नहीं करती थी, क्योंकि उसको ये मेरी हैबिट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं उसके लिए करना चाहता था, लेकिन मैं कर नहीं सकता था. लेकिन आज मैं you know, बहुत गर्व से घर जाऊंगा कि मैंने इस आदत को छोड़ दिया है. और 2 साल के बाद वो फिर आए रिट्रीट सेंटर में. हमने नहीं पहचाना क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं, तो उन्होंने आकर कहा कि आपने पहचाना, मैं वो ही हूँ जो 50 सिगरेट स्मोक करते थे. कहते वो दिन और आज का दिन 2 साल एक भी नहीं लिया बीच में, नॉट इवन वन.
1: That's wonderful. Actually, कहीं ना कहीं जो ये सोशल इशू भी है, कहीं ना कहीं इसका मतलब जो स्मोकर्स हैं, दे हैव दिस गिल्ट जिसको वो मार के आगे बढ़ते जाते हैं.
2: इट्स जस्ट नॉट एबल टू डू इट. लेकिन जब उनको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में आकर बहुत बहुत बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने इन आदतों को एक बारी में छोड़ा है. इनफैक्ट सेंटर पे और हेडक्वार्टर में तो एक दान पेटी होती है जिसमें आप जो कैरी कर रहे हैं ना अपनी पॉकेट में, सिगरेट या बीड़ी का पैकेट, वो आप वहां डाल कर जाइए और दृढ़ संकल्प से, बिकॉज ऑल दैट इट रिक्वायर्स इज वन थॉट. जब हम अपने गुस्से को और इन बातों को थॉट पावर से खत्म कर सकते हैं, तो ये तो फिजिकल एडिक्शन है. और बहुत सारे लोग एक थॉट से धीरे धीरे नहीं कम किया, कितने एक थॉट से गिव अप किया है. एंड दैट टू जो बहुत ज्यादा स्मोक करते थे. तो जो अभी कैजुअल है उनको तो गिव अप करने में कुछ भी टाइम नहीं लगे.
1: ये सिगरेट या स्मोकिंग जो है, सरकार भी अगर हम आज देखें तो कई बाकी सारे लत या एडिक्शन के ऊपर इतनी बात ना करके स्मोकिंग पे ही इतना जोर इसीलिए है कि कहीं ना कहीं पूरा सोसाइटी पर्यावरण जो है इससे परेशानी में है. परिवार का हमने पिछली बार भी बात की थी, एक्सेप्टेंस हो जाती है. हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारे फादर स्मोक करते ही हैं तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है वो तो करेंगे ही. हमारे हस्बैंड स्मोक करते हैं, इवन कई घरों में मदर स्मोक करती हैं, तो मान ही लेते हैं कि हाँ स्मोक करेंगे ही. बार बार कहना क्या पेस्टरिंग हो जाएगा, क्या कह सकते हैं? मतलब कई बार, क्योंकि ये भी लगता है कि कहीं हम उनके पीछे ही पड़ गए हैं कि स्मोक नहीं कीजिए, स्मोक नहीं कीजिए. वॉट टू डू, पेरेंट या एक जो फैमिली है उसकी काउंसलिंग कैसे होनी चाहिए कि वो स्मोकिंग को छोड़ पाए?
0: एक तो कहते हैं कि उनको स्कोल्ड करना वो अच्छा नहीं है, जैसे कि ना कन्फ्रंटेशनल अप्रोच, जैसे डांटना शुरू कर दो ना, बात करना बंद कर दो, तो ये चीजें इतनी काम नहीं करती है. हमको उन्हें सपोर्ट देना पड़ेगा कि भी हम आपके साथ है. ये छोड़ना तो जरूर है, एक्सेप्ट भी नहीं करना है कि भी 100% छोड़ना है, परंतु हम आपको उसमें पूरा पूरा सपोर्ट देंगे. और फिर अपनी बात को उनके सामने रखे, उनको समय प्रति समय अगर अलग अलग तरीके से यह स्पष्ट किया जाए, कुछ ऐसे अच्छी बुक्स है तो वो घर में ला दो, पिक्चर्स भी इफेक्टिव होते.
1: डी एडिक्शन की जहां बात करते हैं स्मोकिंग की, उसे वो मानते ही नहीं है कि डी एडिक्शन की जरूरत है. बहुत ज्यादा बार लोग यही कहते हैं कि हाँ एक बार में हम सोचेंगे छोड़ देंगे जब हमारी मर्जी होगी. छोड़ते भी हैं लेकिन देखा ये जाता है कि 6 महीने में या 3 महीने में या 15 दिन में एक सिगरेट से शुरू करके दोबारा रिलैप्सेस हो जाते हैं. द वे यू सेड शिवानी, इट्स जस्ट अ थॉट अवे, एक थॉट अवे है. छोड़ना आसान है, उसे कंटिन्यू करना मुश्किल है. अध्यात्म कितनी मदद करे
2: एक्चुअली कोई भी चीज चेंज करने के लिए, नॉट ओनली स्मोकिंग, कोई भी आदत को चेंज करने के लिए हम 4 टाइप से चेंज अपने अंदर ला सकते हैं. एक है बिहेवियरल लेवल चेंज, जो बिल्कुल ही ग्रॉस लेवल पर है कि आज आज से हम इतनी ही पियेंगे या हम पैकेट नहीं खरीदेंगे, एक एक करके लाएंगे. ये जो बिहेवियरल लेवल पर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरह वो आदत हमारे से छूट जाए. दूसरी लेवल पर जो चेंज होता है वो है इंटेलेक्चुअल, कि मेडिकली क्या नुकसान है, फिजिकल क्या नुकसान है. तो इंटेलेक्ट को टैप किया जाए, डॉक्टर से बात की जाए, कहीं वो मुझे ट्रिगर कर दे. तीसरा है इमोशनल लेवल चेंज, फैमिली मेंबर्स कहते हैं मेरे लिए छोड़ दो, हमारा इतना नुकसान हो रहा है, बच्चे कहते हैं हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो आप सामने वाले के इमोशंस को ट्रिगर करते हैं कि कहीं इमोशनली वो गिव अप कर दे अपनी आदत को. अब ये तीनों प्रकार के जो चेंज है, बिहेवियरल लेवल, इंटेलेक्चुअल या इमोशनल, ये टेम्पररी चेंज है, किसी में परमानेंट हो भी सकते हैं. लेकिन इनका रिलैप्स होना बहुत कॉमन है कि यू माइट गो बैक टू योर ओल्ड. जो रूट परमानेंट चेंज है उसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस लेवल पे चेंज, कि बिल्कुल अंदर से आपने उस चीज को स्वीकार किया, सिर्फ मेडिकली नहीं, सिर्फ किसी के कहने पर नहीं, सिर्फ धीरे धीरे से छोड़, अंदर से आपकी कॉन्शियसनेस को वो समझ में आ गई जब वो बात, तब फिर वो कोई आपको कहे या कोई आपके सामने सारी ऑफर भी करे, यू विल नॉट go back to it when that change comes from inside. So there will be an entire shift इन द कॉन्शियसनेस, और इसको एक ही थॉट लगता, इट्स बेसिकली सेल्फ रियलाइजेशन. तो वो सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है आप 10 साल से ट्राई कर रहे हो, लेकिन जब वो होना होगा, जस्ट वन थॉट, जस्ट टेक्स वन थॉट, एब्सोल्युटली. और ऑफकोर्स आप मेडिटेशन अगर साथ में करते हैं, आप अगर इस तरह की वायुमंडल में आते हैं जहां सारे बहुत पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, जहां आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो शायद पहले स्मोक करते थे, उन्होंने कितनी इजीली गिव अप किया,
1: और इनफैक्ट ऐसे लगता है कि इट इज पॉसिबल. आज जिस दौर में हम रह रहे हैं एक्चुअली, वहां लगता है कोई भी बात करना, जैसे हम बातें भी करते आए हैं तो ऐसे लगता है, ज्यादातर हमें ईमेल्स भी आते हैं, वो कहते हैं इट इज नॉट पॉसिबल. अच्छी तो बहुत लगती है ये बातें, लेकिन ये संभव नहीं है. तो ऐसी जगह पे अगर आप जाएंगे जहां दिख रहा है कि वो संभव हुआ हुआ है, सो आई थिंक दैट कैन हेल्प.
2: जहां आपका पीयर प्रेशर वो होगा जो स्मोक नहीं करता, यू नो, कहीं ना कहीं वो संघ की भी तो आवश्यकता है, जिन्होंने, जिसमें से आपको कई ऐसे मिलेंगे जिन्होंने बहुत, यू नो, चेन स्मोकर्स थे, उन्होंने कैसे गिव अप किया, तो वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो जाता है. एंड अगेन सेकंड थिंग, वो जो अति इंद्रिय सुख है, जब परमात्मा से संबंध जुड़ता है तो वो जो सुख मिलता है उसका लेवल इतना हाई होता है, और हमें तब पता चलता कि अगर हम स्मोकिंग या कोई ऐसा पदार्थ लेते हैं तो मेरे वो ब्लिस में वो लीकेज है. देन आई काइंड ऑफ प्रायोरिटाइज कि मुझे क्या चाहिए,
1: एंड देन आई वुड लाइक टू बी कनेक्टेड.
2: तब तो कोई भी चीज छूट सकती है एक क्षण में, फॉर दैट हायर सोर्स ऑफ पावर एंड लव, तो वो एक क्षण में छूट जाती है, डजंट टेक टाइम एट ऑल.
1: जहां परमात्मा के साथ वो सब कुछ मिलने लग गया, एक्चुअली आई कैन अंडरस्टैंड दैट, यू नो, द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट, यू गेट इनटू दैट कनेक्शन, देयर इज नो नीड फॉर एनीथिंग
0: एल्स एज वेल.
1: एक्चुअली वो नशा सबसे सुंदर, सबसे बड़ा नशा हो जाता है. और कुछ छोटी छोटी युक्तियां हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करें?
0: तो मैं ये चाहता हूँ कि पावरफुल मोटिवेशन डेवलप करना चाहिए, और आज ही छोड़ो, इसी समय नहीं सोचो कि मैं 5 साल के बाद छोड़ूंगा, 10 साल के बाद छोड़ूंगा, तब तक बहुत देरी हो गई होगी. इतना हो सके आज ही जल्दी से सोचो, एक निर्णय करो कि मुझे पूरी तरह से इस व्यसन पर विजय प्राप्त करना है. फिर और आगे के स्टेप्स भी हो सकते हैं, कि जो पहले भी मैंने कहा कि एक डेट डिसाइड करो, मे बी 10 दिन 15 दिन के बाद की डेट, कि इस दिन से 100% मैं छोड़ दें, और सभी को बताओ, अपने तक सीमित नहीं रखो,
1: और इमेजिन करने लग जाओ कि छूट गया,
0: छूट गया, ये भी ठीक है. हाँ. परिवार में भी बताओ, फ्रेंड्स को बताओ, क्योंकि सभी को पता होगा तो उससे भी आपको एक फोर्स मिलेगा, अंदर में मोटिवेशन मिलेगा. हाँ, पीयर प्रेशर भी सबको पता है, मुझे यह छोड़ना चाहिए. और जब जब भी इच्छा हो, इसमें भी कुछ युक्तियां जो काम करती है, कि जब भी आपको इच्छा हो तो यह प्रश्न पूछो कि क्या मैं और आधा घंटा नहीं रुक सकता हूँ. 99% जवाब मिलेगा कोई बात नहीं, आधे घंटे में मृत्यु नहीं होनी है. आधे घंटे के बाद फिर से पूछो कि भी क्या और कोई आधा घंटा नहीं रुक सकता हूँ, या तो और 10 मिनट नहीं रुक सकता हूँ, जितना और 5 मिनट नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि कई बार अर्ज खत्म हो जाती. इस क्षण, हाँ, इस क्षण
1: उसको अगर हम उसी वक्त थॉट बदल दें तो शायद वो,
0: या तो पोस्टपोन भी कर दो. आपने 5 मिनट भी पोस्टपोन कर दिया, हो सकता है दूसरा 1 घंटा भी आप रुक सकते हैं. और जब अब ऐसे 2-3-4 घंटे के बाद आपको लगे कि असंभव है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सिगरेट पीनी ही पड़ेगी, तो तब अपने पास एक भी सिगरेट नहीं रखो. आपने अपने पास रखी तंबाकू, कुछ भी नहीं, तो तुरंत ही आप ले लेंगे. परंतु जब ऐसा इम्पॉसिबल लगे दिन में, तो स्वयं जा करके वह 1 सिगरेट खरीदो. बच्चों को नहीं भेजो, हाँ, सर्वेंट्स को भी नहीं भेजो, नहीं तो वह आपकी आदत और बढ़ेगी. जाओ 1 ही सिगरेट खरीदो, और वह भी दूसरी ब्रांड की, आप जो पीते हैं वही नहीं, उससे कोई दूसरी ब्रांड की सिगरेट 1 खरीदो, क्योंकि उसकी जो टेस्ट है वो उसका अच्छा नहीं होगा, उसके कारण वह आपको कम सेटिस्फेक्शन देगा. और फिर बस आधी ही सिगरेट पियो, पूरी भी जरूरत नहीं है. आधी सिगरेट से भी जो आपको क्रेविंग हो रही है, विड्रॉल्स हो रहे हैं, वह खत्म हो जाएंगे. ऐसा अगर व्यक्ति कोशिश करे तो पहले दिन से ही वह 5% या तो 2% पे भी आ सकता है. और एक बहुत ही जो अच्छे न्यूज है सिगरेट छोड़ने के, कि जैसे ही आप सिगरेट छोड़ते हो 2 घंटे में फायदा होना शुरू हो जाता है. आप पूछेंगे क्या फायदा, तो सबसे पहले तो यह है कि भी आपने सिगरेट छोड़ी तो 3-4 घंटे में ही आपकी सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ती है, तो आप गहरा सांस ले पाते हो ना, तो उसके कारण आपको अच्छा लगता है. और कुछ दिन बीतते हैं तो टेस्ट अच्छा आने लगता है,
1: रियल टेस्ट आने लगता है।
0: खाने का पहले टेस्ट नहीं होता था। ब्रह्मा कुमारीज में हम विशेष रूप से भी व्यसन छोड़ने के लिए कुछ कैंप्स लगाते हैं। तो स्मोकर्स का एक बार कैंप लगा था, तो वहां पर 8 दिन तक सभी आए और फिर वापस गए। वापी से गुजरात में एक स्थान है, वहां से कुछ भाई आए थे कि जो सिगरेट पीते थे, तो एक आध मास के बाद वह सेंटर पर गए और ब्रह्मा कुमारी बहन को कहा कि देखो बहन जी, आपने हमको वह शिविर में वह माउंट आबू में भेजा, उसे चलो ये तो फायदा हुआ है कि हमारी सिगरेट छूट गई, परंतु और एक बहुत बड़ा फायदा हुआ क्या, कि अभी खाना टेस्टी लगने लगा।
1: हमारा टेस्ट वापस,
0: पहले खाने का टेस्ट का ही हमें पता नहीं था। तो ऐसे सचमुच बेनिफिट्स है वो फर्स्ट डे से ही होने शुरू हो जाते हैं।
1: डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, आज जो एक हमने खास उस व्यसन, उस एडिक्शन की बात की थी जिसे हम आज के दौर में एडिक्शन ही नहीं मान रहे, लेकिन अगर हम देखें तो पूरे परिपेक्ष में वही सबसे ज्यादा खतरनाक पर्यावरण के लिए, समाज के लिए और हम इंडिविजुअल्स के लिए भी होता जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: ओम शांति। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, एक्सेप्ट करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सिगरेट को यूं जलाकर फूंकना और फिर कई तरह के आजकल हमारे जो पूरी सोसाइटी में जो कुछ चल रहा है उसे स्वीकारते आ रहे हैं। आज चाहे मैं खुद स्मोक करता हूं या मेरे परिवार में कोई स्मोक कर रहा है, पहली बात, पहला जो स्टेप आज हम लेंगे वो ये कि उसे स्वीकारना बंद कर देंगे, बदलाव की तरफ जरूर बढ़ेंगे। उसके बाद जैसे आज हमारी बातचीत रही कि आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, तो तय करके आज से ही उसे छोड़ देना है और फिर एक ऐसा विल पावर, एक ऐसी जो आत्मशक्ति है उसे पहचान कर, जो हमने खुद की पहचान की बात की है, जो मेडिटेशन की बात करते आ रहे हैं हम, तो आज वक्त आ गया है कि हम उसे खुद टेस्ट करें कि क्या सचमुच हम उस विल पावर को अपना पाए हैं इस पूरे सफर में। अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल कीजिए या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: सन्यासी विद्रोह को स्वतंत्रता आंदोलन के प्राथमिक संघर्ष के रूप में जाना जाता है। लगभग 20 सालों तक चले इस संघर्ष की शुरुआत जमींदारों और अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किसानों और कारीगरों पर किए जा रहे अत्याचारों का बदला लेने के लिए हुई थी। देवी चौधरानी सन्यासी विद्रोह की सूत्रधार थीं। उनका संगठन अंग्रेजी नावों पर हमला करके उनका माल असबाब और अस्त्र शस्त्र लूटता था, जिसे वे अपने अधीन वेतनभोगी बरकंदाजों पर खर्च किया करती थीं। योद्धा दल की नेता होने के नाते वे खुद भी बहुत बड़ी योद्धा थीं। वे ऐसी निर्भीक योद्धा थीं जो अपने नाविक बेड़े में राजरानियों की तरह रहा करती थीं। उनके पास बहादुर बरकंदाजों की एक बड़ी सेना थी। कई सन्यासी योद्धा उनकी वीरता का लोहा मानते थे। संगठन के दो प्रमुख नेता मजनू शाह फकीर और भवानी पाठक की मृत्यु के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंग्रेजों से बराबर लड़ती रहीं। अंग्रेज कभी भी उन्हें पकड़ नहीं सके और वे इतिहास में सन्यासी विद्रोह की एकमात्र सशक्त महिला नेत्री के रूप में अमर हो गईं।
2: अरे छोटू।
3: हाँ भैया।
2: छोटू उस्ताद चाय पिला दो यार।
3: कितनी चाय भैया? 6 ना?
2: हाँ बेटा 6 ले आना। और कल का प्ले कैसा रहा यार?
4: अरे ठीक ही था यार, जोशी जी तो अपना ढर्रा छोड़ ही नहीं रहे, वो ही की वो ही पुरानी घिसी पिटी लाइन पर चल रहे हैं।
5: यार देख, मेरा मानना थोड़ा अलग है इस मुद्दे पर। मैं तो कहूँगा कि ओल्ड इज गोल्ड। हाँ, पर तुमसे जिस बात पे मैं सहमत हूँ वो ये कि आप पुराने महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करें तो उसमें लोक श्रुति का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जैसे अब कल देखना तुम लोग।
3: ये भैया चाय।
2: हाँ बेटा। अच्छा कल किसका है?
4: अरे कल देवी चौधरानी का नाटक है भाई, स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर है पूरा नाटक।
6: देवी चौधरानी? वाह वाह वाह वाह।
4: अरे काका आपको पसंद है? हमें तो मालूम ही नहीं था कि आपको इसमें भी दिलचस्पी होगी।
2: क्यों काका, नाटक देखने आओगे?
6: अरे ऐसे काम के लिए तो मैं 1.5 पाँव पे तैयार रहता हूँ।
2: यार अपने पास कुछ टिकट पड़े थे ना यार, इनको एक दे दे क्या?
4: हाँ हाँ क्यों नहीं यार।
2: वैसे यार ऐसे लोगों को तो जरूर देखने मिलना चाहिए।
4: हाँ हाँ श्योर, लीजिए काका ये रहे आपके टिकट। एक टिकट पे 2 आ सकते हैं, हमारे छोटू को भी ले आना साथ।
7: अच्छा काका चलते हैं। राम राम। राम
6: राम,
7: राम,
6: राम, राम, राम बेटा। राम राम, राम, राम, राम
7: काका। जय राम जी की।
2: अरे काका आ गए आप, पहुँचिए जल्दी पहुँचिए, नाटक शुरू होने वाला है।
6: अच्छा
8: नमस्कार, नाट्य समारोह की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित नाटक देवी चौधरानी।

0: 1947 भारत की आजादी का वर्ष। ये आजादी सैकड़ों वर्षों के संघर्ष और बलिदानों के बाद हमें प्राप्त हुई। आजादी की लड़ाई में उन तमाम क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है जो इतिहास के पन्नों में गुम हो गए हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का बीड़ा जिन लोगों ने उठाया था, उनमें पहली विद्रोही क्रांतिकारी थी देवी चौधरानी। वस्तुतः 1857 से बहुत पहले बंगाल में अकाल के समय जिन किसानों, जुलाहों और सन्यासी फकीरों ने विद्रोह किया था, व्यवस्थित रूप से उसका नेतृत्व करने वालों में एक देवी चौधरानी थी। हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध पहली व्यवस्थित क्रांति का सूत्रपात देवी चौधरानी ने किया। एक बड़े विद्रोही सन्यासी फकीर दल की नेता होने के साथ साथ देवी चौधरानी बहुत बड़ी योद्धा थी जो अपने नाविक बेड़े में राजरानियों की तरह रहती थी।
1: ये कैसा शोर है भवानी?
2: लगता है गांव के लोग आ रहे हैं।
3: माँ को प्रणाम।
4: बचा लो माँ, तुम्हारी शरण चाहिए माँ।
1: अरे क्या हुआ बुरा?
4: कंपनी सरकार के लोगों ने शंकर जुलाहे को इतना मारा कि उसने दम तोड़ दिया है माँ।
1: क्यों क्यों मार डाला?
4: उसने माल जो तैयार नहीं किया।
1: कैसा माल?
3: चौधरानी जी, कंपनी के जुल्म बढ़ते ही जा रहे हैं। हम जिलाहों से सरकार चौथाई दाम में जबरदस्ती माल बनवाती है,
1: और नहीं बनाया तो शंकर जुलाहे की तरह मार दिया जाता है।
5: हाँ देवी, बुनकर ही नहीं किसानों को भी लगान के लिए मजबूर कर रहे हैं।
1: इस भयंकर अकाल में लगान, ये तो अन्याय है। 24 परगनों की जागीर से शुरू हुआ फिरंगियों का राज यहाँ तक पहुँच गया कि हमारे जुलाहे बुनकर किसान भूखो मर रहे।
5: ये सब उस गद्दार मीर जाफर का करा धरा है। बंगाल नवाब सिराजुद्दौला को हटाने के लिए किए गए सौदे का नतीजा है ये।
1: माँ का सौदा करने का हक किसने दिया उसे?
5: बक्सर के युद्ध में अवध नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम और मीर कासिम की हार ने और हौसले बुलंद कर दिए इन अंग्रेजी हुकूमत के।
1: दीवानी हाथ आते ही इन अंग्रेजों ने बंगाल बिहार में लूटपाट मचा रखी है। भूख प्यास से एक तिहाई लोग मर चुके हैं। बंजर हो गई है धरती, पर अब और नहीं, इन्हें रोकना होगा भवानी।
5: पर कैसे?
1: हम रोकेंगे भवानी, हम।
5: हम?
1: संकल्प लेना होगा जन्मभूमि की रक्षा का, विद्रोह करना होगा, सन्यासी फकीर विद्रोह। बस अब यही हमारा कर्म होगा।
5: परंतु धन और हथियार?
1: उसके लिए हम यात्रा करेंगे। यात्रा से देश जागेगा और धन इकट्ठा होगा हथियारों के लिए।
5: आगे सैनिक प्रबंध की जिम्मेदारी हमारी होगी।
1: मुगल सेना के बेरोजगार सैनिक हमें हथियार चलाना सिखाएंगे।
5: मजनू शाह और चिराग अली फकीरों की टोली संभालेंगे और हम सन्यासियों की टुकड़ियों के साथ होंगे।
1: आप आज से ही सन्यासियों की टोली निकालना शुरू करें भवानी। एक टोली में 50 सन्यासी होंगे और हम जाते हैं माँ के बाहुबल को जगाने।
0: और बस निकल पड़ी देवी चौधरानी क्रांति की अलख जगाने। चारों ओर ओम वंदे मातरम का शंखनाद होने लगा।

0: शांत हो जाइए।
1: हे माँ, हम अनाज उगाते हैं फिर भी भूखे हैं। आपने जीवन दान दिया हमें, धन्य हो अन्नदाता।
0: मैं अन्नदाता नहीं, सिर्फ मददगार हूँ। अन्नदाता तो ऊपर वाला है।
2: ऊपर वाले ने ही तो अकाल और भुखमरी दी और ये हालत की हमारी।
0: नहीं नहीं भाई, हम तो अन्याय भुगत रहे, अंग्रेजों का अन्याय।
2: अंग्रेजी सरकार?
0: हाँ, अंग्रेजों और उनके चाटुकार जमींदारों ने हमारी रोटी, जमीन, काम सब छीन लिया है।
1: हम तो रहम की भीख मांग मांग के थक गए माँ।
0: अब भीख नहीं, अधिकार चाहिए, चाहे छीनना ही क्यों न पड़े।
1: अधिकार?
0: हाँ, तुम धरती पुत्र हो, अनाज पैदा करते हो, जिस पर तुम्हारा अधिकार है, हक है तुम्हारा।
2: पर कंपनी सरकार से लड़ना पड़ेगा माँ।
0: यही परीक्षा का समय है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अपनी ताकत से हिला दो अंग्रेजी हुकूमत को।
3: जय हो, जय हो, देवी माँ की जय हो, देवी चौधरी की जय हो।
0: हमें एक साथ मिलकर हेस्टिंग्स के मंसूबों को मिट्टी में मिलाना होगा। धरती माँ की मुक्ति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान हो चुका है। वीरों, अग्निकुंड की समीधा बनो, पूर्ण आहुति में अंग्रेजों का साम्राज्य स्वाहा करो। वंदे मातरम।
4: देवी चौधरानी ने लोगों को नैतिक विद्रोह की प्रेरणा दी और उनके आह्वान पर लोग उठ खड़े हुए। किसान, जुलाहे, कारीगर।

0: this, you dirty Indian farmers?
1: बहुत भूखा मारा है हमको, नहीं छोड़ेंगे तुझे।
0: तुमको देख लेगा, you don't know what you are doing. I'll report the high command.
1: हमारी रिपोर्ट करेगा? ये ले।
0: Oh no! Oh, help! Help!
2: जल्दी कीजिए सरकार, सरकार जल्दी कीजिए, सरकार पीछे के दरवाजे से निकल लीजिए, नाव तैयार है।
3: भाग गए चूहे, सामने दो दो हाथ क्या हुए तो भाग गए।

0: जितना भी धन है आपस में बांट लो, सब गरीब किसानों का ही है। भवानी
1: जी देवी,
0: आज से ये कोठी क्रांतिकारियों के सामरिक ठिकानों का केंद्र होगी।
1: देवी चौधरानी की जय।
0: ये तो शुरुआत है स्वाधीनता का शगुन, हम अपना राज लेकर रहेंगे। पहले रंगपुर, दिनाजपुर और मैमनपुर को जीतना है। हमारा निशाना अंग्रेजों की कोठियां और जमींदारों की कचहरियां होंगी, लेकिन ध्यान रहे आम जनता परेशान न हो।
1: अब क्रांतिकारियों ने चौतरफे हमले शुरू कर दिए। फकीर मजनू शाह के दल ने पहले जमींदारों की कचहरियों को लूटा, फिर श्रृंखलाबद्ध अभियानों में अपनी जीत के साथ कैप्टन एडवर्ड्स और कैप्टन रॉबर्टसन को मार डाला। भीषण युद्ध में 29 दिसंबर 1786 में मजनू शाह शहीद हुए। फकीरों की कमान संभाली मूसा शाह ने। इधर देवी चौधरानी के मोर्चे आक्रामक होते गए। गवर्नर हेस्टिंग्स तिलमिला गया, उसकी रातों की नींद उड़ गई थी।

0: What is this going on, Captain Thomas? You know what it means? Attack on Taka Cottage? Who are the people involved in this?
1: Sir, actually...
2: Ram Ram, Sarkar. Ram Ram.
0: Who is he?
1: He's our spy. He's come with some news, sir.
2: आपका गुलाम सरकार, चारों ओर सन्यासी फकीरों का बोलबाला है, लोग उनकी पूजा करने लगे हैं।
1: Sir, he's talking about Lady Deckard, Devi Chaudhrani, sir, and her team sannyasi fakir.
2: जी सरकार, ये लोग लूट का सामान गरीबों में बांटते हैं, लोग चौधरानी जी को देवी मानते हैं, देवी और पूजने लगे हैं।
0: देवी?
1: What's that? It means goddess, sir.
2: वो खुले हाथों से दान करती है सरकार, लोगों की देवी है वो देवी।
0: No, what goddess? She is a decoy, Daku. समझे तुम? Where does she live? कहाँ रहती है Daku?
2: जी पानी में, नाविक बेड़ों में डेरा होता है उनका, साथ में 1000 से अधिक बरकंदाज भी हैं, हर तरफ जासूस फैले हैं उनके, और उनकी जासूसी करना बहुत मुश्किल काम है सरकार।
0: Shut up, काम के बाद बोलो।
2: सरकार, सुना है रंगपुर में डेरा डाला है क्रांतिकारियों ने।
0: तुम क्या रामा? कैप्टन थॉमस?
1: Yes, sir.
0: Next plan. Attack on रंगपुर।
3: रंगपुर क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र था। कैप्टन थॉमस ने बहुत बड़ी सेना के साथ श्यामगंज मैदान पर हमला कर दिया, पर देवी को खबर लग चुकी थी

0: उन्होंने निहायत ही सूझबूझ के साथ काम किया। अंग्रेजों के पास तोपें थी। देवी ने अपने लोगों को पीछे हटा लिया और बाद में छापामार युद्ध करने की नीति अपनाई। इधर अंग्रेज गलतफहमी में खुश थे कि देवी और उसके साथी भाग गए। जश्न मनाया गया, माहौल था जश्न का। और तभी कैप्टन थॉमस और उसके साथियों को घेर लिया गया।
1: तुम घिर चुके हो थॉमस, तुम्हारा गोला बारूद हथियार सब हमारे कब्जे में है।
2: What? सिपाहियों, fire!
3: हम गोली नहीं चलाएंगे सरकार, पूरे गांव के किसान मर जाएंगे।
2: तो मरने दो। I said fire!
1: भवानी, खत्म कर दो इसे, चीर के रख दो।
0: देवी चौधरानी के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की शक्ति भी बढ़ी और हमले भी। लोगों का आत्मविश्वास लौटा। इधर अगला नाविक हमला हुआ। सेनापति थे भवानी पाठक।
4: इधर से लाओ डाल, जल्दी करो, जल्दी करो। बुरा तो पीछे से आने वाला। पानी की आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बहुत ही चुपके से कूदना। मैं सामना करूंगा, मेरे इशारे का ध्यान रखना। जैसे ही मैं इशारा करूं, तुम लोग उन अंग्रेजों पर टूट पड़ना। कूद पड़ो।
5: वेलकम भवानी, आम जानता था पानी का खिलाड़ी पानी में फंसेगा। तुमको लो जाका तुझ गोला, तुमको आम पानी में मारेगा।
0: ओ वंदे मातरम।

भवानी पाठक और क्रांतिकारी साथियों की शहादत ने देवी को झकझोर दिया। वो विजय अभियान पर और जोर शोर से निकल पड़ी।

साथियों, मजनू शाह और भवानी का बलिदान अधिकार मांग रहा है। अब होगा भीषण संग्राम, अंग्रेजों का सर्वनाश। ओम वंदे।

0: देवी चौधरानी ने रंगपुर, दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और पौंड्रवर्धन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हर तरफ देवी की विजय के झंडे लहरा उठे। उनके आक्रामक हमलों से अंग्रेजी हुकूमत कांप उठी। देवी का ठिकाना जानने के लिए लोगों को बंदी बनाया गया, फांसी पर चढ़ाया, पर किसी ने जबान नहीं खोली। कंपनी सरकार बौखला गई।
1: आओ देवी, देवी, देवी, पकड़ो से, वी वांट अ डेड और अलाइव।
2: सर, कोई पता नहीं, वी कांट फाइंड हर, वो बार बार भाग जाता आए, वेयर कुछ पता नहीं।
1: कमांड, बैड रैबिट, हम रूल काटे हैं यहाँ, और एक लेडी को पकड़ नहीं सकते।
0: हर हमले के बाद देवी जैसे गायब हो जाती। सारी कोशिशों के बावजूद अंग्रेज हताश थे। देवी चौधरानी के हमलों ने कंपनी सरकार को हिला कर रख दिया। ये सिलसिला लगभग 20 वर्षों तक जारी रहा और क्रांति की अलख जगाने के बाद एक दिन देवी ने फैसला किया।

0: माँ जाग उठी है तुम्हारी संतान अपने अधिकार के लिए। मैंने जो व्रत दिया था वो पूरा हो रहा है। देखो माँ, देखो, जगह जगह तुम्हें स्वतंत्र कराने के लिए तुम्हारे सेवक वंदे मातरम का जय घोष कर रहे हैं। मैं अब बूढ़ी हुई माँ, मुझे अब अरण्य में जाने दो ताकि शेष जीवन का समय तुम्हारी आराधना में बिताऊं।
1: ना माना उठाए जाबे मामा के छेड़े, ये धोर भी आमा के, ना जाओ माँ, ना जाओ।
0: तुम सफल हो, शक्तिमान हो, अब तुम ही तो देवी हो। तुम सब आगे आओ, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारी शक्ति में, तुम्हारे हर आक्रमण में, तुम अपने आप में मुझे ही पाओगी।
2: माँ की जय हो, हमें छोड़कर मत जाओ, ना जाओ माँ।
0: तुम ही हो मजनू शाह, तुम ही भवानी, धरती माँ तुम्हें पुकार रही है। ओम वंदे मातरम, ओम वंदे मातरम, ओम वंदे मातरम।
3: लगभग 20 वर्षों तक चलते रहे आजादी की लड़ाई के इस पहले संग्राम ने सन्यासी विद्रोह की एकमात्र सशक्त महिला नेता के रूप में देवी चौधरानी का नाम अमर है।

निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to

0: Wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris.
1: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister.
2: Om Shanti.
1: आपका being bliss में स्वागत.
2: Thank you so much.
1: Last time हम बात कर रहे थे कि कैसे अपनी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है और हमें कैसे कंजर्व करना है अपनी एनर्जी. हम सोते भी हैं तो दिमाग चलता रहता है, थॉट्स चलती रहती हैं. जैसे आपने नलके का बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था, जैसे अपने जैसे बॉम्बे में तो टांकियों में पानी आता है, घर के ऊपर छोटी छोटी टांकी होती है.
2: right.
1: फ्लैट्स में तो नल खुला रह जाए तो सारे की सारी टांकी खाली हो जाती है. उसी तरह हमारी भी एनर्जी विद और विदाउट आवर नॉलेज.
2: Can't say with or without our knowledge. It's with or without awareness.
1: अच्छा.
2: You know, if I'm thinking, एक घंटा बीत गया. And ऐसे ही सोच रहे हैं, सोचते जा रहे. Aware ही नहीं है कि क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, and most important कैसा सोच रहे हैं. Quality.
1: उस समय ये चीज को कौन कंट्रोल कर रहा है? मन.
2: हाँ, मन. आपने कहा जब हम सोते हैं तो दिमाग चलता है ज्यादा, दिमाग नहीं. मन. हमने क्या किया, मन और दिमाग में थोड़ा सा, मतलब कहीं भी किसी भी दोनों को यूज कर लिया. दिमाग थॉट्स नहीं क्रिएट करता है.
1: हाँ, लेकिन कैजुअली जब बात करते, मेरा दिल कहता है, मन कहता है.
2: राइट.
1: आपने कहा था थॉट्स के बारे में अवेयरनेस, मैंने अवेयरनेस की तो अवेयर करते करते करते वो स्लिप हो जाता है.
2: कोई बात नहीं, जर्नी.
1: कभी याद आता है कि यार मैं तो अवेयरनेस करने बैठा था और कहाँ पहुंच गया.
2: इट इज लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल कि जैसे एक मदर है, छोटा सा बच्चा है, लेकिन उस माँ ने घर का भी पूरा काम करना है और बच्चे को भी संभालना है. उसके पास कोई हेल्प नहीं है, घर में और कोई नहीं है, ध्यान रखने के लिए भी नहीं है, घर का काम करने के लिए भी कोई नहीं है. ऐसे होगा ना घरों में. अब ये माँ क्या करेगी, बच्चे को उस क्रेडल में पालने में डाल देगी, पूरे घर में जाएगी काम करते हुए, सारे काम करेगी घर के, लेकिन सब काम करते हुए उसकी अटेंशन किस पे होगी?
1: बच्चे के रोने पे या आवाज पे.
2: मतलब एक नजर वहां, नजर मतलब मन की नजर, और दूसरा बाकी सारा ध्यान काम पर. लेकिन प्रायोरिटी में कौन ऊपर होगा? बच्चा. फर्स्ट प्रायोरिटी इज टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड. सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकिंग केयर ऑफ द होल हाउस. दिस इज वेरी क्लियर फॉर द मदर. वो ये नहीं कहेगी बच्चे का ध्यान रखो तो घर निग्लेक्ट कर दूंगी, घर का काम करो तो बच्चे का मैं ध्यान नहीं रख सकती. नो, शी हैज टू डू बोथ द थिंग्स, दैट्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रायोरिटी बहुत क्लियर है कि फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा, सेकेंड घर का काम. कैन शी डू इट?
1: She can. और आपकी बात सुनते सुनते पता है मेरा एक्टर का इमेजिनेशन क्या चल रहा है. मैं विजुलाइज कर रहा था एक सीन, एक गांव की औरत हाथ में गुद बच्चा, बच्चे को कुछ खिला भी रही है और सर पे मटका पानी का भी है.
2: ब्यूटिफुल.
1: और मटका भी देख रही है.
2: यस. yes.
1: बच्चे को कुछ खिला पिला बात भी कर रही है.
2: ब्यूटिफुल.
1: और खुद भी चल रही है, सारा कुछ बैलेंस भी कर रही है.
2: राइट.
1: और ये भी देख रही है कि सड़क
2: बात भी कर सकती है, जो उसके साथ भी और ऐसे लोग चल रहे हैं.
1: हाँ, ये भी साथ देख रही है कि गाड़ी भी कोई आए आगे से, या बैलगाड़ी या साइकिल कोई टकरा ना जाए, सारा कुछ अवेयरनेस है उसका,
2: सारा कुछ करते हुए. लेकिन सब चीज में उसकी प्रायोरिटी पे नंबर वन कौन है?
1: नंबर वन बच्चा.
2: बच्चा. सपोज मटका है सर पे,
1: भले गिर जाए, बच्चे ने गिर
2: क्लियर
1: समझो.
2: दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ.
1: समझो आगे खड्डा आ जाए.
2: yes.
1: वो बच्चा संभालेगी, मटका गिरने देगी.
2: क्लियर, कम्प्लीटली क्लियर. ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट प्रायोरिटी बहुत क्लियर है. नंबर वन बच्चे का ध्यान, सेकेंड सारी चीजों का ध्यान अपना. अब वो कर सकती है ना, ये कर सकते हैं. हम में से किसी को भी ये करना पड़े तो हम कर सकते हैं.
1: मन को बच्चा बना दिया, तब से उसको दुश्मन बना के रखा था. इतने सारे एपिसोड हो गए और मैं कोसता था मन को, मेरा मन नहीं चुप होता है, मेरा मन चलता रहता है, मेरा मन रात को भी चलता है, दिन को भी. अजी आपसे बात करते करते भी कितना प्यारा वर्ड आ गया ना, बच्चे
2: बच्चा है ना,
1: मन मेरा बच्चा.
2: हमने सुनते मन एक बच्चा है. अब इसको क्या करना है, सारा दिन सब काम करने हैं, सब काम, परिवार का ध्यान, ऑफिस का काम, सोशल वर्क, फ्रेंड्स के साथ घूमना, सब कुछ करना है, हॉबीज, जिम, डू एवरीथिंग, गो एवरीवेयर, सब करते हुए एक नजर बच्चे पर कर सकते हैं। एंड उसमें भी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर वन कौन? बच्चा, द चाइल्ड, मतलब मेरा मन। सब कुछ करना है एक नजर, यहाँ सब ठीक है, थॉट्स कैसे चल रहे हैं, इसने रोना तो नहीं शुरू किया, रोना मतलब थोड़ा भी, ऐसा क्यों, ऐसा क्या, क्यों हुआ मेरे साथ ये। अब माँ के लिए बच्चा इधर है, काम वो सारा कर रही है, बहुत काम है उसके पास करने के लिए, लेकिन अगर बच्चा रोने लगे तो माँ क्या करेगी? जो काम वो कर रही है वहां से हटकर एक मिनट के लिए उस बच्चे के पास जाएगी, चुप कराएगी, वापस काम पर। अगर उस माँ ने उस समय वो एक मिनट नहीं निकाला तो बच्चा रोता रहेगा। सपोज माँ कहे मेरे पास टाइम नहीं है बच्चे की तरफ देखने के लिए, मैं काम करने में बहुत बिजी हूँ, बच्चा रोना बंद नहीं करेगा, रोता जाएगा, रोता जाएगा, रोता जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ये काम कर रहे हैं। जब तक ये माँ काम से एक मिनट के लिए ना हटे और उस बच्चे को बस एक मिनट ऐसे कर दे प्यार से जाके, बच्चा चुप हो जाएगा। ना तो चॉइस है कि वो एक मिनट कब निकालना है, जैसे ही रोने लगे उसी टाइम निकाल दो, क्यों एक घंटा वेट करने के बाद वो एक मिनट निकालना है? कितना रो देगा बच्चा उतनी देर में, उसकी कितनी एनर्जी गई? जैसे ही मन थोड़ा सा भी रोने लगे, ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ऐसे विड्रॉ, दिस इज विड्रॉल। तो जैसे एक माँ बच्चे पर ध्यान रखते हुए सारा काम कर सकती है, अब हम भी अपने जीवन में सारा दिन में सारा काम करेंगे, सारी जिम्मेवारियां उठाएंगे, लेकिन एक नजर बच्चे पर। और अगर ये बच्चा रोने लगे, मतलब ये इधर उधर की ऐसी दर्द वाली थॉट्स क्रिएट करने लगे, उथल पुथल या हलचल थोड़ी सी होनी शुरू हो जाए, तो हम जो कुछ कर रहे हैं उससे एक मिनट के लिए विड्रॉ कर लें, और विड्रॉ करके वो जो थॉट्स चल रहे हैं उनको रिजॉल्व कर दें, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, ऐसे नहीं, आंसर कर दें इन क्वेश्चंस को, टेक आउट दैट लिटिल वन मिनट ऑफ टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी से नो दिस इज यू नो इट डजंट साउंड वेरी, हाउ आर यू सपोज टू डू दिस, दिस वर्क्स। आपका मन रोने लगा है, उसने कुछ कुछ कुछ बोलना शुरू किया है विच इज क्रिएटिंग डिसकम्फर्ट, डोंट कीप रिमेनिंग बिजी डूइंग वर्क आउटसाइड एंड सेइंग आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, थिंकिंग दैट दिस क्राइंग इज नेचुरल, इसका ये इस तरह से अंदर रोना तो नेचुरल है। जितनी देर रोता रहेगा उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। टेक आउट दैट वन मिनट, अपने मन में जो बातें चल रही हैं उसको आंसर कर दो, और कोई भी आंसर अगर नहीं मिले, सपोज कोई ऐसी प्रॉब्लम है, चिंता है, उसका अभी आंसर नहीं है, तो कम से कम उस मन को ये इंस्ट्रक्शन तो दो कि अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, हम दो घंटे के बाद इसके बारे में सोचे।
1: ये कितना इजी कर दिया आपने, जब से आपने इसको बच्चा बोला ना, मेरा ध्यान ऐसे ही जा रहा है कि जैसे मैं अपने बच्चे को कैसे पालता हूँ।
2: yes.
1: कि बेटा ये गलत काम है, नहीं करना, और छोटा होता नो नो नो बेटा हाथ जल जाएगा, दिए के पास नहीं जाना, पूजा करो, हाँ ये आरती है, नमस्ते करना है, उसमें आग में हाथ नहीं लगाना। बच्चा और बड़ा हुआ तो बेटे स्कूल में ये सब नहीं करना, और बड़ा हुआ मतलब ऑल द टाइम, जैसे बच्चे की तरह कितना सुंदर है। और यही कल
2: हाँ।
1: मैं इसको डांट रहा था, मेरे मन को अपने आप को कोस रहा था, बहुत अपने आप को गिराया। मैंने बोला घटिया घटिया बातें तो याद करता, तेरे साथ इतनी अच्छी बातें वो नहीं देखता है, इसकी भी बुरा सोचता, तो कितना ये है तो कितना वो है, कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे बच्चा बोला ना, एक रिलेशन बन गया उससे मन का।
2: पर ये जो आपने कहा ना, प्यार से करना बेटर लग रहा है, कोसना, दबाना, कंट्रोल करना, सप्रेस करना, वो मेथड वर्क नहीं करेगा।
1: ये बच्चों से भी करते हैं
2: ये हम सबके साथ, लेकिन क्योंकि जब हम लोगों के साथ भी डील कर रहे हैं तो हम किसके साथ डील कर रहे हैं? किसी के मन के साथ डील कर रहे हैं ना, हम किसी के मन के साथ ही तो डील कर रहे हैं, कानों के साथ, आंखों के साथ थोड़ी डील कर रहे हैं। हम हरेक के मन के साथ डील कर रहे हैं, और हरेक का मन, मेरा मन भी और मेरे आसपास जितने हैं सभी का मन आज थोड़ा सा चंचल है। चंचल मींस वो बच्चा जिसको कभी सिखाया ही नहीं कि सही क्या, गलत क्या, कब उठना, कब बैठना। अब एक ऐसा बच्चा देखो जिसकी पेरेंटिंग में उसको सिखाया ना गया हो कि कैसे बोलना है, कैसे चलना है, सिखाया नहीं। ऐसे ही हमने अपने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी सिखाया ही नहीं क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, कब सोचना है, कितना सोचना है, किस बारे में सोचना है, मेरे मन को किसने सिखाया?
1: खोया हुआ बच्चा था सिस्टर, मालूम ही नहीं था ना अभी तक कि वो मेरा बच्चा है।
2: तो सिखाया नहीं, तो अब जब किसी बच्चे को कुछ ना सिखाया जाए तो बच्चे की गलती बोलेंगे?
1: नहीं
2: नहीं, तो कहते देखो इसके पेरेंट्स ने इसको कुछ नहीं सिखाया।
1: चलिए ये एपिसोड देख के आपका अब बात करके सिखाना शुरू करते हैं।
2: तो अब हम जब बोलते हैं ना मन बहुत चंचल है, मन मेरा है, मेरा बच्चा है, इवन अगर डिसिप्लिन्ड नहीं है, चंचल है, अभी मेरा कहना नहीं मान रहा है, इवन अगर ये है, लेकिन उसको प्यार से परिवर्तन करना और एक सही तरह से जीने का तरीका सिखाना, ये मेरा मन है। और जितना मैं अपने मन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जितना मैं अपने मन को सही तरह से ये पेरेंटिंग करके कर लूंगा, मुझे विधि आ जाएगी कि सबके मन के साथ कैसे करना है। क्योंकि ये मन हर एक के पास सेम ही है, सेम है, मन है सबका।
1: एक नया तरीका मिल गया, मतलब दूसरे के दूसरे को भी उसके मन को बच्चा देखो।
2: हाँ।
1: ये इसका बच्चा है, ये मेरा बच्चा है।
2: और बच्चा ही नहीं, सिर्फ एक चंचल बच्चा है जो उसका भी आजकल कहना नहीं मान रहा है।
1: हाउ स्वीट।
2: तो यू नो इट्स लाइक अगर आप किसी और पड़ोसी के पास जाओ और कहो आपका बच्चा देखो कितना तंग करता है, और वो पेरेंट बोले क्या करूं मेरा बच्चा तो मेरा कहना ही नहीं मानता है, आप ही मेरे बच्चे को संभाल लो, संभाल सकते हो। तो आज हमारे आसपास जितने लोग हैं ना, उनका अपना जो बच्चा है ना, वो उनके अपने ही कंट्रोल में नहीं है। तो लेट्स नॉट बी वेरी हार्श विद देम, लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उनका मन अभी उतना संयम में नहीं चल, संयम इन द सेंस अपनी चॉइस से नहीं चल रहा है कि जो सोचे जितना सोचे। Let's not be harsh with people. जो आपने कहा कंट्रोल अगर करा, सप्रेस किया,
1: कोसा,
2: it didn't work ना? प्यार वाला मेथड वर्क करेगा ना, तो वो ही मेथड मेरे मन के साथ भी वर्क करेगा। एंड इम्पोर्टेंट है जो मेथड मेरे मन के साथ वर्क करेगा वो सबके मन के साथ वर्क करेगा।
1: आपका मतलब ये है कि जो एक बच्चे के साथ मन करेगा सब बच्चों के
2: साथ, फाइनली सब बच्चे हैं और सब बच्चों को सेम चीज अच्छी लगती है,
1: इसलिए प्यारी प्यारी टीचर सब बच्चों को अच्छी लगती है।
2: यस एब्सोल्युटली। और वो जो टीचर प्यार करती है, जो पेरेंट प्यार करता है, बच्चा उनका कहना मानना चाहता है, मानना पड़ता है नहीं। एक है मुझे इस टीचर का कहना मानना पड़ता है, एक है मुझे इस टीचर का कहना मानना अच्छा लगता है, क्योंकि ये टीचर मेरे फायदे के लिए बोल रही है, बट इट्स कमिंग विद द राइट एनर्जी।
1: मानकर खुश हूँ,
2: अच्छा लगता है, कंफर्ट फीलिंग। क्यों? दोनों टीचर बात वो ही कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी कौन सी दे रहे हैं करने के टाइम? एक है नेगेटिव एनर्जी, एक है प्यार वाली एनर्जी। जो एनर्जी कंफर्टेबल होगी वो बात अच्छी लगेगी। तो अब पहले इम्पोर्टेंट प्यार से करना है वो तो ठीक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि दोनों काम कर लेंगे, कि बच्चे का ध्यान रखते हुए अपना जीवन संभालेंगे पूरा, बाकी जिम्मेवारियां संभालेंगे। एंड उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी कौन? आज अगर हम किसी से भी पूछें व्हाट इज योर प्रायोरिटी इन लाइफ, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ, कहेंगे वर्क। अच्छा, सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली, थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी माई सेल्फ। तो जो लिस्ट है,
1: जैसे उस स्कूल में 5 साल की बच्ची ने बोला था ना,
2: yes.
1: कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो,
2: व्हेन यू ग्रो अप, शी सेड हैप्पी,
1: शी सेड मैं हैप्पी बनना चाहती हूँ,
2: राइट।
1: तो बोले तुम्हें सवाल ही समझ में नहीं आया,
2: समझ में नहीं आया। तो आज हम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट से मिले दिल्ली में, एंड ही वर्क्स फॉर 14-15 आवर्स इन सम रिसर्च लैब एट अ वेरी हाई पोजिशन इन दिल्ली, एंड एक्चुअली वो काउंसलिंग करते हैं और लोगों की। तो मेरे को लेकिन उनके चेहरे पर लगा कि थोड़ा सा बहुत खुशी नहीं है, यू नो इट वॉज मोर टूवर्ड्स लिटिल डिप्रेशन साइड। आई सेड आप थोड़ा टाइम निकालो ऑफिस आते जाते समय, थोड़ी देर आप मेडिटेशन सेंटर पे आओ, 10 मिनट बैठ कर फिर आप ऑफिस आ जाओ। फर्स्ट इमीडिएट आंसर, टाइम नहीं है। 10 मिनट्स टाइम सिर्फ, कभी भी मॉर्निंग इवनिंग। ही सेड 14 आवर्स आई स्पेंड हियर इन दिस रिसर्च लैब, जो थोड़े से घंटे बचे वो परिवार के लिए। इन सब चीजों में अपने लिए टाइम निकालना नॉट पॉसिबल। ड्राइविंग टाइम दिल्ली में 2 आवर्स, 1 आवर ईच वे, इस सब में सिस्टर अपने लिए नहीं टाइम निकल सकता है। तो प्रायोरिटी लिस्ट क्या बन गई? वर्क, फैमिली एंड सेल्फ। एंड क्योंकि वर्क एंड फैमिली इतना टाइम ले रही है कि हम सेल्फ तक तो पहुंचे ही नहीं, ये प्रायोरिटी लिस्ट ओनली वॉज नॉट राइट। अब वर्क पे टेंशन है, तनाव है, तो जब सेकेंड फेज पर आए फैमिली पर, तो सारा हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। शाम को हम अपना सारा तनाव घर पे लेकर आ गए, अपना ध्यान रखने का टाइम नहीं था। स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है हमें, इस लिस्ट को एक तब अपसाइड डाउन, सेल्फ, फैमिली एंड देन वर्क।
1: जब सेल्फ से स्टार्ट हुआ तो बिगनिंग
2: बिल्कुल
1: सेल्फी से तो है, हम
2: एवरीथिंग एवरी, एंड इसमें ये नहीं है कि सेल्फ को 14 घंटे देने हैं, फिर इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट प्रायोरिटी एंड अटेंशन।
1: अगर ये सब गाड़ी है मेरी तो सेल्फ स्टार्टर को सेल्फ को तो कुछ दो ध्यान,
2: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये अगर गाड़ी है लेकिन ड्राइवर यहाँ है, ड्राइवर पहले स्टार्ट करेगा हर चीज को, फिर गाड़ी उस तरह से चलेगी, फिर यात्रा उस हिसाब से होगी सारी। दिस इज वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट हैज टू बी वेरी क्लियर। अगर मैं ठीक, मैं इन कंट्रोल, फिर मेरे परिवार में रिश्ते अच्छे ऑटोमेटिकली,
1: कहते हैं सेल्फ कंट्रोल,
2: सेल्फ कंट्रोल। अब अगर परिवार में रिश्ते अच्छे, फिर जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो मेरी पूरी एनर्जी लेवल कैसी होगी। अब फिर जब मैं घर से ऑफिस इस स्थिति में जाऊंगा तो मेरा ऑफिस में काम करने का तरीका भी एक डिफरेंट होगा। शाम को घर आऊंगा तो परिवार को भी अच्छी एनर्जी दूंगा। दिस होल बिकम्स अ साइकिल। अब जैसे हमने देखा, सपोज बच्चा 1 मिनट के लिए रोया तो विदड्रॉ फ्रॉम योर वर्क, फर्स्ट टेक केयर ऑफ द माइंड। दिस इज प्रायोरिटी लिस्ट, कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, आज लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड यूज करते हैं, मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी माई सेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द कितना सुंदर है, रिस्पॉन्स अबिलिटी,
1: ओहो
2: ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
1: हाउ टू रिस्पॉन्स,
2: हाउ टू रिस्पॉन्ड राइट वे इज द अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन द राइट वे इज रिस्पॉन्सिबिलिटी।
1: ब्यूटिफुल।
2: इसके बाद हमारी बाकी बातें आती हैं सारे। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, द अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द राइट वे इन एवरी सिचुएशन, दिस इज माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
1: ये अवेयरनेस ही आएगा ना, जो हम बात शुरू से कर रहे थे, छोटे बच्चा, उसका बच्चा रो रहा है या नहीं, सर पे मटका, सारी चीज फाइनली आती अवेयरनेस।
2: अवेयरनेस में भी, अब अवेयरनेस है लेकिन अब प्रायोरिटी लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि जैसे आज लोग कहते हैं ना टाइम नहीं है, तो कौन सिखाते हैं हमें, प्रायोरिटी लिस्ट बना लो। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है ना, प्रायोरिटी लिस्ट बना लो, प्रायोरिटी के वाइज करते जाओ। जीवन की प्रायोरिटी लिस्ट में स्व की स्थिति को नंबर 1 पे रख दो। अब हम जैसे सेंटर पर है या बड़ा हेडक्वार्टर है, कैंपस है, बड़े इवेंट्स है, कई बार लोग कहते हैं वो आश्रम में इनको क्या पता है, इनके पास क्या काम है करने के लिए। जितनी एक्टिविटी सेंटर पे होती है या हेडक्वार्टर पे होती है, वो किसी ऑफिस में नहीं होती।
1: कौन इसे आश्रम कहता है, मैं देख के आया ना, वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, नॉट ओनली वन यूनिवर्सिटी, कई सारी यूनिवर्सिटीज मिलाकर है ये लाखों।
2: राइट, अब आप देखो, मैंने जैसे देखा है बाहर,
1: चेन ऑफ स्कूल्स,
2: हाँ बाहर आप देखो कि एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी हो ना तो 6 महीना तैयारी चलती है, इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी है। हमारे पास माउंट आबू में हर वीक एक कॉन्फ्रेंस है, Every week 4 days is a conference, जिसमें लगभग 1,000, कई बार 5,000, और जो दूसरी annual retreats होती है तो 20,000. 4 days वो रहते हैं, फिर 3 days मिलते हैं, उनका जाना, साफ सफाई सब होना, and next group का आना, वो 3 days, and फिर next 4 days वो conference. अब ये चल रहा है event after event after event. छोटी बात नहीं है, ये छोटा काम नहीं है, बहुत काम है। लेकिन इसमें हमें जो मेडिटेशन क्या सिखाती है, सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, और सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक करना है। ऐसे भी नहीं कि ऑफिस 10 बजे पहुंचना है, हमारी दिनचर्या शुरू नहीं, सुबह 4 बजे काम खत्म होगा, 10-10:30 बजे सब कुछ करना है, लेकिन सब करते हुए अटेंशन स्वस्थिति। ये नहीं होना चाहिए कि प्रोग्राम करने में आप इतने वो हो जाओ, ऑक्यूपाई हो जाओ कि आप गुस्सा भी कर दो, ईगो क्लैशेस भी आपके होने लगे, प्रॉब्लम भी आ जाए, तो उस प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं है। परमात्मा एक बहुत सुंदर लाइन हमें देते हैं, जो सेवा करने से आपकी स्थिति डिस्टर्ब हो गई, वो सेवा करने का कोई फायदा नहीं है। पहले स्थिति पर ध्यान रखते हुए सेवा करे तो सफलता है, क्योंकि वाइब्रेशन, यू नो टुडे व्हेन वी से सक्सेस ऑफ एनी इवेंट एनी प्रोग्राम, हम कहते हैं स्टेज अच्छा था, हॉल अच्छा था, लोग टाइम पर आए, डेकोरेशन अच्छी थी, प्रोग्राम अच्छा पूरा हो गया, ऑडियंस बहुत अच्छी थी। परमात्मा प्रायोरिटी लिस्ट को बहुत क्लियर करता है, स्थिति अच्छी थी सबकी, वाइब्रेशन अच्छी क्रिएट हुई, तब सफलता है।
1: थोड़े दिन पहले जब मैं माउंट आबू गया था देखने के लिए, वहां पर एक लड़का मिला, उसने मुझे सब कुछ घुमाया फिराया, सब जैसे मिठाई खिलाई ये किया, तो मुझे उसने एक किस्सा सुनाया, कहने लगा कि दादी ने मुझे कहा कि हमारे गेस्ट आए हैं लंदन से, इनको घुमाओ फिर और पूरा कुछ दिखाओ। तो बड़ी खुशी से मतलब दादी के पास गया, देखिए मैंने उनको यहाँ घुमाया, ये किया, वो किया, लंच खिलाए, इनको जाते जाते मिठाई पैक करके दी, आप प्लीज पूछ लीजिए उनको, बहुत खुश होके गए, मैं तो एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट तक छोड़ आया उनको। अच्छा, तो दादी का जवाब क्या था मालूम है? मैंने उनको ये नहीं कहा कि तू उनको खुश करो, तुम खुश होकर उनको ये सब दिखाओ।
2: हाउ ब्यूटीफुल,
1: तुम खुश होकर, खुश रहते हुए, खुशी की स्थिति में ये सेवा करो।
2: दिस इज इट एंड दिस इज द मंत्रा ऑफ लाइफ। सब कुछ करो, सारा दिन करो और सारी जिम्मेवारियां उठाओ, लेकिन खुश रहकर करो, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट स्थिति, फिर सारा काम। अब अगर कहीं भी अगर अंदर डिस्टर्बेंस हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग दैट इज हैपनिंग आउटसाइड, आई विल फर्स्ट विदड्रॉ, टेक केयर ऑफ दिस एंड देन डू एवरीथिंग। ये सक्सेस है। आज अगर हम पूछे व्हाट इज सक्सेस, आप सफल हैं जीवन में, Do you count yourself as successful? Then successful is the one जिसकी मन की स्थिति शक्तिशाली, खुश और शांत है,
1: stable,
2: strong, powerful, जिसका अपना मन control में नहीं, उसको successful कैसे कहेंगे? भले बहुत बड़ी buildings है, लाखों लोग काम कर रहे हैं, 5 गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, 4 देशों में बंगले हैं, मन अपने कंट्रोल में नहीं है और हम कहे आई एम वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ। सफलता की डेफिनेशन चेक करनी है एंड विच दिस मीन्स कि ये सब कुछ अक्वायर करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट पर अपने को नहीं रखा था, सबसे पहले मन की स्थिति को नहीं रखा। सारा दिन में हम हर मिनट में 25 से 30 थॉट्स क्रिएट करते हैं, 25 टू 30 थॉट्स इन 1 मिनट, विच मीन्स माई
1: 25 टू 30 थॉट्स
2: इन 1 मिनट एवरेज, मीन्स वेन वी आर इन अ नॉर्मल स्टेट ऑफ
1: माइंड। 70 भी सोच सकते हैं,
2: अबाउट अप टू 45-50। अगर बहुत टेंशन है ना, एंग्जाइटी है किसी बात की, तो फिर इट कैन गो अप टू 45-50 थॉट्स। बियॉन्ड दैट जाएगा तो इट्स अ नर्वस ब्रेकडाउन, जो भी हो जाता है।
1: 3600 थॉट्स,
2: 3600
1: 60 into,
2: अच्छा, पर एक दिन में
1: मैं 1 घंटा सोचता था, 24 घंटे तो पता नहीं कितने
2: एक दिन में, बिकॉज काउंटिंग के 6-7 घंटे हम सो रहे हैं, जिसके अंदर स्पीड बंद नहीं होगी लेकिन कम हो जाएगी,
1: शायद
2: कम हो जाएगी कंपेयर टू दिस 25 to 30, बिकॉज 25 to 30 थॉट्स पर मिनट इज इन द अवेक स्टेज। ये जो अवेक वेकिंग स्टेज है, 40 से ऊपर हो जाएगा व्हेन वी आर इन द टेंशन स्टेज, एंग्जायटी। सो रहे हैं तो स्लो डाउन हो जाएगा, अगर ड्रीम स्टेज में है 17 to 20 उस तरह से, और डीप स्लीप में जाएंगे 8 to 10 उस तरह, नेवर बिकम जीरो। वो एवरेज लेते हुए इट विल कम टू अबाउट 50 to 60,000 थॉट्स इन अ डे। ये मेरी फैक्ट्री है, प्रोडक्शन 50 to 60,000 थॉट्स इन अ डे। अब आप कहें शुड वी बी अवेयर,
1: नहीं बट अगर समझो एक्चुअली इसको आप प्रोडक्शन कहें तो 50-60 हजार समझो आप गारमेंट्स बनाएं, उसमें से काम के थोड़े से निकले बाकी का सारा रद्दी में फेंकना
2: पड़े, कैसा बिजनेस में
1: तो आउट ही हो जाएंगे बिजनेस, घर गांव वापस जाना पड़ेगा।
2: हो रहा है ना, इतना बड़ा बिजनेस हाउस है, इतनी प्रोडक्शन है, लेकिन यूजफुल कितने है और रिजेक्ट कितने हो रहे हैं सारे दिन में, वेस्ट में कितने जा रहे हैं, तो बैंक्रप्सी हो गई ना, कहेंगे दिवाला निकल गया इसका, खुशी नहीं,
1: खत्म, वेस्ट की दुकान लगानी पड़ेगी।
2: दिस इज अवेयरनेस, मैं मालिक हूँ, ये मेरी रचना है, ये मेरी क्रिएशन है, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस इंडस्ट्री।
1: आपकी जो बात आपने कहा ना कि मैं मालिक हूँ, और मेरी ये रचना है तो मेरी माँ हमेशा मुझे बचपन में कहती थी, बेटा यहाँ से लेके पांव तक ये तेरा जगत है और ये तेरा मन है ना, तो मन जीते पुत्र जग जीते।
2: ब्यूटिफुल।
1: तो मतलब तू मन को जीतेगा तो इस सारे जगत

0: कहते हैं कि मन की स्थिति, जो मन मेरा है, उसको हम फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हुए, उस बच्चे का प्यार से ध्यान रखते हुए, थोड़ा चंचल है तो भी कोई बात नहीं, अपना है।
1: एक चीज और समझ में आई आज इस उम्र में कि मन को कैसे जीतना है, मार के, डांट के, कोस के, अपने आप को गाली दे के नहीं चलेगा। जैसे आपने कहा ना बच्चे को, बच्चे को कैसे जीतते हैं, प्यार से, आजा बेटा चॉकलेट खा, आजा बेटा म्यूजिक सुन, ध्यान बटाते, मतलब ये बहुत अच्छा गेम बन गया है।
0: और आज see, हाँ, अभी मैं इतने एपिसोड से कह रही थी कि ये गेम है, सो यू सेड हाउ कैन यू कॉल दिस ऑल अ गेम,
1: मैं तो वॉर लेके बैठा था,
0: नाउ यू हैव कॉल्ड इट अ गेम।
1: इस गेम को मैं वॉर लेके बैठा था, अगेंस्ट फाइटिंग विद माय माइंड,
0: नाउ इट्स फन, इट्स
1: नाउ इट्स फन, नाउ इट्स अ पजल, लाइक सुडोकू में जैसे करते वो,
0: नाउ एंजॉय द गेम, नाउ एंजॉय द, अब चैलेंजेस आएंगे,
1: लेकिन जब मैं सुडोकू में एक मिस्टेक करता हूँ ना, मैं पेंसिल से खेलता हूँ, तो फिर से वो रब कर लेता हूँ, फिर स्ट्राइक करता हूँ, यहाँ भी कर सकते हैं, होगी गलती, ठीक है, फाइन, फिर करेंगे।
0: एज लॉन्ग एज द फर्स्ट इक्वेशन इज राइट, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, जस्ट टेक केयर फर्स्ट इक्वेशन ना गलत हो, फर्स्ट इक्वेशन राइट, आज नहीं तो कल, चाहे थोड़ी मेहनत ज्यादा भी लगे, सोल्यूशन मिल जाएगा, एंड विच इज हैप्पीनेस, That is being bliss. हमें खुश रहना है।
1: कुछ होमवर्क दे दीजिए आप अगले
0: आपने इतना सारा होमवर्क ले लिया अब कि सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट, कितना भी काम बाहर करें, प्रायोरिटी स्वस्थिति।
1: थैंक यू सो मच सिस्टर।
0: ओम शांति।
1: थैंक यू सो मच। ओम शांति। द माइंड इज लाइक आवर चाइल्ड, टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड एंड ऑल्सो All your responsibilities like family, career and health. The first priority will be the child within and then everything outside. While taking care of your responsibilities, the child might start crying. The mind starts getting irritated, angry or hurt. Withdraw for a minute from activity and heal the child. Talk to the mind and change the quality of thoughts. The child within is not in our control. No one taught us what to think or how much to think. Discipline this child with love, not force or harshness. While dealing with others, remember, we are dealing with the child within them. Responsibility means the ability to respond the right way in every situation. So, the priority list of responsibilities will be self, family, and work. If we take care of our emotional well-being, we will have good relations and then perform well at work.
2: मित्रांशिवाय आयुष्य पूर्णच हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं.
3: तेरे जैसा यार कहां, कहां ऐसा यार आला.
2: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं.
4: लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा.
2: मनात पीठ वाजल्या की शरीर अपोप फिरकत. त्याच सोबत
5: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध.
2: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा.
6: पहला नशा, पहला खुमार.
2: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: नमस्कार एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। अब हमने खुद को पहचान लिया, उस परमात्मा से भी जान पहचान हो गई, एक रिश्ता कायम हो गया, परम धाम के दर्शन भी कराए, उसके साथ रोज की बातचीत है। लेकिन अभी भी कुछ सवाल हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े हैं और उन्हीं सवालों को एक बार फिर तलाशते हैं इसी कार्यक्रम में। और हर बार की तरह हमारे साथ इस सफर की हम सफर है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
2: ओम शांति
1: सिस्टर शिवानी। बात वही आ जाती है कि जब मैं वहां इतनी खुश थी या वो परम धाम मेरा है तो मैं नीचे क्यों आई, क्यों मैं वही नहीं रह सकती थी।
2: जैसे एक बीज है, उस बीज के अंदर उस पौधे में क्या फल लगेगा, क्या फूल लगेगा, सारी नॉलेज है एक जड़ सीड के अंदर। लेकिन जब तक वो सीड बोया नहीं जाता है, उसमें से वो वृक्ष नहीं निकलता, फल फूल पत्ते इतना खूबसूरत जो सारा बन जाता है।
1: हाँ,
2: वो उसमें से निकलता है लेकिन उसको बोने के बाद। इसी तरह मैं आत्मा, मेरे अंदर ये सारा कुछ है एक्सप्रेस करने के लिए, अनुभव करने के लिए, लेकिन जब तक मैं कॉस्ट्यूम नहीं लेती हूँ तब तक मैं वो कुछ भी अनुभव नहीं कर सकती। हम हर एक आत्मा के अंदर, एवरी सोल हैज थ्री थिंग्स इन कॉमन। वन इज अवेयरनेस, यू नो, लाइक व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट ऑल दिस टाइम,
1: या
2: जागृता, अवेयरनेस ऑफ माई सेल्फ एंड ऑफ अदर्स। एंड वंस आई हैव दैट अवेयरनेस देन देयर इज रिलेशनशिप्स। और संबंधों में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ये सारा दिन हमारा चल रहा है, लॉट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एंड तीसरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है क्रिएटिविटी। एवरी सोल इज वेरी क्रिएटिव। व्हाई? बिकॉज वी आर क्रिएटिंग थॉट्स, आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, फीलिंग्स। ये हमारी रचना है, हम अपने संकल्पों को रचते हैं। तो ये तीनों चीजें, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, इनफैक्ट हमें भी बहुत सारे यूथ ईमेल लिखते हैं कि आई डोंट नो माई पर्पज ऑफ लाइफ, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, मुझे ऐसे लगता है मेरे जीवन का कोई, यू नो, एंड दे एक्चुअली आस्क कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। सो वी आर लीडिंग अ लाइफ वेयर वी आर फाइंडिंग द नीड टू आस्क समवन एल्स दैट, यू नो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ।
1: बिकॉज़ इवन आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरे पास भी सवाल है कि मेरा लक्ष्य क्या करने आई हूं मैं।
2: यू नो, गोल्स अलग है कि हम अपने जीवन के गोल्स बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, साल में ये करना है, 10 साल में ये करना है, दोज आर गोल्स ऑफ लाइफ। या उनको हम कह सकते हैं एम्बिशन इन लाइफ कि मुझे क्या करना है मटेरियलिस्टिकली, प्रोफेशनली, पर्सनल लेवल पर। लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ, इट्स टू लिव लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ इज नथिंग बट टू कम डाउन हियर एंड टू लिव दिस लाइफ। बट हाउ टू लिव दिस लाइफ? विद दैट अवेयरनेस। यू नो, इफ यू रियली वॉन्ट टू फाइंड दैट पर्पस। पर्पजलेस क्यों लगने लगती है जीवन, जब हम इन तीन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अवेयरनेस, रिलेशनशिप्स और क्रिएटिविटी। हम जो करना चाहते हैं हम जीवन में वही करें जो बनना चाहते हैं, लेकिन वो पर्पजफुल तब लगने लगेगा वेन वी आर डूइंग ऑल दैट विद अवेयरनेस। सो आई एक्सपीरियंस ऑल दोज वैल्यूज व्हाइल आई एम डूइंग इट। दूसरा, क्रिएटिविटी। तो सारा जो मेरे अंदर पोटेंशियल है, आई कैन एक्सप्रेस दैट एंड देन आई कैन एक्सपीरियंस दैट टू माई हाइएस्ट पोटेंशियल। हर एक के अंदर बहुत पोटेंशियल है, अब हम उसको कितना यूज करते हैं। एंड तीसरा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। कि व्हाइल आई एम ऑन दिस जर्नी आई शुड हैव दैट एक्सचेंज ऑफ प्योर लव विद एवरी सोल दैट आई कम इन कॉन्टेक्ट। अगर मैं ये तीन चीजों पर ध्यान दूं तो मेरी लाइफ बहुत पर्पजफुल हो जाएगी। तो मुझे आत्मा के अंदर ये जो एक्सप्रेस करने का पोटेंशियल है वो हम ऊपर बैठ कर नहीं कर सकते हैं।
1: That is why we need to come.
2: It's dormant, no? वो सुषुप्त अवस्था है। लेकिन टू एक्सप्रेस माई सेल्फ आई नीड टू कम डाउन। मुझे एक कॉस्ट्यूम चाहिए और मुझे एक स्टेज चाहिए। एंड वो मुझे इस सृष्टि पर मिलता है, इस स्थूल वतन में आके मिलता है। सबसे पहले मैं आत्मा शरीर लेती हूँ और फिर मुझे ये रंगमंच मिलता है, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनके साथ इंटरेक्ट करके फिर मैं अपना वो फुल पोटेंशियल, आई कैन एक्सप्रेस, आई कैन मूव, आई कैन वर्क, आई कैन डू एवरीथिंग,
1: आई कैन गिव माय बेस्ट परफॉर्मेंस।
2: एब्सोल्युटली। नाउ इट्स ईच वन टू देयर ओन। लेकिन वो ही अपना बेस्ट पोटेंशियल लाने के लिए बाहर, आई नीड टू नो द पोटेंशियल। यू नो, हमें बाहर का सब ज्ञान है लेकिन मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है वो ही नहीं पता, तो फिर उसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे।
1: लेकिन वो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई भी एक्टर अगर मिले, बिकॉज मेरा थिएटर बैकग्राउंड अगर है तो थिएटर में जब भी हम स्टेज पे होते हैं हर एक्टर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, देना चाहता है. देता है या नहीं दैट सेकेंडरी, देना चाहता है. कोई भी ऐसा एक्टर नहीं होगा आज की दुनिया में जो ये कहे कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करना
2: ordinary.
1: चाहता. आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट. तो मैं जब ये कैरेक्टर मुझे, मैं इस अवेयरनेस के साथ आई हूँ यहाँ पे कैरेक्टर प्ले करने के लिए, तो फिर मैं गलतियां कैसे करती हूँ?
2: मैं गलतियां करना नहीं चाहती हूँ. यू नो दैट इज फॉर श्योर कि जो हम अपना पोटेंशियल एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ईच वन वॉन्ट्स टू डू द बेस्ट. सही और गलत इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए ये कई बार क्वेश्चन बीच में आकर रुक जाता है कि जो मैं कर रही हूँ वो सही या गलत.
1: कौन तय करेगा?
2: That's a big question, right? Who will now decide for me what is right and what is wrong? Aaj physical roop se agar dekhe to laws bane hue hain and pura departments hain, sare security departments hain, police force hain. For what? For maintaining law and order. Why are we needing so many people to maintain the law and order? Kyunki we ourselves are not being able to do it. To koi aur chahiye jo hamare upar वो मेंटेन करता है. कोई और चाहिए जो हमारे ऊपर रूल इम्पोज कर रहा है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है. और वो तब होता है जब मनुष्य आत्मा खुद ये शायद भूल चुकी है या उस पे चलने की उसके अंदर शक्ति नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तब हमारे ऊपर वो रूल इम्पोज किया जाता है. शायद जब ये सृष्टि पर आत्मा सबसे पहले आई होगी, व्हेन इट वाज प्योर, it had the awareness of what is right and what is wrong, and it always performed right, and that's why there must have been nobody there to impose the rule ke what is right and wrong. But today we need other people to impose rules on us. So I think each one of us knows what is right and wrong. Jab hum kuch galat kar bhi rahe hote hain shayad andar koi ek inner voice jisko kehte hain,
1: yahan par ab ek aur baat jo kahi bahut zyada kahi jati hai ki what is right for you may not be right for me.
2: Right.
1: You know, like ek aaj ka ek bahut relative term hai sahi aur galat.
2: Right.
1: Ki aapke liye jo sahi hai ho sakta hai wo mere liye galat ho ya mere liye sahi na ho. Lekin kya ye sambhav hai? Jo sahi hai wo sahi hi rahega, jo galat hai wo galat rahega.
2: I think so, yes. Because, but again, you know, we cannot impose this on anybody else. But ye hame apne aap se puchna hoga. Lekin I think ki jab bhi hum kuch karte hain, to andar se ek थॉट या जिसको एक इनर वॉइस कहे वो हमें बताने के लिए है कि क्या सही है क्या गलत है. लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको दबा देते हैं, यू नो, झूठ बोलने लगे हैं किसी बात से बचने के लिए. तो ऐसे थोड़ी है कि अंदर नहीं पता है. यू नो वी नो व्हाट वी आर डूइंग, बट उस टाइम ऐसे लगता है झूठ बोल दो जल्दी से काम हो जाएगा. यू नो, सच बोलेंगे अभी तो डांट पड़ेगी, झूठ बोलेंगे तो बच जाएंगे, इतने सारे आंसर्स नहीं करने पड़ेंगे. तो हम समझ कर भी गलत वाला कर्म चूज करते हैं. बट इट्स नॉट दैट वी डिडंट नो. नाउ नोबडी नीड्स टू टेल मी राइट देन कि वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, आई नो इट. तो कहीं ना कहीं एक गिल्ट अंदर फिर बैठना शुरू हो जाता है. अब हमारे ऊपर है कि क्या हम उस आवाज को सुनकर अपने को परिवर्तन की तरफ लेकर चलते हैं या कहीं हम उसको दबा देते हैं. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर बार बार उस आवाज को दबा दिया तो फिर वो आवाज भी शायद जो कहते हैं ना इस किल्ड हिज कॉन्शियस,
1: वो जो हम संस्कार की बात कर रहे थे कि एक हैबिट बन जाती है,
2: फिर वो बुद्धि
1: को बीच में आने नहीं देते.
2: एब्सोल्युटली वो आने नहीं देते. लेकिन सही या गलत हम सबको पता है एंड उसी का तो ये सारा खेल है. यू नो एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग द होल डे इट्स एक्शन. वी आर परफॉर्मिंग सो मेनी एक्शंस, देन वी आर रिएक्टिंग टू सो मेनी एक्शंस. One is I perform my actions. Second is you perform some action. I react to your action. And third is we come into interaction. ये सारा दिन चल रहा है. And इसी को हम कर्म क्षेत्र कहते हैं. And इसी अब ये action और reaction किस नियम अनुसार चल रहा है? How is it governed? कि what I am acting or what I am projecting outside or what I am expressing, what return will I get to it? ये शायद हमें नहीं पता है और इसलिए फिर बहुत सारे सही और गलत और ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो वी डोंट नो द लॉज और वी आर नॉट अवेयर ऑफ द लॉज और मे बी अवेयर बट वी डोंट कीप इट इन आवर कॉन्शियसनेस.
1: यहाँ एक सवाल ये आता है कि जब हमने बात ये की कि हमें इस सृष्टि पे हमें उतरना जरूरी था क्योंकि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ, क्योंकि हम स्टिल नहीं रह सकते, बहुत क्लियर ये बात होती है, तो परफॉर्म करने, अवेयरनेस के साथ हम परफॉर्म करने अपनी क्रिएटिविटी के लिए हम यहाँ आए. लेकिन जो ये पूरी सृष्टि है उसके कुछ लॉ ऑफ नेचर की बात जो होती है, हु हैज क्रिएटेड दिस होल नेचर ऑल्सो, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन विच आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस हैव.
2: थ्री थिंग्स आर इटर्नल, सोल, गॉड एंड दिस ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा, दीज आर इटर्नल हियर. Nobody creates these three things. These three things are eternal and that's why they are not created, they are not destroyed. नहीं तो अगर इनको कोई create कर सकता है फिर से तो ये destroy भी हो सकती है. तो ये तीन चीजें eternal है, लेकिन ये तीन चीजें work कैसे करती हैं? And हम सब souls जब एक दूसरे के साथ कर्म में आते हैं तब कौन से rules apply करते हैं? जैसे आपने कहा law of nature तो है, and then one is the spiritual laws. All our actions and reactions and interactions, they are working according to certain laws. And if we know the law, तो फिर law के अनुसार अगर हम चलेंगे तो फिर कोई गलती नहीं होगी.
1: तो हमें वो law कौन बताएगा?
2: That is, इसको जैसे हम सब लोग इसको जानते भी हैं. This is what is called the law of karma, karmic philosophy, कि कर्म के जो नियम है वो बहुत क्लियर है, ये हमें सब पता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनकी जिम्मेवारी लेने के लिए रेडी नहीं है कि ये कर्म मेरी वजह से हुआ है. हम अपने कुछ एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लेते हैं और कुछ एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते हैं.
1: क्योंकि अगेन लॉट ऑफ कंफ्यूजन, मे बी वी हम उस कबूतर की तरह है जो बिल्ली को देखना नहीं चाहते, या हम देखना नहीं चाहते कि हम क्या गलत कर रहे हैं इसलिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे. लेकिन अगेन अगर हम देखें सिस्टर शिवानी तो बहुत सा कंफ्यूजन भी है, बहुत सी धारणाएं हमें डाली गई हैं बचपन से, ये सही ये गलत, ये है लॉ, ये कह रहा है लॉ, या कार्मिक लॉ ये है, कार्मिक डेथ्स ये है, कार्मिक थ्योरी ये है, जो कभी भी क्लैरिटी के साथ अभी तक नहीं आ रही थी. तो एक उम्मीद कि कहीं एक क्लैरिटी दिखेगी.
2: फर्स्ट थिंग इज कि हमें अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हर कर्म जो मेरे द्वारा हो रहा है उसकी जिम्मेवार मैं हूँ, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना.
1: यहाँ एक सवाल जो बहुत सारे हम सबके साथ आता है जिंदगी में कि मैंने कहा, आपने कहा कि अपने कर्म की जिम्मेदारी आपकी है, मैंने तो जिंदगी में अच्छा ही किया है, मैंने आज तक कभी गलत नहीं किया. नहीं पर मैं सोचती हूँ कि मैंने तो गलत किया नहीं कभी किसी के साथ, और किया होगा तो अनजाने में किया होगा, मैं जानती ही नहीं, तब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आई हैव नेवर बीन बैड. इट्स नॉट मी हू सेइंग इट,
2: एवरीवन,
1: एंड आई हैव आल्सो सेड इट. आई हैव आल्सो सेड इट, आई आल्सो सेड कि मैंने जानते बूझते कभी गलत नहीं किया हुआ हो. और ये कहा जाता है कि अगर आपने जानबूझ के गलती नहीं की तो वो मानी नहीं जाती है. ये भी एक बिलीफ लेके हम चलते हैं.
2: इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. इंडिया में आप ड्राइव करते हैं तो कौन सी साइड पे ड्राइव करते हैं?
1: राइट साइड पे.
2: अब आप यूएस जाएंगे तो वहां पे ड्राइव करेंगे
1: लेफ्ट.
2: वहां जाकर अगर आप राइट पे ड्राइव करें तो वो क्या आपको फाइन नहीं करेंगे? आप कहेंगे बट आई एम सॉरी, आई डिडंट नो दैट दिस इज द लॉ. We're sorry, but you're still going to be fined for it. You know, so ignorance of law is not taken as an excuse. कि आपको पता ही नहीं है कि ये नियम है.
1: तो वो माफी वाला नियम नहीं चलता है.
2: नहीं, हमें अपनी सब गलतियों के अकाउंट सेटल तो करने ही पड़ेंगे. You will still be fined for it. तो हम ये कहें कि मुझे पता ही नहीं था कि ये नियम है एंड इस तरह से इट वर्क्स, तो मुझे उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए. That will not happen. गलती है. लॉ को अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसकी पनिशमेंट तो हमें मिलनी मिलनी.
1: कहा जाता है कि माफी मांग ली जाए, या इफ वी से सॉरी. सी, आई जस्ट वांट टू निगेट ऑल दोस थिंग्स, यू नो, या मैं जानना चाहती हूँ.
2: नो, इट्स ट्रू. सी, इट्स अ लॉ. जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, कि जो चीज है वो नीचे की तरफ ही आने वाली है. अब एक बच्चा सुपरमैन की मूवी देखता है और जाकर टेरेस पे जाकर ऊपर उड़ने की कोशिश करता है. ही इज ट्राइंग टू ब्रेक अ लॉ, राइट? तो शायद वो एक सेकंड के लिए ऊपर की तरफ जा भी जाए, लेकिन उसके बाद ही कैन नॉट ब्रेक अ लॉ. तो जहां भी हम लॉ तोड़ने की कोशिश करेंगे, पहली बात तो लॉ तोड़ नहीं सकते हम. वी ट्राई टू ब्रेक अ लॉ, वी विल एक्सपीरियंस पेन बिकॉज वी गेट पनिश्ड फॉर इट. सो इट्स नॉट रियली पनिशमेंट कि हमें कोई और पनिश करता है, लेकिन जहां भी हम लॉ ब्रेक करेंगे हमें दर्द होता है. इसी तरह ये भी लॉज बने हुए हैं. ये तो साइंटिफिक लॉज है या नेचुरल लॉज है, स्पिरिचुअल लॉज कि जो हम कर्म करेंगे उसका रिजल्ट हमें मिलना ही है. इसके अगेंस्ट अगर हम जाने की कोशिश करें तो तो भी हमें दर्द होगा ही. वी ट्राई टू ब्रेक द लॉ कि नहीं मेरे साथ अच्छा ही होगा, इवन इफ आई डू रॉन्ग टू पीपल, इट विल नॉट हैपन. एंड एवरीथिंग इज वेरी एक्यूरेट, जैसे चल रहा है कुछ भी गलत नहीं हो रहा है. जब हमें वो समझ में आने लग जाता है कि हाउ द लॉ वर्क्स, सी द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वंस वी केम टू नो हाउ इट वर्क्स, वी कुड यूज इट टू डू सो मेनी थिंग्स.
1: कितना कुछ ऑन इट, यू नो,
2: कितना कुछ सिर्फ वो एक लॉ पता लगने से. लॉ पहले भी एग्जिस्टिंग था लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं थी उस लॉ की, तो हमने उसको यूज नहीं कर
1: पाए. और हमें कितना पनिश किया खुद को भी.
2: yes.
1: कितनी सारी हमारे साथ एक्सीडेंट्स हुए, कितना कुछ हुआ.
2: एब्सोल्युटली. अब इसी तरह ये कार्मिक लॉ है, इसकी जब अवेयरनेस होगी और हम इसको हर कर्म करते समय ध्यान में रखकर चलेंगे तो वी विल बी एबल टू डू वंडर्स. एंड अगर इसको हम भूल जाते हैं, जैसे आपने कहा हमें तो पता ही नहीं था, तो पनिशमेंट फिर भी मिलेगी. वो तो मिलनी है, वी कैन नॉट एस्केप दैट. सो वी विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट ऑफ एवरी एक्शन. एंड जैसे हमने कहा लाइफ इज रिस्पॉन्सेस, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेस. अब हम कैसा रिस्पॉन्स देते हैं किसी सिचुएशन को या किसी व्यक्ति को, दैट मीन्स एनर्जी दैट आई एम गिविंग आउट. द लॉ सेज एज यू सो सो शैल यू रीप. आप जैसा कर्म का बीज बोएंगे वही आपको रिटर्न में मिलने वाला है. तो जो रिस्पॉन्स हम देंगे तो वो क्वालिटी ऑफ एनर्जी वी हैव गिवन आउट, द सेम क्वालिटी ऑफ एनर्जी आई विल गेट बैक. ये लॉ है, इसको हम तोड़ नहीं सकते. अब इसको हम समझ के चलना शुरू कर सकते हैं. अगर हम इसको समझ कर चलना शुरू कर देंगे तो आप देखो सारी चीजें चेंज होने लगेंगे. हमारे कर्मों के ऊपर जो हमारा अटेंशन है वो आने लगेगा. आई अंडरस्टैंड दैट द एनर्जी व्हिच आई गिव आउट, एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, एनीथिंग. कई बार जैसे हम आपने कहा ना, हमने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया. क्या हमने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा?
1: सोचा
2: सोचा, लेकिन हमने सोचा ये नहीं काउंट होगा.
1: हमने सोचा कि शब्द या कर्म ही काउंट होगा. थॉट भी कर्म है एक्चुअली.
2: थॉट भी तो एक एनर्जी है. सी इट इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. वी टॉकिंग ऑफ अ स्पिरिचुअल लॉ. तो इट इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, कि आप जो एनर्जी बाहर देंगे वो ही एनर्जी आपके पास वापस आने वाली है. तो वो जरूरी नहीं है शब्दों द्वारा हो या कर्म द्वारा हो. कर्म स्टार्ट्स हियर. माई क्रिएटिंग अ थॉट इज ऑल्सो अ कर्म एंड देन इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ एक्शन. लेकिन अगर मैं यहाँ बैठ कर सोच रही हूँ ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल खराब है, अच्छे नहीं है, बिल्कुल गुस्से वाले हैं, ये है, दिस इज नॉट एनर्जी. एंड आई मे बी टॉकिंग वेरी नाइसली टू यू, बट हाउ मच नेगेटिव एनर्जी. और ये सारी नेगेटिव एनर्जी जो आपकी तरफ भेजी कहाँ जाएगी? आपको हिट करेगी. okay. आपके अंदर वो सारी थॉट्स पहले क्रिएट करेगी और फिर वो उतनी इंटेंसिटी से वापस आएगी. अब जब वो वापस आती है मेरे पास तो मुझे लगता है ये सारा मेरे पास कहाँ से आ रहा है. You know, you have people throwing all their negative energy at you, and you wonder what have I done to these people. You know, ये सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? You know, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया. That's when the awareness of the law helps. That जो आपके पास वापस आ रहा है, it's only a reflection of what you have sent out. तो सबसे पहले कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि ये मेरी जिम्मेवारी है. जो भी मैं कर रही हूँ इस टाइम वो मेरी जिम्मेवारी है, और जो मेरे साथ हो रहा है वो भी मेरी जिम्मेवारी है. थिंग्स विल बिकम वेरी सिंप्लीफाइड. और सबसे सिंपल चीज जो हो जाएगी, क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे. ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों, क्या, कैसे, कब? एवरीथिंग विल फिनिश. बिकॉज द सारी जो टेंशन है ना, दीज आर दिस क्वेश्चंस. Why did this happen to me? What have I done? You know, किसी के साथ कुछ हो जाता है, कहते हैं मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ. तो ये questions सारे समझ खत्म हो जाते हैं. And उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि how it works. You know, कैसे ये सारा scenario create हुआ, कैसे आज मैं जिस स्थिति में हूँ या जिस परिस्थिति में हूँ, ये मेरी जिम्मेवारी किस तरह से बनती है. ये हमें सोल कॉन्शियसनेस से समझ में आता है. कि आत्मा मीन्स माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार, MIS, यू नो, जैसे आईटी में हम कहते हैं MIS, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम. तो दिस इज अ वेरी नाइस MIS दैट वी हैव हियर, बट वी नीड टू रिमेम्बर दैट सिस्टम एवरी टाइम. तो वी सॉ दैट आई क्रिएट अ थॉट, थॉट पे डिसीशन लेते हैं इंटेलेक्ट, एंड वो एक्शन में आता है. जैसे ही एक्शन में आया, दैट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन ऑन द संस्कार. अब जो संस्कार पे इम्प्रेशन क्रिएट हुआ, उससे ही नेक्स्ट थॉट क्रिएट करते हैं, फिर वो एक्शन में आता है. सो इट इज कंटिन्यूसली अ साइकिल. तो हर स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास्ट संस्कार्स रिकॉर्डेड हैं, उनको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि उस संस्कार के आधार पे अगला संकल्प क्रिएट हो रहा है, फिर वो बाहर एक्शन में आ रहा है. तो एट एवरी स्टेप आई एम एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट आई हैव स्टोर्ड इनसाइड, एंड एट द सेम टाइम आई एम क्रिएटिंग अ न्यू सेट ऑफ थॉट, डिसीशन एंड संस्कार. इट बिकम्स अ कंटिन्यूस साइकिल
1: इन क्वाइट अ लॉट. एक्चुअली कितने संस्कार हम स्टोर कर सकते हैं या हम निकालते
2: हर क्षण, हर क्षण चल रहा है ना, ये हर क्षण चल रहा है. तो यू इमेजिन के ये जो स्टोर हाउस है कितना डीप होगा और क्या क्या नहीं इसके ऊपर प्रिंट किया हुआ. अब अगर हमें समझ में आ जाए कि हर क्षण जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक तो जो पास्ट स्टोर किया हुआ है उसके आधार से मेरा प्रेजेंट बन रहा है, और जो मैं अभी प्रेजेंट बना रही हूँ उसके आधार से मेरा
1: फ्यूचर
2: बनने वाला है. सो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो किसके हाथ में है?
1: मेरे अपने हाथ में.
2: सो डेस्टिनी
1: इज इन माय हैंड,
2: डेस्टिनी इज इन माय हैंड्स. Everything is happening at the same time. So every action is a result of my thought, decision, action. This has come. It's my thing. It's my past impression se wo aaj action mein aaya. And every result that is happening is a fruit of that action.
1: Actually, yes. You know, abhi jo hua hai mere saath, hota ye hai ki main wo resentment leke baithi rehti hoon. Kuch bhi hua ho.
2: Right.
1: आई हैव दिस रिजेंटमेंट कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ.
2: right.
1: और उसी से आगे, क्योंकि ये प्रेजेंट है,
2: राइट,
1: दिस रिजेंटमेंट, दिस एंगर, मे बी नॉट ऑन अ पर्सन बट मे बी यू नो
2: इट कैन बी फॉर एनीथिंग. जैसे आपने एंगर कहा, राइट, लेट्स से मैंने एक थॉट क्रिएट किया गुस्से का, किस आपके प्रति, लेट्स से एक थॉट क्रिएट किया गुस्से का. जैसे ही वो थॉट क्रिएट किया, वो डिसीशन और वो वर्ड या एक्शन में आ जाएगा, एक्शन में आने के बाद वो इम्प्रेशन स्टोर हो जाएगा, संस्कार बनेगा. संस्कार में क्या स्टोर हुआ, द इमोशन दैट आई फील राइट नाउ, एंड जो मैंने एक्सप्रेस किया था ना एंगर अभी आपको, उसका पूरा इम्प्रेशन एक ये अंदर बन जाएगा. तो द संस्कार ऑफ एंगर हैज जस्ट गॉट स्टोर्ड इनसाइड दिस स्टोर हाउस. अब नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मीट यू अगेन,
1: और ये सिचुएशन सेम हो जाती है,
2: सिचुएशन या व्यक्ति जब वो सेम आते हैं, तो आप जैसे ही मुझे दिखोगे आप ट्रिगर करोगे उस चीज को. आप कारण नहीं बनते हो, जो हम लोग कहते हैं ना उनकी वजह से मुझे गुस्सा आया, नहीं, वो ट्रिगर जरूर बनते हैं कि आप अगर नहीं आओ मेरे सामने तो वो संस्कार
1: दबा
2: है, वो दबा रहेगा. लेकिन जैसे ही आपको देखा मैंने, तो जैसे ही आपको देखा, आपसे मिले, तो वो जो इम्प्रेशन रिकॉर्डेड हुआ था वो ट्रिगर हो जाएगा. अब वो थॉट में भी अगर क्रिएट हुआ कि आई थिंक एंग्रीली अबाउट यू, दैट थिंकिंग
1: will reach out.
2: Reaches out that energy, again comes back, again another impression. तो जो पहले वाला impression था वो फिर से और reinforce हो गया, right? तो my संस्कार after meeting you is becoming stronger and stronger and stronger. अब मैं इस बार आपको मिली, आज पहली बार शायद वो संस्कार बना, लेकिन वो इमेज में अपने अंदर कैरी कर रही हूँ. नेक्स्ट टाइम आप मिले, आप फिर से ट्रिगर किया. अब लेट्स से change the costume, I leave this body, you leave the body, and we take two different costumes, and then we meet again. ठीक है, maybe in two different roles altogether, two different costumes altogether, but वो संस्कार तो यहाँ पे merged है ना, वो impression तो बना ही हुआ है कि इस soul के प्रति मेरा क्या impression है, एक negative image है जो मेरी बनी हुई है. अब जैसे ही आप मेरे सामने फिर से आएंगे,
1: मैं पहचान लूंगी.
2: हाँ, आप पहचानते नहीं है कि ये वही वाली सोल है, लेकिन वो एनर्जी एक्सचेंज किस लेवल का है. हाँ. कि वो सोल जैसे ही मेरे सामने आती है वो वापस वही वाला ट्रिगर कर देगी. तो वापस आपको देखते ही, देखते मतलब आत्मा लेवल पर, जैसे ही आप आत्मा मेरे सामने फिर आते हैं, एक अलग नाम रूप में सारा कुछ, आप मेरे अंदर वो एक गुस्से वाला संस्कार ट्रिगर करते हैं और तब हम कहते हैं पता नहीं ये मुझे अच्छे नहीं लगते, इनसे मिलकर हमेशा मुझे प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली ज्यादा कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ,
1: इस जीवन में तो कुछ भी नहीं हुआ बेसिकली अगर देखा जाए।
2: वी नॉट फाइंडिंग द रीजन एंड देन वी से पता नहीं यही ऐसे, एंड आई कन्वीनियंटली पुट द ब्लेम ऑफ हाउ आई एम फीलिंग ऑन टू यू। संस्कार तो वो हर इमेज जो स्टोर होती गई है वो री इन्फोर्स होती जाती
1: है और ये लाइफ दर लाइफ चलता जा रहा है। ओके, दिस इज व्हाट कार्मिक अकाउंट,
2: दिस इज कार्मिक अकाउंट। और इसलिए कई बार कईयों से मिलके बहुत अच्छा लगता है और कईयों से मिलके हम थोड़ा सा रिपेल हो जाते हैं कि मैं इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ।
1: अच्छा, ये हमने एक पहले लॉ की तरफ या एक लॉ हमने जो समझा है कि जैसा कि हम जैसा बोएंगे तो ये हम बात सुनते सदियों से आ रहे हैं, लेकिन आज अगर हम कर्म की डेफिनेशन पे देखते हैं तो जो एनर्जी का ट्रांसफर हम दे रहे हैं या जो कर रहे हैं वही हमें वापस मिलेगा और ये जन्मों से परे है। ये पूरा एहसास जो है ये जन्मों के परे है। क्या हम ये जो हमने कर्म किया है, जैसे हम ये कह रहे थे कि माफी मांग के किया जा सकता है, हम तो सुनते आ रहे हैं, अगर वो पॉसिबल नहीं है, पनिशमेंट है ही या जो भी जिस भी बात को कहा जाए, पर क्या इसको कन्वर्ट किया जा सकता है,
2: सेटल कर सकते हैं अकाउंट को?
1: वो सेटल कैसे करना है क्योंकि वो आज के इस दौर में सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है
2: क्योंकि अकाउंट बहुत सारे हैं।
1: हाँ, और एक वो एक अवेयरनेस क्रिएट हो गए। सी, अभी तक हम इस बात को नहीं जान रहे थे कि क्यों हो रहा है ये, तो सब ठीक ठाक था। आज अगर हमें ये समझ में आता है कि हाँ ये हो रहा है, ये कुछ है प्रॉब्लम और ये हो सकता है कार्मिक हो, तो वो और प्रॉब्लम तंग करेगी, वो तब तक और ज्यादा परेशानी होती रहेगी जब तक कि हम उसे सेटल करने का या काटने का जो भी फिनिश करने का एक प्रोसीजर नहीं सीख सकते। तो अगली कड़ी में वो प्रोसीजर तक जरूर पहुंचेगी, नहीं तो तब तक वक्त गुजारना भी मुश्किल हो जाएगा। सचा शिवानी, आज जो पूरा हमने जाना इसको और हर तरह के लॉस को जो हमारी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, और ना सिर्फ ये लाइफ, जो पूरा कार्मिक क्षेत्र है, कार्मिक कॉन्सेप्ट है, उसको गवर्न कर रहे हैं, उसका एक खुलासा हुआ आज। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। जिंदगी के सफर में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें उस व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम है या नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो कार्मिक फिलॉसफी है ये जरूर काम कर रही है और हम में से हर कोई ये चाहता है कि इन अकाउंट्स को सेटल किया जाए। कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई सवाल आपके दिल में उठ रहा है, आपका स्वागत है। आप हमें फोन कर सकते हैं, ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9899334666, 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अगली कड़ी में आप इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करेंगे क्योंकि किस तरह से अपने जो कार्मिक अकाउंट्स है उन्हें हम सेटल कर सकते हैं और जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, जो बाकी आत्माओं के साथ, बाकी व्यक्तियों के साथ हमारे रिश्ते हैं, हमारी जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।

0: आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। अभी सुनते हैं बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम।

आज मेरे साथ बहुत ढेर सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। प्रोग्राम है बच्चों की दुनिया, जहां हम बात करते हैं बच्चों से उनकी दुनिया के बारे में, उनकी ख्वाहिशों के बारे में, उनकी अपनी अलग सोच के बारे में। तो मिलते हैं सभी बच्चों से। सबसे पहले हमारे साथ है शिवम। शिवम, आप अपने बारे में

0: मेरा नाम शिवम गुप्ता है, मैं एमपी पचौड़ से आया हूँ।
1: और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो शिवम?
0: फिफ्थ।
1: और उसके बाद युग, युग आप बताओ।
2: मैं सूरत ओराछा से आया हूँ, मैं चौथी क्लास में पढ़ता हूँ।
1: और हर्ष?
3: मेरा नाम हर्ष है, मैं गुजरात के सूरत ओराछा से आया हूँ।
1: और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप?
3: मैं 9 में पढ़ता हूँ।
1: ईश्वरी?
4: मेरा नाम ईश्वरी है, मैं पुणे से आई हूँ।
1: और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
4: सेकंड।
5: मेरा नाम पायल सोलंकी है, मैं एमपी से आई हूँ, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है, मैं एमपी मध्य प्रदेश से आई हूँ, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
7: मेरा नाम है कशिश सोलंकी, मैं एमपी मध्य प्रदेश से आई हूँ, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
1: अरे वाह। तो अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग सपने देखते हो?
8: हाँ दीदी।
1: तो रात को देखते हो कि दिन में देखते हो?
8: रात को
1: देखते हो। अच्छा तो सबसे पहले मुझे अपना कौन सा सपना कौन बताएगा जिसको याद है, जो सबसे फेवरेट वाला सपना देखा हो जो अभी तक याद है, कौन बताएगा? आपको याद है युग, आप बताओ।
2: मुझे एक सपने में संगीत का शौक आया ना, तो मैं संगीत के क्लास में जाने लगा, इसलिए मुझे बहुत शौक है संगीत का।
1: अच्छा मतलब आपने सपना देखा कि आपको संगीत सीखना है, तो आप संगीत सीखने लगे?
2: हाँ दीदी।
1: क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा सपना था जिसको आपने रियलिटी में बदल दिया, है ना? और किसी को अपना सपना याद है? और पायल मुस्कान, आप लोगों को कोई सपना नहीं आया ऐसा जिसको देख के आप डर गए हो, या कोई ऐसी बात हुई हो जो आपको नहीं अच्छी लगी हो या अच्छी लगी हो? कोई भी नहीं, किसी को नहीं याद। अच्छा आप लोगों ने कभी कोई हॉरर मूवी देखी है? देखिए नहीं ना, तभी तो अच्छी बात है, क्योंकि डरावने सपने आते हैं ना उसको देख के। फिर
2: मैंने देखी थी एक बार।
1: देखी थी? तो कोई सपना आया आपको?
2: हाँ।
1: उसको देखने के बाद
2: जग गए?
1: नींद से ही जग गए? इतना डर गए कि नींद से जग गए। अच्छा ये तो हमारे सपने जो हम रात को देखते हैं, आपको पता है हम खुली आंखों से भी सपने देखते हैं? किसी को पता है? नहीं पता। वो सपने होते हैं जो हमारी ड्रीम्स होती है ना, जो हम पूरा करना चाहते हैं, हमें लगता है हम स्कूल में ये करेंगे वो करेंगे, या हम बड़े होके ये बनेंगे वो बनेंगे, ऐसा सब सोचते हैं ना। अच्छा तो फिर ये बताओ पायल, आप क्या सोचते हो, आप क्या बनोगे बड़े होके?
5: मैं डॉक्टर बनूंगी।
1: डॉक्टर बनोगे? और डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो आप?
5: दीदी मरीजों का इलाज।
1: मरीजों का इलाज करने के लिए? ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुस्कान आप बड़े होके क्या बनोगे?
6: मैं भी डॉक्टर ही बनूंगी।
1: आप भी डॉक्टर बनोगे? आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो, क्या अच्छा लगता है आपको? पता है उसके लिए ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, करोगे?
8: हाँ।
1: और कशिश आप क्या सपना देखते हो, क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
4: टीचर।
1: टीचर? और आप टीचर क्यों बनना चाहते हो?
4: सब बच्चों को पढ़ाने के लिए।
1: सब बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब आपको अपने टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा शिवम आप बताओ, आप क्या सपना देखते हो बड़े होके क्या बनोगे?
0: मैं बड़ा होके सोचूंगा।
1: बड़ा होके सोचोगे कि क्या बनना है? अभी कुछ मन नहीं करता आपको बनने का, किसी को देख के कुछ भी नहीं? ठीक है चलो शिवम बड़ा होके डिसाइड करेगा, पर युग ने तो डिसाइड किया होगा क्या बनना है?
2: संगीत कलाकार।
1: संगीत कलाकार? अरे वाह, संगीत कलाकार क्यों बनना है आपको?
2: मुझे एक बार देखा था ना एक संगीतकार को, इसलिए मुझे ऐसा रस जग गया कि मुझे जाना ही है इसलिए।
1: अच्छा मतलब इतना मन करता है आपको उनको देख के, कि कौन सा म्यूजिक बजाओगे पहले ये बताओ, क्या बजाओगे? कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हो आप?
2: आधा गिटार है, थोड़ा सा दो के।
1: अच्छा चलो ठीक है, वो तो हम युग से बाद में सुनेंगे। फिर हर्ष आप बताओ क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
3: बड़ा होकर CID बनना चाहते
1: हो? CID बनना चाहते हो? CID क्या होता है मैं बताओ तो?
3: वो देश की रक्षा के लिए एक कानून होता है।
1: अच्छा तो आप क्या करोगे CID बनके?
3: हम सभी देख रहे हैं कि अभी देश में कितना जुर्म बढ़ रहा है, और उसको मैं मिटाऊंगा।
1: देश में जुर्म बढ़ रहा है, उसको आप मिटाना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। और जुर्म मिटाना चाहते हो तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, हर चीज में किसी न किसी की सेवा होती है, है? और ईश्वरी आप क्या बनना चाहते हो?
4: टीचर।
1: टीचर? टीचर क्यों बनना चाहते हो?
4: दीदी बच्चों को पढ़ाने के लिए।
1: बच्चों को पढ़ाओगे आप? अच्छा और पुलिस में कोई नहीं जाना चाहता यहाँ पे? नहीं। ईश्वरी आपको तो पुलिस में जाना था ना? नहीं। अच्छा अच्छा ये बताओ, आप लोग के जो मम्मी पापा है वो आप लोगों को कभी कुछ कहते हैं कि हम लोग आपको क्या बनाना चाहते हैं या क्या बताते हैं, कुछ बोलते हैं आपको कभी? किसी के भी नहीं? अच्छा, स्कूल जब जाते हो तो कुछ ऐसा मनता है काश मैं ये करती या मैं वो करता स्कूल में, ऐसा वैसा कुछ भी सोचते हो कभी?
2: हाँ।
1: क्या सोचते हो बता?
2: मुझे कभी टीचर बोर्ड पे लिखने का कहते हैं इसलिए।
1: अच्छा, मतलब आपको बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है? हाँ भाई, सही बात है, बोर्ड पे लिखते हैं तो टीचर्स हमें बहुत तारीफ करते हैं ना। और कौन क्या सोचता है? ईश्वरी आप?
4: मुझे टीचर बताते हैं मैं स्कूल के बाहर जाऊंगी तो सब बच्चों का ध्यान रखना।
1: सब बच्चों का ध्यान रखना, और ये आपको अच्छा लगता है? अरे वाह। और पायल?
5: दीदी बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है।
1: बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है। और मुस्कान को क्या चाहिए?
6: बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है।
1: बोर्ड पे लिखना। आप बताओ पहले कशिश? कोई से भी कर लेते हो? तो क्या मन करता है सबसे ज्यादा आपका करने?
5: डांस।
1: डांस, अरे वाह। और आपका क्या मन करता है हर्ष?
3: मैं हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा और मैं अपनी मेहनत से उसमें
1: प्राइज प्राप्त करोगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्राइज नहीं मिलता है तो क्या बुरा लगता है? किसी को भी नहीं?
2: किसी को लगता है पर हमें से नहीं
1: लगता। आप से किसी को भी नहीं लगता?
2: नहीं लगता।
1: क्यों बुरा नहीं लगता? अच्छा बताओ, बाकी लोगों को तो लगता है?
3: क्योंकि कभी कभी हमको भी प्राइज मिलता है तो औरों को भी बुरा लगता है।
1: इसलिए औरों को
3: जब भी औरों को प्राइज मिले तो हमें यह सोचना चाहिए कि मैंने भी मेहनत की, मैं उस स्टेज पर गया, यही सबसे बड़ा प्राइज।
1: बात तो बिल्कुल सही है। और आप लोग को क्या लगता है?
5: दी हमको भी यही लगता
1: कि उन्होंने भी मेहनत की है ना? बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, बड़े हो जाओगे जब सब कुछ करोगे तो मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? अभी तो मम्मी पापा हमारे लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, है कि नहीं? तो जब बड़े हो जाओगे तो मम्मी पापा के लिए क्या करोगे बताओ?
5: उनका नाम रोशन करेंगे।
1: उनका नाम रोशन करोगे। और ईश्वरी आप क्या करोगे मम्मी पापा के लिए?
4: उनका नाम रोशन करेंगे।
1: मम्मी तो अभी आपके लिए कितना सब कुछ करके ना खाना भी बनाती है, आपको लेके घुमाने भी जाती है, तो आप नहीं घुमाओगे मम्मी को जब बड़े हो जाओगे? तो
4: घुमाऊंगी।
1: तो बड़े हो जाओगे तो ये सब चीजें ध्यान रखना है ना, अच्छे से मम्मी का बर्थडे मनाना। पता है क्या, मम्मी से आप प्यार से हैप्पी बर्थडे बोलोगे ना तो मम्मी खुश हो जाएगी। और युग?
2: बड़ा सा घर बनाऊंगा, उसमें वो आराम से रहेंगे। ऐसा
1: बड़ा सा घर बनाओगे जिसमें मम्मी आराम से रहेंगी, अरे वाह। और हर्ष?
3: हम इस समय देख रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े बड़े बड़े लड़के कैसे अपने मम्मी पापा को घर से निकाल देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, उसको अपने पास रखूंगा और वो जैसे कहेंगे वैसे ही करूंगा और उसका नाम रोशन करूंगा।
1: बात तो बिल्कुल सही है, मम्मी पापा को अपने साथ रखना चाहिए, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और उनको बहुत सारा प्यार देंगे जो वो हमें अभी देते हैं, है ना? तो पायल आप क्या करोगे जब बड़े हो जाओगे? और आप लोग मुस्कान? और
6: मैं मम्मी पापा की सेवा करूंगी और बड़े होके उनका नाम रोशन करूंगी।
1: मम्मी पापा की सेवा करोगे? आप क्या करोगे?
2: दीदी हम
1: आप भी सेवा करोगे। और ईश्वरी क्या करेगी? घुमाने लेके जाएगी मम्मी को। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके फैमिली में कौन कौन है? आप बताओ फैमिली में कौन कौन है घर पे?
4: मम्मी पापा, दादी, दादाजी, चाची, चाची।
1: अरे वाह, आपकी फैमिली तो बहुत बड़ी है। तो इस फैमिली में आपका सबसे फेवरेट कौन?
4: दीदी मम्मी पापा।
1: मम्मी पापा? मम्मी पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए।
4: हाँ।
1: और हमारी जो भी वो पूरी करते हैं ना, सारी इच्छाएं भी तो वही पूरी करते हैं, है ना? और आप बताओ ये?
2: वो जो हम कहते हैं वो सब ले देते हैं,
1: इसलिए वो फेवरेट।
2: मैंने कैसियो मांगा था तो उसने थोड़े दिन में ही मुझे ले दिया था बड़ा सा।
1: अच्छा पापा ने? और आपकी फैमिली में कौन कौन है?
2: दादी, दादा और मैं और मम्मी पापा।
1: तो दादी दादा के साथ आप खेलते हो? अच्छा, तो उनसे
2: वो,
1: बात?
2: वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब भी मैं जो कुछ मांगू वो मुझे देते हैं।
1: दादी दादा, अरे वाह। और आप बताओ पायल, आपकी फैमिली में कौन कौन है?
5: मम्मी पापा, दादा, दादी।
1: और सबसे अच्छा?
5: दीदी मम्मी पापा।
1: और सबसे फेवरेट कौन है आपका? मम्मी के पापा।
5: मम्मी
1: क्यों? मम्मी क्यों अच्छी लगती है? अच्छा ईश्वरी की फैमिली में कौन कौन है?
4: दीदी, अग्रजा एंड मम्मी पापा।
1: और सबसे अच्छा कौन लगता है आपको?
4: मम्मी पापा।
1: मम्मी पापा अच्छे क्यों लगते हैं ईश्वरी को?
4: तो मुझे मैं कल ही चप्पल मांगी थी और आज ले आई।
1: अच्छा, और मुस्कान?
6: मेरी फैमिली में मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची।
1: और आपका फेवरेट कौन है?
6: मम्मी और पापा दोनों।
1: दोनों मम्मी पापा विशेष पूरी करते हैं। और कोई भी स्पेशल क्वालिटी है उनमें जो आपको बहुत अच्छी लगती है?
6: वो हमें बहुत प्यार करते हैं।
1: प्यार तो करते हैं, अगर डांटते हैं तब भी बहुत प्यार करते हैं, नहीं है कि नहीं?
2: तब भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं।
1: हाँ, और आप भी? तो
4: दीदी हमको भी
2: जैसे कि हमको चित्र दौड़ना नहीं आता, बहुत मुश्किल होता है, तो हमको हमारी दीदी दौड़ दे दे।
1: मतलब जो मुश्किल लगती है वो दीदी सॉल्व कर देती है। अच्छा ये बताओ, घर में कभी लड़ाई होती है आप लोगों की? कभी गुस्सा होते हो क्या आप लोग?
2: कभी कभी होती है।
1: होते हो?
4: हाँ दीदी।
1: क्यों होते हो? क्या होता है जब आप गुस्सा
2: जब
1: होते हो?
2: एक क्वालिटी लाए होता उसमें से दो भाग करने पड़ते हैं, इसलिए भाई बहन में किसी का ज्यादा आता है किसी का कम आता है इसलिए।
1: अच्छा, जब दो भाग करने पड़ते हैं तब लड़ाई होती है, और इक्वल इक्वल हो जाए तो नहीं होती। हाँ, और शिवम तो कभी लड़ता नहीं होगा? नहीं। क्यों लड़ते हो आप? कान आपको मारती है? अच्छा, क्यों मारती है? मुस्कान क्या करते हो आप, ऐसे शरारत करते हो? बताओ, ऐसे ही मारती हो? क्या शरारत करता है मुस्कान, बताओ?
6: वो कभी भी मस्ती करता रहता है, मेरी चीजें हमेशा कहीं ना कहीं पे फेंक देता है।
1: आपकी चीजें फेंक देते हो ऐसा शिवा? कोई नहीं, तो दीदी की चीजें ले लेंगे और फिर सही जगह पे रख देना, है ना? तो फिर दीदी नहीं डांटेगी, ठीक है? आयुक बोलो।
2: एक साइकिल होती है तो दोनों झगड़ते हैं, क्योंकि मुझे चलाना है इसलिए।
1: साइकिल एक होती है तो दोनों झगड़ते हो, और फिर जीतता कौन है
2: भाई?
1: आप नहीं जीतते हो,
2: टीम में भी सब लोग लड़ते हैं, आधा घंटा मेरा आधा घंटा तुम्हारा।
1: अच्छा, टीवी के लिए लड़ाई होती है?
2: हमारे घर में तो है ही नहीं, अरे मैं एक ही हूँ।
1: अच्छा, तो फिर लड़ाई होती है तो उसके बाद क्या करते हो?
2: चुप हो जाते।
1: जो देख रहा होता है उसको देखने देते? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। और ईश्वरी, आप कभी गुस्सा होते?
4: नहीं।
1: लड़ाई करते? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, मम्मी से भी नहीं? मम्मी जब कहती है सब मानते हो आप?
4: हाँ।
3: मेरी फैमिली में भी कभी कभी झगड़ा होता है।
1: झगड़ा होता
3: है? पर मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ।
1: आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो? अच्छा, क्या होता है और फिर आप क्या कहते हो उसमें?
3: टीवी के लिए मेरी दो बहन है, वो झगड़ती है और मैं टीवी बंद कर देता हूँ।
1: टीवी के लिए झगड़ा हो जाता है, आप टीवी बंद कर देते हो? और फिर जब दोबारा ऑन होता है फिर
3: रिमोट लेके भाग जाता
1: हूँ। अच्छा, और आप लोग बताओ, कशिश कभी झगड़ते हो?
4: हाँ दीदी।
1: क्यों झगड़ते हो?
4: दीदी मेरी छोटी बहन है, वो टीवी के लिए हमको रिमोट नहीं देती तो हम झगड़ते। तो दीदी फिर कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठ जाते।
1: फिर उनको टीवी देखने देते हो?
3: हाँ।
1: अरे वाह, ये तो सारे बहुत ही अच्छे बच्चे, झगड़ते नहीं और देखने देते हैं।
2: नहीं तो कोई प्लान बनाता है कि ऐसे करने का है, फिर ऐसे करके लेने का, जब वॉशरूम जाते हैं तब कोई ले लेता है ऐसे।
1: क्या प्लान बनाते हो?
2: मैं तो नहीं बनाता हूँ।
1: अच्छा अच्छा, क्या प्लान बनाते हैं बताओ सब लोग?
2: कोई बना रहा होगा, पर ये तो कह रहा हूँ उसे।
1: अच्छा, और ईश्वरी आप तो झगड़ते नहीं हो ना?
2: और कोई टीवी देख रहा हो, पानी पीने के लिए जा रहा हो, तब भी कोई रिमोट ले लेता है। ऐसा भी बनाते हैं।

0: अच्छा, घर में तो सब लोग रिमोट के लिए लड़ते हैं।
1: हाँ,
0: और किसी बात पे लड़ाई होती है?
1: खिलौने से होती है।
0: खिलौने से? तो आप लोग भी तो छोटे बच्चे हो ना। अच्छा, जब स्कूल जाते हो और फ्रेंड्स के साथ रहते हो तब किसी की लड़ाई होती है क्या?
1: हाँ, कभी कभी होती है।
0: होती है?
2: हाँ दीदी,
0: सबकी होती है।
1: फिर हम सब दोस्त बन जाते हैं।
0: मतलब लड़ाई होती है फिर हम सब अपने दोस्त भी बन जाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुस्कान?
3: दीदी, मेरी फ्रेंड्स हमेशा मेरा बैग नीचे फेंक देती है बेंच।
0: तो मतलब वो आपको ऐसी टीज करते हैं, है ना? तो फिर आप क्या करते हो?
3: मैं भी उनका बैग नीचे फेंक देती हूँ।
0: तो बाद में फिर लड़ाई नहीं होती?
3: फिर वो टीचर से बोल देती है तो टीचर उसको अलग बिठा देती।
0: और वापस फ्रेंड्स कैसे बनते हो फिर?
3: बन जाते हम
0: तुरंत तुरंत। अरे वाह, है ना? तो क्या हुआ, लड़ाई की उसके बाद तो फ्रेंड्स बन जाना चाहिए, है ना? और ईश्वरी, आप लड़ते हो क्या अपने फ्रेंड्स के साथ कभी?
2: मेरे फ्रेंड मुझे धक्का देते फिर मैं फ्रेंड्स बन जाते।
0: अच्छा, और धक्का देते तो लगती नहीं है?
2: थोड़ी
0: थोड़ी। अच्छा, मतलब खेल खेल में ऐसा होता है, लेकिन जोर से नहीं देना नहीं तो लग जाएगी चोट, फिर तो मम्मी से डांट पड़ेगी, है ना? और आप बताओ,
1: कभी झगड़ा हो जाता है?
0: क्यों?
1: बातचीत करते हुए
0: झगड़ा हो जाता है?
1: हाँ।
0: फिर क्या करते हो?
1: मैं उसको अपना सीक्रेट बात बताता हूँ और वो किसी और को बता देता है।
0: अच्छा, और किसी के साथ भी ऐसा होता है?
2: दीदी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं किसी को, मेरी फ्रेंड को बताती हूँ तो वो दूसरे को बता देती है।
0: अच्छा, तो फिर क्या करते हो आप लोग? तो फिर क्या करते हो आप लोग?
1: कभी सीक्रेट हम किसी और को बता देते हैं।
0: अच्छा, दोनों लोग ऐसे करते हो?
1: हाँ।
0: और उसके बाद क्या होता है, फिर लड़ाई नहीं होती?
1: लड़ाई नहीं होती, ठंडा हो जाता है।
0: तो फिर अपने फ्रेंड से हमें बात करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि हमारी जो बात है वो सबको नहीं बतानी चाहिए। वैसे आप लोगों के सीक्रेट्स होते क्या है? क्या सीक्रेट होते हैं बताओ?
1: कहीं छुपने की जगह, जब खोपड़े खोपड़े खेलते हैं तो
0: छुपने की जगह सीक्रेट होती है, वो आपका फ्रेंड किसी और को बता देता है। हाँ, तो फिर आप उसको क्या सीक्रेट बताते हो?
1: उसकी भी जगह बता देते हो। वो तो पता कैसा चलता है कि उसकी जगह यहाँ है।
0: अच्छा, फ्रेंड ने जो जगह दिखाई होती है वो बता देते हैं। और आप क्या करते हो पायल?
2: दीदी, हमारी जो बात रहती है वो दूसरों को बताती है मेरी फ्रेंड, तो हम भी उसकी बात बता देते हैं।
0: क्या बात रहती है आपकी?
2: दीदी ये तो भूल गए।
0: और उसकी क्या बात रहती है? अच्छा,
2: सब भूल गए।
0: कशिश?
4: दीदी हमारे साथ
0: क्या होता है?
4: दीदी कभी मेरी फ्रेंड कटर मांगती है तो हम नहीं देते तो लड़ने लग जाते।
0: कटर नहीं देते? अच्छा, तो शार्पनर जब आप नहीं देते हो और आपकी फ्रेंड लड़ती है उसके बाद क्या करते हो?
4: कुछ भी करते, फिर से बोलने लग जाते हो।
0: अच्छा, अरे बाबा। युग,
5: हमारे स्कूल में एक लड़का बहुत ताकतवर है ना, मैं ही ताकतवर हूँ, सब उसके टीम में ही जाते हैं। जब मेरी टीम मेरे साथ साथ ही आओ और फिर झगड़ा होता जाता है, फिर सब साथ हो जाते हैं।
0: आपकी टीम में कोई नहीं आता, सब उसकी टीम में चले जाते हैं।
5: मैं तो टीम रखते ही नहीं।
0: तो फिर आप भी उसी की टीम में चले जाया करो, है ना? अच्छा, ये बताओ मुझे, आप लोगों को अब तक सबसे ज्यादा मजा कब आया या सबसे ज्यादा खुशी कब हुई है, जब आपने बहुत एंजॉय किया हो या आपको बहुत अच्छा लगा हो, बताओ?
5: मैं मेरे मामा के साथ जब छुपा छुप गया था ना, वहाँ बहुत मजा आया था।
0: मामा के साथ क्या किया था?
5: वहाँ बहुत बड़ी राइड्स होती है ना, वो पानी में गिरती है ना
0: लहरें,
5: वहाँ बहुत मजा आता है।
0: अच्छा, मतलब आपको पानी में खेलने में मजा आता है मामा के साथ?
5: मेरे मामा भी आए थे।
0: अच्छा,
5: पहले तो मुझे बताया नहीं था, फिर मेरे मामा कह रहे थे ले जाओ मेरी मम्मी को, पहले तो नहीं कह रहे थे, फिर क्या चल ले चलते हैं, फिर मुझे पता चल गया ना, तो मैंने कहा मम्मी को, देखा मुझे पता चल गया ना, मेरे मामा से भी झूठ नहीं बोलते, ले जाते हैं।
0: मामा आपको लेके गए खेलने के लिए पानी में लहरों पे, तो आपको बहुत मजा आया। अरे वाह। और आप बताओ शिवा, आपको सबसे ज्यादा मजा कब आया?
6: जब मेरे पापा उज्जैन में सीएस में मेरे को डुबकी लगवाते हैं तब।
0: डुबकी लगवाता उज्जैन में? अच्छा, क्या करते हो वहाँ पे? और
6: मेरा वहाँ पे साथ साथ तैरते हैं, डुबकी लगाते हैं और फिर हम बाहर निकल जाते हैं।
0: अच्छा, डुबकी लगाने में बहुत मजा आता है, यानी सबको पानी में खेलने में मजा आता है?
6: हाँ दीदी।
2: हाँ
0: नहीं
2: दीदी।
0: हाँ, तो फिर बताओ हर्ष, आपको बताओ।
7: मेरा एडवेंचर्स बहुत ही फेमस है।
0: एडवेंचर में आपको बहुत अच्छा लगता है? हाँ। क्या करते हो आप?
7: पीछे मैं एडवेंचर्स सीखूंगा तो बड़ा होके भी बड़े बड़े एडवेंचर्स करूंगा।
0: अभी क्या किया है आपने?
7: तेज स्केट चलाना और पानी में स्विमिंग कर।
0: तो आप स्केटिंग करते हो और पानी में स्विमिंग करते हो? स्विमिंग तो स्केटिंग कैसे आप सीखते हो? स्केटिंग तो उसको चलाने में मजा आता है आपको?
7: हाँ।
0: कभी किसी कंपटीशन में पार्ट लिया है आपने?
7: हाँ।
0: क्या लिया है बताओ?
7: कंपटीशन में एक बार मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मेरा सेकंड नंबर आया था।
0: अरे वाह, तो चलो सब लोग भैया के लिए ताली बजाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। ईश्वरी, आपको कब मजा आता है सबसे ज्यादा?
8: डांस में।
0: डांस में? कौन से गाने पे डांस करते हो आप?
8: राधा के।
0: राधा के? अच्छा, तो स्कूल में डांस करते हो? और कौन सिखाता है आपको?
8: मैं, टीचर।
0: टीचर? और आपके बर्थडे पे मजा नहीं आता आपको? क्या करते हो बर्थडे पे?
8: सब लोग केक खिलाते हैं मुझे।
0: सब लोग आपको केक खिलाते हैं, इसलिए मजा आता है। और आप सबको केक नहीं खिलाते?
8: खिलाते।
0: खिलाते हो? अच्छा, पायल आप?
9: मुझे भी डांस में बहुत मजा आता है।
0: डांस में बहुत मजा आया। आप किस गाने पे डांस करते हो?
9: दीदी सारे गाने पे करते हैं, बहुत सारे गाने।
0: सारे? बहुत सारे? मतलब स्कूल में जब भी डांस कंपटीशन होता है आप पार्ट लेते हो?
9: हाँ दीदी।
0: अरे वाह। और मुस्कान?
10: दीदी मुझे भी डांस में।
0: आपको भी डांस में मजा आता है?
11: दीदी मुझे भी।
0: अच्छा, डांस करना तो हमारी हॉबी, हमें पसंद है। कोई ऐसा दिन या कोई ऐसी मेमोरी आपको याद है जिस दिन आपने बहुत एंजॉय किया हो? कुछ याद है आप लोगों को? कभी घर पे, स्कूल में कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन हुआ हो तो आपको बहुत मजा आया हो, या कहीं गए हो घूमने? नहीं?
7: हाँ।
0: बताओ।
7: बार एक जो योगा में पार्टिसिपेट किया था और उसमें मेरा फर्स्ट नंबर आया था, वो दिन मेरे को बहुत
0: मजा आया था। वेरी गुड। तो कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हमें प्राइज मिलता है तो मजा आता ही है?
7: और नहीं मिलता तब भी आता है।
0: नहीं मिलता तब भी आता है? नहीं मिलता तब क्यों आता है?
7: क्योंकि हमें जब प्राइज मिलता है तो औरों को भी बुरा लगता होगा ना, हम ऐसा सोचे कि वही हमको अगले साल मिलेगा, इसलिए हम दुगनी मेहनत से फर्स्ट प्राइज में मिलेंगे हमको।
0: ये बात तो बहुत अच्छी कही आपने, दुगनी मेहनत करेंगे। और वैसे भी जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें मजा आता है ना, वो हॉबीज में, गाने में, सिंगिंग में, डांस में, तो उसको एंजॉय करके हमें मजा करना चाहिए, है ना? अच्छा ये बताओ, आप लोगों को मजा आता है, कभी बुरा लगता है किसी चीज का? घर पे या स्कूल में टीचर ने कुछ कहा या फ्रेंड्स के साथ या मम्मी पापा के साथ किसी चीज का बुरा लगता है कभी आप लोगों को?
8: नहीं।
0: नहीं?
8: नहीं,
0: किसी चीज का बुरा नहीं लगता कभी भी?
8: नहीं,
0: कभी नहीं लगा। युग?
12: कभी खाने में अच्छा नहीं होता इसलिए करेला का साग होता है ना।
0: क्या होता है?
12: कभी खाने में करेला का साग होता है ना इसलिए।
0: करेला? अच्छा, तो करेला होता है इसलिए बुरा लगता है आपको। और फिर क्या करते हो, खाते हो कि नहीं?
12: फिर खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा।
0: थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं।
12: रात में दूध पी के सो जाते हैं।
0: रात में दूध पी के सो जाते हैं। अच्छा, और आपको पायल?
9: दीदी किसी से नहीं किया।
0: कभी बुरा नहीं लगता? कभी कोई डांटता है या टीचर ने कुछ बोला तभी भी नहीं?
11: नहीं लगता।
0: और आपको?
11: नहीं लगता।
0: ईश्वरी?
8: नहीं,
0: ईश्वरी को तो कुछ बुरा लगता ही नहीं कभी, है ना? बहुत समझदार है। तो हम बात कर रहे थे नन्हे मुन्ने बच्चों से, उनकी दुनिया के बारे में, उनकी बातों के बारे में, उनके सपनों के बारे में, उनकी आशाओं और उनके प्यार और उनके झगड़ों के बारे में। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, बात करेंगे और नई और बच्चों के साथ। बाय बाय बच्चों।

तो अभी हमने सुना बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: हम स्वयं ही स्वयं की चेकिंग करते रहें कि मेरे स्वभाव में कितना परिवर्तन आया है। अगर भीतर से मैं शांत पोलाइट हुआ हूं, दूसरों की प्रॉब्लम को भी समझ पा रहा हूं, तब मेरा स्वभाव परिवर्तन हुआ है। परंतु अगर मैं केवल अपनी ही प्रॉब्लम में जूझ रहा हूं और किसी की प्रॉब्लम मेरे आगे कुछ नहीं है, तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है मेरे अंदर। केवल ऊपर से ही दिमाग तक ही हमने अभी फिर ज्ञान को समझा है, दिल में समाकर जीवन में नहीं उतारा। अर्थात केवल ऊपरी तौर पर ही बाबा बाबा है, दिल की याद नहीं है परमात्मा एवं उसकी शिक्षाओं प्रति।

0: एक ट्रक आ रहा,
1: एक रोड मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आंख मारे, लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो, बात बड़ी।

0: चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल बढ़ता चल तू एक प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: रुकना नहीं तुझे झुकना नहीं घबराना कहीं तेरी है जमीन तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझे

बिम बुमक बिम बुमक बिम बुमक तेरी गजरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गजरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा।

नहीं रे बेटा, भूल गया वादा, मेरी कसम खाया था ना तू, मतलब मेरा बेटा नहीं।

गीता की तबीयत में जहाँ शोखी और चंचलता थी, वहाँ जिम्मेदारी का भरपूर एहसास भी था। हमने कई गाने एक साथ गाए, इसलिए बड़ी अच्छी दोस्ती थी। गीता बहुत जल्द किसी भी बात से परेशान हो जाती थी, और परेशानी बढ़ जाती तो सीधे मेरे पास आ जाती। उसे मुझसे मिलने की जितनी जल्दी हुआ करती थी, उतनी ही जल्दी गीता ने इस दुनिया से जाने में भी दिखाई। ये वक्त का सितम नहीं तो और क्या।